0: विविध भारती के खजाने से हम आपके लिए लाते हैं अनमोल कार्यक्रम।
1: फौजी भाइयों की खिदमत में आपका खादिम नौशाद आदाब पेश करता है, कबूल फरमाइए।
0: कल और आज के ऐसे ही नामचीन सितारों को आप सुनते हैं विशेष जयमाला में हर शनिवार और रविवार शाम 7:05 पर। विविध भारती आप सुन सकते हैं देश के कोने कोने में, मीडियम वेव पर, शॉर्ट वेव पर, FM पर। विविध भारती आपकी बात पहुंचाए करोड़ों तक। विविध भारती पर विज्ञापन बुक कराने के लिए हमारा टोल फ्री नंबर है 15102 या लॉग ऑन करें csuair.org.in। विविध भारती, देश की सुरीली धड़कन।

श्रोतों, आप सभी को इंतजार रहता है आप सभी के पत्रों पर आधारित कार्यक्रम पत्रांकन का। तो आइए सुनते हैं आज का पत्रांकन। प्रस्तुति है चंद्र ऋषि ठाकुर और रूपाली सेठिया की।

0: कार्यक्रम पत्रांकन सुनने वाले आप सभी श्रोताओं को चंद्र ऋषि ठाकुर
1: और रूपाली सेठिया का नमस्कार।
0: तो रूपाली जी, आज हम फिर हाजिर हैं कार्यक्रम पत्रांकन का एक नया अंक लेकर, और हमेशा की तरह हमारे पास बहुत सारे संदेश हैं और हमारे श्रोता भी बहुत उत्साही हैं और उनको सब्र करने में परेशानी हो रही होगी, सब्र का बांध टूट रहा होगा और उन्हें भी लग रहा होगा कि जल्द से जल्द उनके जो संदेश है उनका वाचन हम करें, उनके जवाब हम दें। तो शुरू करते हैं और आप बताएं कि आज हमारे पहले श्रोता कौन है जिन्होंने अपना संदेश भेजा है।
1: जी, हमारे पहले श्रोता हैं बड़े डोंगर से लक्ष्मण सिंह कोराम, भावना दीपक और डुग्गू कोराम। आप हमारे नियमित श्रोता हैं और आपने लिखा है, पत्रांकन प्रस्तुतकर्ताओं और आकाशवाणी के तमाम कलाकारों को हमारा नमस्कार। आकाशवाणी से प्रसारित सभी कार्यक्रम रोचक मनोरंजन के साथ ज्ञानवर्धक प्रेरणास्पद होते हैं। यही एक ऐसा माध्यम भी है कि हम सदा ही रेडियो को अपना साथी बना लेते हैं। लगातार 4 दशकों तक हमारे साथ है और ये आगे भी रहेगा। इसके बाद आपने एक संस्मरण हमारे साथ साझा किया है। आप लिखते हैं, हमारे पिताजी ने जब रेडियो खरीदा तो हमने उसे अपने कब्जे में ले लिया। जहां भी जाते रेडियो साथ रहता। बड़े भाई छोटे भाई के साथ खेत में हल चलाते, झमाझम बारिश में खेत के मेड़ पर रख लेते थे। समय के साथ हर आकाशवाणी केंद्र पर हल चलाना रोक कर बदल बदल कर रेडियो चलाते रहते। भाइयों को ऐसे में परेशानी हो रही होगी, पर मुझे इस ओर ध्यान नहीं था, बस यही शौक था। क्रिकेट की कमेंट्री हो तो शौक और भी बढ़ जाता था। रूपक सप्ताह में शनिवार मंगलवार को हुआ करता था, अब एक ही दिन प्रसारित होता है। साथ ही लोक कथाओं के बदले कथा लोक अब ज्यादा प्रसारित होते हैं। इस पर विचार किया जाए। पत्र शामिल करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
0: लक्ष्मण सिंह कोराम जी ने मेरे ख्याल से बहुत दिनों बाद हमें पत्रांकन कार्यक्रम में अपना संदेश भेजा है और पहले उनसे फोन इन कार्यक्रम जो है हमारे उसके माध्यम से बात होती थी और उनकी भाषा शैली हमेशा से ही अच्छी थी और जो संदेश उन्होंने भेजा है उससे भी हमें ये पता चल रहा है कि उनकी भाषा शैली कितनी अच्छी है। उन्होंने अपना संस्मरण लिख भेजा है इसमें कि कैसे उनके पिताजी ने जब रेडियो खरीदा तो उसे इन्होंने अपने कब्जे में ले लिया, और जैसे इनकी यादें हैं रेडियो से जुड़ी हुई, वैसे ही हमारे जितने भी श्रोता हैं उनके भी कुछ ना कुछ संस्मरण होंगे रेडियो से जुड़े हुए। तो हम उनसे भी चाहेंगे कि वो भी अपनी ये जो छोटी छोटी रेडियो से जुड़ी हुई कहानियां हैं, चाहे वो बचपन की हो चाहे अभी की हो, वो हमसे साझा करें। हमें आनंद आता है आप लोग के संस्मरण को पढ़कर और हमें उम्मीद है कि जो श्रोता आपकी इन बातों को सुनते होंगे उन्हें भी अच्छा लगता होगा। तो मुझे तो इनका पत्र पढ़ के बहुत अच्छा लगा।

इन्होंने अपना संस्मरण भी साझा किया और जो सुझाव उन्होंने दिया है कि सुझाव नहीं, उन्होंने बस ऑब्जर्व किया है कि आजकल लोक कथाओं के बदले कथा लोक अब ज्यादा प्रसारित होता है। तो हम जो है आकाशवाणी जगदलपुर में या फिर किसी भी आकाशवाणी के जितने भी हम कर्मचारी हैं या अधिकारी हैं, वो हम लोग अपने एक कोड ऑफ कंडक्ट से बंधे होते हैं कि हमें इस तरह से कार्यक्रम को तैयार करना है। हमारी कुछ पॉलिसीज होती हैं तो उसके अकॉर्डिंग ही हम जो कार्यक्रम तैयार करते हैं या फिर किस तरह के क्या क्या कार्यक्रम जाएंगे वो उसी के अनुसार ही हम कार्यक्रमों का निर्धारण करते हैं, चयन करते हैं। तो आपने जो सुझाव दिया है उसे हम अगली बार जब कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार करेंगे तो ध्यान में रखेंगे। और संदेश भेजने के लिए एक बार फिर से आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। तो अब आगे बढ़ते हैं, रूपाली जी बताएं कि अगला संदेश किनका है।

0: पत्र है, तो उनकी ओर से हम आपको धन्यवाद बोलते हैं और आपने जितनी भी तारीफ यहाँ पे लिखी है और प्रशंसा की है हमारे उद्घोषक की, ये बधाई उन तक हम प्रेषित कर देंगे और हम ये उम्मीद करेंगे कि आप हमारे बाकी उद्घोषकों को भी सुने और उनके कार्यक्रमों को भी सराहें ताकि उनका भी प्रयास सफल हो। तो अब आगे बढ़ते हैं और बताएं कि किनका संदेश आप पढ़ने वाली हैं।
1: मदनपुर कवर्धा से आप सभी ने एक और संदेश भी भिजवाया है ऋषि जी। आपने 3 जुलाई को प्रसारित एक ही कलाकार कार्यक्रम में फिल्म अभिनेता राजकुमार के बारे में विस्तृत जानकारी मिलने और नए निराले अंदाज में पेश करने के लिए उद्घोषक मनिंदर सिंह देवगुण जी को पुनः बधाई भेजी है और आपने उनके सुमधुर आवाज को पसंद किया है। और उन्होंने लिखा है कि उद्घोषक जी सभी गीतों का चयन सटीक और कर्णप्रिय गीतों का ही चयन करते हैं। ये दोनों कार्यक्रम से हमारा भरपूर मनोरंजन तो हुआ ही, इनसे हमें सीख और प्रेरणा भी मिली। बहरहाल सफल प्रसारण के लिए मनिंदर सिंह देवगुण जी और आकाशवाणी परिवार को आपने हार्दिक बधाई दी है।
0: जी, तो मतलब ये संदेश भी श्रवण योगेश और राहुल साहू जी का था। तो आपने यहाँ पे जैसे ही इन्होंने अभिनेता राजकुमार जो है उनका जिक्र किया, तो मुझे एक चीज उनकी जो उनके डायलॉग डिलीवरीज होते थे वो बहुत ही मजबूती के साथ करते थे। और इसका एक कारण था, रूपाली जी शायद आपको भी पता होगा कि जो राजकुमार जी थे वो पहले मुंबई पुलिस में थे, उसमें सब इंस्पेक्टर के पद पर वो थे। तो उनका जो व्यक्तित्व था और जिस तरह से वो डायलॉग बोलते थे उससे भी उनका पता चलता था कि दमदार पर्सनालिटी है, दमदार व्यक्तित्व है। और जो वो पुलिस वाला जो उनका व्यक्तित्व है वो छूटता नहीं था उनसे, और वो एक अच्छे अभिनेता थे। और इस कार्यक्रम को आपके सामने पेश किया था मनिंदर जी ने, तो आपने इस कार्यक्रम को पसंद किया, हम आपकी बधाइयां उन तक प्रेषित कर देंगे। तो अब आगे बढ़ते हैं, रूपाली जी बताएं कि किनका संदेश है।
1: जी, अगला संदेश है छत्तीसगढ़ चूड़ी लाइन मुंगेली से। इसे लिखने वाले हमारे श्रोता हैं मोहम्मद इसहाक, खतीजा बेगम, मोहम्मद अशफाक, आफरीन कौसर, मोहम्मद अल्ताफ और नीलोफर फातिमा। आपने बहुत ही संक्षिप्त में लिखा है, आकाशवाणी जगदलपुर केंद्र से काफी लंबे अंतराल के बाद कश्मीर की हसीन वादियों से अपना सुहाना सफर तय कर अपनी सुरीली आवाज के साथ दिनांक 19 जून को फिल्मी गीतों का फरमाइशी कार्यक्रम श्रोता सुमन में अपनी प्रस्तुति दी श्रीमती गायत्री आचार्य जी ने। कार्यक्रम सुनकर बेहद मनोरंजक लगा। कार्यक्रम में गीतों का चयन सराहनीय था। कार्यक्रम की शानदार प्रस्तुति के लिए आपने गायत्री आचार्य जी को बधाई भेजी है।
0: सबसे पहले तो आपको समय निकालकर हमें संदेश भेजने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और इन्होंने ये जिक्र किया है कि काफी लंबे अंतराल के बाद कश्मीर की हसीन वादियों से लौटने के बाद गायत्री जी ने अपना कार्यक्रम प्रस्तुत किया। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो हमारे श्रोता भाई बहन हैं, क्योंकि अब विज्ञान का दौर है और सोशल मीडिया का दौर है, तो सोशल मीडिया के माध्यम से भी हमारे श्रोता हमारे उद्घोषकों से और आकाशवाणी केंद्रों से जुड़े हुए हैं, तभी उन्हें हमारी जानकारी रहती है कि हम कहाँ गए थे और कहाँ घूमकर आए। तो आपने इस चीज को यहाँ पे मेंशन भी किया है और आपने गायत्री जी के कार्यक्रम को पसंद किया, तो इसके लिए हम उनकी तरफ से आपको धन्यवाद देते हैं और आपकी ये जो बधाई है हम उन तक प्रेषित कर देंगे। तो आपने बहुत संक्षिप्त सा पत्र लिखा है, लेकिन अच्छा पत्र लिखा है और हम ये चाहेंगे कि आप इसी तरह हमारे आकाशवाणी से जुड़े रहें और आगे भी हमें अपना संदेश भेजते रहें। तो अब आगे बढ़ते हैं, बताएं रूपाली जी किनका संदेश आप पढ़ रही हैं।
1: जी, आप हैं माँ महामाया चौक मेघापारा लोरमी के श्रोता राम कुशल पटेल, संतोषी पटेल, दीपांशु पटेल, दिव्या पटेल, दीपांजलि पटेल, दीपक पटेल और टेक लाल पटेल। आपने आरम्भ किया है, पत्रांकन प्रस्तुतकर्ता महोदय को हृदय से राम राम, जय जोहार। आपने लिखा है, 9 जून को हमने नमस्कार जगदलपुर सुना, दिल बाग बाग हो गया। अनुसूचित जनजाति के नायक भगवान बिरसा मुंडा की पुण्यतिथि पर बड़ी अच्छी बातें बताई गई। पत्रांकन में रूपाली परोई जी का वाचन अच्छा लगा। अच्छी प्रस्तुति हेतु बधाई और शुभकामनाएं।
0: तो पटेल परिवार को बहुत बहुत धन्यवाद हमें संदेश भेजने के लिए। इसमें इन्होंने भगवान बिरसा मुंडा जी के ऊपर जो कार्यक्रम हुआ था उसे पसंद किया था। उन्हें भगवान यूं ही नहीं कहा जाता रूपाली जी, ये तो आपको भी पता होगा। स्वतंत्रता के लिए उन्होंने लड़ाई लड़ी थी और महज 25 साल की उम्र में उनकी रांची के जेल में रहस्यमय ढंग से मृत्यु हो गई थी। और उन्होंने बहुत सारे बलिदान दिए हैं, क्योंकि आसान नहीं होता अपने प्राणों को त्यागना, भले वो देश के लिए हो, परिवार के लिए हो, लेकिन अपने प्राण को त्यागना बहुत बड़ी बात होती है। तो जिस व्यक्ति ने हमारी स्वतंत्रता के लिए, हमारी खातिर अपने प्राणों का त्याग किया है, उन्हें तो भगवान बोलना ही चाहिए और उनका नमन करना चाहिए।

0: और भगवान बिरसा मुंडा जी के उनके सम्मान के रूप में हम जनजाति गौरव दिवस भी मनाते हैं
1: जी हाँ।
0: ये उनको हमारी ओर से श्रद्धांजलि ही है और उनको श्रद्धांजलि स्वरूप हम 15 नवंबर को जनजाति गौरव दिवस भी मनाते हैं। तो ऐसे व्यक्तित्व को सलाम करना आकाशवाणी के लिए भी एक गर्व का विषय है और आपने इस कार्यक्रम को पसंद किया, इसके लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद। और आगे बढ़ते हैं, हम बताएं कि अगला संदेश किनका है।
1: अगला संदेश लिखा है हमें देवरी भाटापारा छत्तीसगढ़ के श्रोताओं ने। आप हैं गन्नूलाल रजक, के आर साहू, अश्वनी वर्मा और गणेश राम मिस्त्री। आपने भी आरंभ किया है अपना नमस्कार भेजकर। आपने लिखा है, 1 जुलाई को प्रसारित नमस्कार जगदलपुर कार्यक्रम में बहुत सुंदर जानकारी के साथ मधुरिमा में बेहतरीन गीतों की प्रस्तुति अच्छी लगी। एक ही फिल्म के कार्यक्रम में फिल्म तलाश के गीत भी अच्छे लगे। इसी दिन गुलशन में बरसात शीर्षक के सभी गीत बारिश में सराबोर लगे हमें। गुड़दुम में हल्बी गीत मेघराज पटनायक और उनके साथियों के गाए थे जो कि उन्हें पसंद आए। इसके लिए प्रस्तुतकर्ता मनिंदर सिंह देवगुण जी को और साथ ही आकाशवाणी जगदलपुर को आपने हार्दिक बधाई भेजी है। साथ ही इनकी एक शिकायत भी है जो इन्होंने आगे लिखा है, पिछले पत्रांकन कार्यक्रम में हमारे द्वारा लिखे गए शब्दों को पढ़ा नहीं गया और काट दिया गया। कार्यक्रम में हम सारी बातों को लिखे थे, अब हम कम लिखेंगे। इनकी ये शिकायत है।
0: सबसे पहले तो गन्नूलाल रजक जी, के आर साहू जी और अश्वनी वर्मा और गणेश राम मिस्त्री जी, आप सभी को समय निकालकर हमें संदेश भेजने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और रूपाली जी, मैं आपको बताना चाहूंगी कि आप सभी हमें नियमित रूप से संदेश भेजते रहते हैं और आप हमारे सम्मानीय श्रोता हैं और उनके लिखने की शैली भी अलग रहती है और हमारे कार्यक्रमों की समीक्षा करते हैं, ये बात भी बिल्कुल सही है। और मैं आपको अपनी परेशानी भी बताना चाहूंगी कि हम क्यों कभी कभी ऐसा करते हैं कि आपके जो खत हैं उनका हम सार बनाकर लिखते हैं, क्योंकि हम आकाशवाणी में समय का बहुत ज्यादा ध्यान रखते हैं, हमारे लिए एक एक सेकंड जो है वो बहुत मायने रखता है। तो कभी कभी हम कार्यक्रम को छोटा करने के लिए या फिर अगले कार्यक्रम का भी समय रहता है
1: जी,
0: तो हम समय का ध्यान रखते हुए पत्रों को काटते नहीं हैं, हम उस पत्र का सार पढ़ देते हैं
1: जी।
0: तो अगर आप लोग को इस चीज से परेशानी है कि हमने आपके पत्रों को या संदेशों को सार गर्भित करके छोटा करके पढ़ दिया है, तो इस चीज पर हम गौर करेंगे और अगली बार ये गलती नहीं होगी। लेकिन हम ये चाहेंगे कि जो हमारे श्रोता हमारे साथ बने हुए हैं, इतने पुराने श्रोता हैं और आप हमें समीक्षाएं भी भेजते हैं, आप लोग के पत्रों से हमें मनोबल मिलता है, तो हम चाहेंगे कि आप ऐसा कुछ ना करें, आपके मन में जो भी आता है आप वो हमें लिखकर भेजिए और ऐसे ही आप आकाशवाणी जगदलपुर के साथ और हमारे साथ जुड़े रहें। अब आगे बढ़ते हैं, रूपाली जी आप बताएं।
1: जी, हम बढ़ते हैं अगले संदेश की ओर और इसे लिखा है राम कुशल पटेल, संतोषी पटेल, दीपांशु पटेल, दिव्या पटेल, दीपांजलि पटेल, दीपक पटेल और टेकलाल पटेल ने। आप सभी माँ महामाया चौक मेघापारा चिल्फी से हैं। इनका संदेश हम पहले भी ले चुके हैं और इन्होंने एक और संदेश हमें भेजा है। आपने लिखा है, आकाशवाणी जगदलपुर के सभी कार्यक्रम अच्छे लगते हैं। कार्यक्रम की यात्रा जब वंदे मातरम से शुरू कर नमस्कार जगदल पुर पहुंचता है, यहां इतिहास के पन्नों में अंकित दिन विशेष की बड़ी प्यारी चर्चा होती है, फिर देश दुनिया की बातें करते करते लोक मंजरी, झुमझुमा, गुलशन, एक ही कलाकार, घर द्वार होते हुए श्रोता सुमन की महफिल सजाई जाती है जो तन मन को गदगद कर देता है। आपने लिखा है, किस किस का नाम लो, सबकी प्रस्तुतियां अच्छी होती हैं। हमारी ओर से सभी को बधाई।
0: बहुत प्यारा संदेश है आपका और आपने हमारे सभी उद्घोषकों की जो प्रस्तुतियां है उसे पसंद की है, तो हम आपकी बधाइयां जो है वो उन तक प्रेषित कर देंगे। और आपने तो यहाँ पे पूरा विवरण दिया है कि हमारे केंद्र से कौन कौन से कार्यक्रम प्रसारित होते हैं, तो इसका अर्थ है कि आप ध्यान से सुनते हैं हमारे कार्यक्रमों को, तो आप इसी तरह हमारे कार्यक्रमों का आनंद लेते रहें, ज्ञान, सूचना और मनोरंजन पाते रहें और हमें इसी तरह संदेश भेजते रहें। तो आपका फिर से धन्यवाद हमें संदेश भेजने के लिए। अब आगे बढ़ते हैं।

0: बड़ सुहाते, बड़ नीक लागते। आकाशवाणी के जम्मो कार्यक्रम और कार्यक्रम प्रस्तुत करैया भाई बहनी मन मीठ मीठ बोली हमन रेडियो के दीवाना बना डारे हावय। ऐसन सुघर कार्यक्रम ला सुनत सुनत कई साल हो गए हावय, पर आकाशवाणी जगदलपुर जैसन आकाशवाणी के कार्यक्रम ला कोनो आकाशवाणी ले सुने खातिर नहीं मिलेस। वो कार्यक्रम हावय एक ही कलाकार। छत्तीसगढ़ के कोनो भी आकाशवाणी ले एक ही कलाकार के अंतर्गत कार्यक्रम सुने नहीं हावन। आकाशवाणी जगदलपुर ले ये कार्यक्रम और श्रोता सुमन कार्यक्रम सुने खातिर हम जम्मो श्रोता के लाइन लगे रही थे और इही क्रम भाई मनिंदर सिंह देवगुण छागे रहिस 3 तारीख के राजकुमार, 6 तारीख के कादर खान, 8 तारीख के सलमा आगा जैसन जाने माने कलाकार के जीवन अभिनय और सुंदर सुंदर मधुर गीत के कार्यक्रम ला हमर बीच परोसिस। और हमर मयारू छोटे बहिनी कार्यक्रम प्रमुख चंद्र ऋषि ठाकुर संग रानू बहिनी के आनंदमयी मुखार विंद लेख पत्रांकन कार्यक्रम ला 23 जून दिन मंगलवार के बिहनिया बेरा मा सुने के सौभाग्य प्राप्त होइस। चोला हरियागे और बहन जसवीर कौर, गायत्री आचार्य, प्रीति यादव, अपर्णा अवस्थी और रानू बहिनी के संग भाई मनिंदर सिंह देवगुण जी के आनंदमयी आवाज में अलग अलग दिन नमस्कार जगदलपुर कार्यक्रम, एक ही कलाकार के कार्यक्रम और श्रोता सुमन कार्यक्रम ला सुनेन अंतस्मा समागे। ऐसन सुघर आनंदमयी प्रस्तुति खातिर आकाशवाणी जगदलपुर के मुखिया हमर मयारू बहिनी चंद्र ऋषि ठाकुर के संगे संग आकाशवाणी जगदलपुर परिवार ला अंतस ले मया भरे बहुत बहुत धन्यवाद। देवथन परोस्थन अमर लेहु भुलाहु झन, पुनः धन्यवाद।
1: तो कतिक सुघर लगी छत्तीसगढ़ी में आप मन पढ़े हुए संदेश लता। तो सबले पहली तो भाई पवन कुमार सेन ला और दीदी प्रभा देवी सेन और साथ में लैका मन घला हावे तिसे लगते लक्की विकी नानू रविंद्र रौनक सेन। तो आप सफा सेन परिवार ला हमला अतिक सुंदर और सुघर संदेश भेजे खातिर बहुत बहुत धन्यवाद। और आप मन हमार कार्यक्रम ला बहुत टाइम ले सुना था वो और हमार करण संदेश तो भेजते च रहो। फिर ए संदेश बड़ लंबा घला रही से और छत्तीसगढ़ी में घला रही से पढ़े पर घला मस्त लगी से रूपाली जी और मोला जवाब दे में घला बढ़िया लगा थे। आप मन हमार जो कार्यक्रम मला पसंद करे हाओ और जेन जेन उद्घोषक भाई बहनी मन के एकरन तारीफ आप मन करे हाओ तो तारीफ ला हमन उकर मन तक पहुंचा देबो। और आप मन इसने हमार कार्यक्रम में सुनत रहो और इसने मीठ मीठ बोली मा छत्तीसगढ़ी मा हमला संदेश भेजत रहो भाई, तभी तो हम मन ला अच्छा लगी कि हमार जो श्रोता भाई बहनी मन हावे तो मन बढ़िया सुनत है हमार कार्यक्रम मन ला छत्तीसगढ़ी मा मीठ मीठ बोली मा अति बढ़िया संदेश ला भेजत है। और का है कि हमन पत्रांकन ला सफा हिंदी में गुठिया थन रूपाली जी, हिंदी के संदेश आते हमारे श्रोता मन के और हमारा गुठियाथन गला हिंदी में, तब बीच बीच में ऐसा छत्तीसगढ़ी के जब संदेश मिल जाते तो हमू मन ला बढ़िया लगते पढ़े में। तो वो कहते ना सुंदरता में 4 चांद लगना, तो ऐसा काम करते कोई छत्तीसगढ़ी के जो संदेश हमन ला मिलते ना ते हा। तो आप सभी सेन परिवार ला बहुत बहुत धन्यवाद और इसने आप मन मीठ मीठ बोली मा छत्तीसगढ़ी मा हमला संदेश भेजत रहो और हमार कार्यक्रम ला सुनत रहो। तो अब आगे बढ़थन रूपाली जी
0: जी,
1: आप बताएं कि अब अगला संदेश किनका है।
0: अगला और अंतिम संदेश है ये
1: जी,
0: लिखा है इसे मेघापारा लोरमी से कृष्ण धनंजय गायत्री और मनोज कुमार साहू ने। आपने संदेश की शुरुआत अच्छी लाइनों से की है जिसे मैं पढ़ने जा रही हूँ। आपने लिखा है ऋतुएं तो 6 हैं पर मुख्य रूप से 3 हैं, ग्रीष्म, शीत और बरसात। ऐसे जीवन के लिए सब अच्छा है, श्रेष्ठता की बात करें तो बरसात ही है क्योंकि इसी ऋतु से पूरे वर्ष भर के लिए जल अन्न की व्यवस्था होती है। सौंधी खुशबू बहाने आए मनिंदर सिंह देवगुण जी 12 जुलाई को फोन इन चाहत लेकर। कई क्षेत्रों पर चर्चा की, ज्यादातर बरसात से जुड़ी प्यारी बातें की श्रोताओं से, हृदय खिल गया। सावन पर चर्चा करते हुए सावन के पकवान पर बात छिड़ गई जो मुंह को गंगा का उद्गम स्थल बना दिया। अच्छा लगा ऐसे भी बरसात में पेट की अग्नि धीमी हो जाती है जिसमें घी का काम किया। अच्छी प्रस्तुति के लिए बधाई हो मनिंदर जी, सफल संयोजक के लिए संयोजिका ऋषि जी को भी बधाई। रेडियो प्रेमियों ने भी नहले पे दहले बातें की, जो गीत चुने थे वो मौसम को रंगीन किए, आप लोगों को भी बधाइयां। इन्होंने सभी को बधाइयां दी है तो अब जवाब आपसे चाहते हैं।
1: और हमारे जो श्रोता है मनोज कुमार साहू जी, गायत्री, धनंजय और कृष्ण

0: कुमार जी, तो आप हमारे नियमित श्रोता भी हैं और हर बार पत्रांकन में आप हमें संदेश भेजते रहते हैं, तो इनकी जो भाषा शैली है और जो उपमाएं वो यहाँ पे देते हैं वो बहुत अच्छी होती जा रही है। जैसे इन्होंने अपने मुंह को गंगा का उद्गम स्थल बताया है। ये सुनी तो फिर मेरे चेहरे पर मुस्कान आ गई थी। तो इनका जो पत्र लिखने का लहजा है वो भी सुधरता जा रहा है, पहले भी अच्छा था, अभी और बेहतर होते जा रहा है
1: जी।
0: और आपने हमारे कार्यक्रमों को पसंद किया है और हमें बधाइयां दी हैं, इसके लिए आपका धन्यवाद। और आप इसी तरह से हमारे कार्यक्रम सुनते रहे और जो आपने यहाँ पे थोड़ा सा मजाकिया लहजे से जो लिखा है वो और हमें अच्छा लगा, और आपका लहजा अच्छा रहता है और हम आपसे यही उम्मीद करते हैं कि आप आगे भी हमें इसी प्रकार से संदेश भेजते रहेंगे। और यहाँ पे इन्होंने एक अच्छी बात लिखी है जो मुझे अच्छी लगी
1: जी।
0: वो ये कि बरसात जो है वो सर्वश्रेष्ठ क्यों है, या फिर श्रेष्ठता बरसात की क्यों है, क्योंकि इसी में ही हमारे जो अन्नदाता किसान है ये उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है और वो अन्न उगाते हैं। और ये बात भी सही कहा कि जल की भी व्यवस्था होती है, क्योंकि ये जो मानसून आता है हमारे भारत की अगर हम बात करें तो उसकी दो शाखाएं होती है, एक तो अरब सागर वाली और दूसरी बंगाल की खाड़ी वाली, और इसी से ही जिसे हम बोलते हैं रिचार्ज होना, तो भारत हमारा जो देश है उसका जो जल व्यवस्था है वो इसी से रिचार्ज होता है, इसी से ही जितने हमारे खेत हैं उनमें धान उगता है और जो हमारे अंडरग्राउंड या कहें जो भूमिगत जल स्तर है वो भी इससे रिचार्ज हो जाता है। तो हमारे जल और अन्न की व्यवस्था तो सच में बरसात में ही होती है। तो ये आपने उपमाएं दी है यहाँ पे और तुलना भी की है, आपका संदेश पढ़कर हमें अच्छा लगा और हम यही उम्मीद करेंगे कि आप आगे भी इसी तरह से प्यारे संदेश भेजते रहें। तो अब हम कार्यक्रम को समाप्त करते हैं, क्योंकि आपने बताया था ये आखिरी संदेश है और हमें आप सभी के पत्रों का इंतजार रहेगा। अब समय आ गया है कि हम आप सभी से इजाजत लें, लेकिन जाने से पहले हम आपको अपना नंबर बताएंगे ताकि आप हमें संदेश भेज सके। हमारा नंबर है 9425590590।
1: जी एक बार फिर से आपको नंबर बता देते हैं हम, नंबर है 9425590590।
0: तो अब मुझे यानी चंद्र ऋषि ठाकुर
1: और रूपाली सेठिया को
0: दें अनुमति।
1: नमस्कार।

0: अभी आप सुन रहे थे पत्रांकन, प्रस्तुति थी चंद्र ऋषि ठाकुर और रूपाली सेठिया की। श्रोताओं, अब समय है मधुरिमा का, पर उससे पहले सुनते हैं ये संदेश।
1: अरे गोपाल, मिर्ची लेकर आना।
2: क्या बात है मालिक, आज आप नींबू और मिर्ची क्यों खा रहे हैं?
1: अरे पगले, खाने के लिए नहीं, दुकान में लगाने के लिए मंगवा रहा हूँ। तू तो देख रहा है, दिन भर बैठकर मक्खी मारता हूँ, 10 ग्राहक भी दुकान में नहीं आते।
2: आएंगे कैसे मालिक, हमारी दुकान का ठीक से प्रचार भी तो नहीं हो रहा है। मेरी मानिए तो आप भी अपनी दुकान का प्रचार आकाशवाणी से करवाइए, फिर देखिए हमारी दुकान में भी ग्राहकों की भीड़ लगेगी।
1: गोपाल, आज पहली बार तूने अक्लमंदी की बात की है रे।
2: क्यों नहीं मालिक, रेडियो जो सुनता हूँ।
3: अपनी दुकान, व्यापार या सेवा का प्रचार रेडियो से करवाइए, विज्ञापन बुक करने आकाशवाणी आइए।
0: पेश है मधुरिमा।

फकत निगाह से होता है फैसला दिल का, न हो निगाह में शोखी तो दिलवरी क्या है।

मोहब्बत का सिर्फ नाम सुना था, तुमसे मिलकर जाना कि कितनी खूबसूरत होती है।

कहते हैं कि हर चीज की एक इंतहा होती है, फिर ये मोहब्बत क्यों किसी से बे इंतहा होती है।

0: एक एक बूंद को हमें बचाना है, तो मेरा खास आग्रह है वर्षा का बूंद बूंद पानी हम मिलकर के बचाएं।
1: जल है तो हम है, आइए घरों ऑफिसों में रेन वाटर हार्वेस्टिंग तकनीक अपनाएं। रिचार्ज पिट और शाफ्ट बनवाएं, अनुपयोगी बोरवेलों को ठीक करें, जलाशयों से गाद निकालें, अधिक से अधिक पेड़ लगाएं। इस बारिश आइए जुड़े कैच द रेन अभियान से।
2: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं फरहत नाज। भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य के रूप में वर्ष 2028-29 के कार्यकाल के लिए आधिकारिक रूप से चुनाव अभियान शुरू किया। वियतनाम में स्पीड बोट हादसे में मारे गए 15 भारतीय पर्यटकों के पार्थिव शरीर मुंबई लाए गए। पश्चिम बंगाल में नाव दुर्घटना के बाद 9 मछुआरों के शव बरामद किए गए। अमेरिका ने लगातार तीसरी रात ईरान पर हमले किए। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की हुरमुज जलडमरू मध्य में ईरानी जहाजों की नाकेबंदी फिर शुरू करने की घोषणा। मौसम विभाग ने आज बिहार और उड़ीसा में तेज वर्षा का अलर्ट जारी किया। और भारत ने लॉर्ड्स में एकमात्र महिला क्रिकेट टेस्ट मैच में इंग्लैंड को 270 रन से हराकर इतिहास रचा। अब समाचार विस्तार से। भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य के रूप में वर्ष 2028-29 के कार्यकाल के लिए चुनाव अभियान आधिकारिक रूप से शुरू कर दिया है। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर ने न्यूयॉर्क स्थित संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में भारत की उम्मीदवारी पेश करते हुए शांति दृष्टिकोण का अनावरण किया। विदेश मंत्री ने कहा कि मौजूदा वैश्विक परिस्थितियों में संयुक्त राष्ट्र की भूमिका पहले से अधिक महत्वपूर्ण हो गई है।
3: शांति रक्षा अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखने का एक महत्वपूर्ण माध्यम रही है। भारत ने इस जिम्मेदारी के निर्वहन में हमेशा अग्रणी भूमिका निभाई है। अब तक भारत ने विश्व भर में लगभग 50 शांति मिशनों में लगभग 3,00,000 शांति रक्षकों की तैनाती की है। वर्तमान में भारत के 4,300 शांति रक्षक 11 सक्रिय शांति मिशनों में से 10 मिशनों में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।
4: Across 10 of the 11 active missions.
2: डॉक्टर जयशंकर ने सदस्य देशों से भारत की उम्मीदवारी का समर्थन करने की अपील की। डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने कल न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुतरश से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में डॉक्टर जयशंकर ने बताया कि उन्होंने पश्चिम एशिया, यूक्रेन और सूडान सहित वैश्विक घटनाक्रमों पर चर्चा की। उन्होंने भारत और संयुक्त राष्ट्र के बीच मजबूत सहयोग को भी स्वीकार किया। वियतनाम के फू कुओक द्वीप के पास स्पीड बोट हादसे में मारे गए 15 भारतीय पर्यटकों के पार्थिव शरीर मुंबई लाए गए हैं। आंध्र प्रदेश, केरल और तमिलनाडु की सरकार इन शवों को उनके संबंधित राज्यों में उनके आवास पर पहुंचाने में समन्वय करेगी। 32 भारतीय पर्यटकों और 4 स्थानीय क्रू के सदस्य वाली स्पीड बोट शुक्रवार को वियतनाम में फू कुओक द्वीप में पलट गई। दुर्घटना में बचे 16 पर्यटक भी भारत लौट चुके हैं। एक पर्यटक वियतनाम के अस्पताल में भर्ती है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने पश्चिम बंगाल में नाव दुर्घटना पर गहरा दुख व्यक्त

0: किया है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बंगाल की खाड़ी में मछली पकड़ने वाली ट्रॉलर दुर्घटना में 9 मछुआरों की मौत पर शोक व्यक्त की है। प्रधानमंत्री ने मृतक मछुआरों के परिजन को 2,00,000 रुपए की अनुग्रह राशि देने की अभी घोषणा की है। FB महाकाली नामक ट्रॉलर 2 जुलाई को पूर्व मेदिनीपुर के दीघा संकटपुर मत्स्य बंदरगाह से 15 मछुआरों को लेकर रवाना हुई थी। 5 जुलाई के बाद ट्रॉलर से संपर्क टूट गया था। ट्रॉलर के केबिन से 9 शव बरामद किया गया है, जबकि 6 मछुआरों अभी भी पता है, उनकी तलाश जारी है। आकाशवाणी समाचार के लिए कलकत्ता से संदीपन दास गुप्ता।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।
2: एक प्रकार से PM जय अब गरीबों की जय बन गई है।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आरजी आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1455 पर कॉल करें।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। अमेरिका ने लगातार तीसरी रात ईरान के कई सैन्य ठिकानों पर हमले किए। इस दौरान वायु रक्षा प्रणालियों, तटीय रडार केंद्र, मिसाइल और ड्रोन ठिकाने तथा छोटे नौसैनिक पोत को निशाना बनाया गया। इस अभियान में पहली बार एक तरफा हमला करने वाले समुद्री ड्रोन का भी इस्तेमाल किया गया। अमरीका के अनुसार ये कार्रवाई वाणिज्यिक जहाजों पर ईरान के हमलों के जवाब में की गई। उधर ईरान ने जॉर्डन, बहरीन और कुवैत में अमरीका के सैन्य अड्डों के साथ साथ ओमान में रडार को निशाना बनाया। पश्चिम एशिया में अमरीका और ईरान दोनों ने हुर्मुज जलडमरू मध्य पर अपना नियंत्रण होने का दावा किया। इससे क्षेत्रीय सुरक्षा और कूटनीतिक प्रयासों के बारे में नई चिंता पैदा हो गई है। ओमान के पास हुर्मुज जलडमरू मध्य में वाणिज्यिक जहाजों पर ईरान के हालिया ड्रोन और मिसाइल हमलों के बाद क्षेत्र में तनाव बढ़ गया है। इसके बाद से हुर्मुज से कोई भी वाणिज्यिक पोत नहीं गुजरा है। अमेरिका ने आज से हुर्मुज जलडमरू मध्य में ईरानी जहाजों की नाकेबंदी फिर शुरू करने की घोषणा की है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरान के साथ व्यापार करने वाले जहाजों पर समुद्री सुरक्षा की लागत को पूरा करने के लिए अमेरिका 20% शुल्क लगाएगा। अन्य देशों के व्यावसायिक जहाजों की आवाजाही पहले की तरह जारी रहेगी। उधर ईरान ने अमरीकी फैसले को खारिज करते हुए कहा है कि वो किसी भी स्थिति में हुर्मुज जलडमरू मध्य के प्रबंधन में अमरीकी हस्तक्षेप स्वीकार नहीं करेगा। अमरीकी घोषणा के बाद वैश्विक बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में तेज वृद्धि हुई। अंतर्राष्ट्रीय बेंचमार्क ब्रेंट क्रूड की कीमत करीब 9.6% बढ़कर $83.30 प्रति बैरल पर पहुंच गई। देश की सबसे बड़ी वैश्विक वस्त्र प्रदर्शनी भारत टेक्स आज से नई दिल्ली स्थित भारत मंडपम में शुरू हो रही है। केंद्रीय वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह इस कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 5F विजन यानी खेत, धागा, कारखाना, फैशन और विदेश से प्रेरित होकर भारत टेक्स वस्त्र मूल्य श्रृंखला में व्यापार, निवेश, नवाचार, नीतिगत संवाद और रणनीतिक साझेदारी के लिए प्रमुख मंच के रूप में विकसित हुआ है। 17 जुलाई तक चलने वाला ये आयोजन देश के वस्त्र उद्योग के संपूर्ण विस्तार को एकीकृत वैश्विक मंच पर लाएगा।
2: 4 दिवसीय इस आयोजन में वस्त्र, फैशन, सतत विकास, प्रौद्योगिकी, नवाचार, निवेश और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के क्षेत्र में भारत के बढ़ते वैश्विक नेतृत्व का प्रदर्शन किया जाएगा। कार्यक्रम में निर्माता, निर्यातक, वैश्विक खरीदार, निवेशक, नीति निर्माता, अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधि मंडल, शिल्पकार, स्टार्टअप और प्रौद्योगिकी प्रदाता एक मंच पर एकत्र होंगे। इस आयोजन में हजारों प्रदर्शक, 7,000 से अधिक खरीदार तथा 20 से अधिक देशों अमेरिका, ब्रिटेन, जापान, पुर्तगाल, स्पेन, न्यूजीलैंड और दक्षिण कोरिया सहित अन्य देशों के प्रतिनिधि और प्रतिभागी शामिल होंगे। सरकार की मजबूत भागीदारी को दर्शाते हुए इस वर्ष 8 राज्य इस आयोजन के साझेदार हैं, जबकि 9 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश प्रदर्शक के रूप में भाग ले रहे हैं। प्रिया मंडल की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मनोज।
1: नई दिल्ली स्थित अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान में बुधवार से 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी सौश्रुतम आयोजित की जाएगी। इस संबंध में आज एक दिन की कार्यशाला होगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू सौश्रुतम का उद्घाटन समारोह में शामिल होंगे। केंद्र और दिल्ली

0: उपराज्यपाल तरणजीत सिंह संधू भी कार्यक्रम में उपस्थित रहेंगे। इस संगोष्ठी का उद्देश्य आयुर्वेद और आधुनिक शैल्य चिकित्सा के बीच सहयोग बढ़ाना तथा शोध, नवाचार और शिक्षा को प्रोत्साहित करना है। ये कार्यक्रम शल्य चिकित्सा के जनक आचार्य सुश्रुत की स्मृति में आयोजित किए जा रहे हैं। मौसम विभाग ने बिहार और उड़ीसा में आज मूसलाधार बारिश का अलर्ट जारी किया है। अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, असम और मेघालय में भी आज तेज वर्षा हो सकती है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, आंध्र प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, बिहार, पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र, झारखंड, सिक्किम, कर्नाटक और उड़ीसा में तूफान की आशंका है। असम के कई जिलों में बाढ़ की स्थिति बनी हुई है। मौसम विभाग ने आज और कल राज्य के कई जिलों में तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। असम राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अनुसार 6 जिले शिवसागर, लखीमपुर, दरांग, सोनितपुर, धेमाजी और जोरहाट बाढ़ से प्रभावित हैं। गुवाहाटी और शिवसागर के कई इलाकों में जलभराव और बाढ़ के कारण वाहनों का आवागमन बाधित हो गया है। बिहार के कटिहार जिले के मूसापुर गांव से पुलिस ने पाकिस्तान स्थित आतंकी नेटवर्क से जुड़े संदिग्ध को गिरफ्तार किया है। कटिहार के उपमंडलीय पुलिस अधिकारी सुनील कुमार शर्मा ने बताया कि ये युवक राष्ट्रविरोधी गतिविधियों में लिप्त था।
1: जांच के क्रम में यह बात ज्ञात हुआ कि ये पाकिस्तान बेस्ड हैंडलर के संपर्क में था एवं भारत में कोई बड़ी घटना को अंजाम देने के फिराक में था। इस आरोप में इन्हें विधिवत गिरफ्तार किया गया है। इस कार्रवाई में आईबी, एटीएस एवं एसटीएफ की टीम का भी सहयोग प्राप्त हुआ है। इस संदर्भ में अनुसंधान एवं अन्य सभी पहलुओं पर जांच की जा रही है।
0: राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने नीट यूजी की पुनः परीक्षा की ओएमआर शीट जारी कर दी है। उम्मीदवार एनटीए की वेबसाइट neet.nta.nic.in पर अपने आवेदन नंबर से लॉगिन कर ओएमआर शीट और उत्तर देख सकते हैं। उम्मीदवार अपने उत्तरों की तुलना स्कैन किए गए उत्तरों से कर सकते हैं। किसी उत्तर का मिलान न हो तो उम्मीदवार प्रश्न का चयन करके अपने चुने हुए विकल्प पर निशान लगा सकते हैं और ₹200 के शुल्क का भुगतान करके चुनौती दे सकते हैं। चुनौती सही पाए जाने पर शुल्क वापस कर दिया जाएगा। ओएमआर चुनौती सुविधा 15 जुलाई तक उपलब्ध रहेगी। खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने ऐतिहासिक जीत पर भारतीय महिला क्रिकेट टीम को बधाई दी है। भारतीय टीम ने पहली बार लॉर्ड्स के मैदान पर टेस्ट मैच जीतकर इतिहास रचा है। भारत ने इंग्लैंड पर 270 रन से शानदार जीत दर्ज की। श्री मांडविया ने कहा कि खिलाड़ियों ने लॉर्ड्स में यादगार उपलब्धि हासिल कर देश का गौरव बढ़ाया है। वहीं इंग्लैंड के लिलिशॉल नेशनल स्पोर्ट्स सेंटर में अंडर 21 महिला हॉकी श्रृंखला में आज भारतीय टीम का सामना बेल्जियम से होगा। भारत के इंग्लैंड दौरे का ये अंतिम मैच है। भारत ने पिछले मैच में इंग्लैंड को 2-0 से हराया था। इससे पहले अमेरिका ने शूटआउट में भारत को 3-2 से हराया था। उड़ीसा के पुरी स्थित श्री जगन्नाथ मंदिर में आज भगवान जगन्नाथ, भगवान बलभद्र और देवी सुभद्रा के पवित्र नव यौवन दर्शन होंगे। स्नान पूर्णिमा के बाद पखवाड़े भर चलने वाले अंसार काल के बाद पवित्र त्रिमूर्ति का पहला सार्वजनिक दर्शन होगा। मान्यता है कि स्नान पूर्णिमा के बाद अपनी धार्मिक बीमारी से ठीक होने के बाद पवित्र त्रिमूर्ति देश भर से आने वाले लाखों श्रद्धालुओं के समक्ष अपने नए युवा रूप में प्रकट होंगे। मंदिर प्रशासन, जिलाधिकारियों और पुलिस ने सुचारू और व्यवस्थित दर्शन सुनिश्चित करने के लिए व्यापक सुरक्षा और यातायात व्यवस्था की है। नव यौवन दर्शन के साथ रथ यात्रा के पूर्व सभी अनुष्ठानों का समापन होगा और विश्व प्रसिद्ध जगन्नाथ रथ यात्रा का शुभारंभ होगा। रथ यात्रा गुरुवार को पवित्र त्रिमूर्ति की श्री गुंडिचा मंदिर तक की औपचारिक यात्रा के साथ मनाई जाएगी। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं सरफिरोजी।
2: धन्यवाद फरत। लॉर्ड्स में इंग्लैंड के खिलाफ भारतीय महिला टीम के मैच जीतने का समाचार आज सभी समाचार पत्रों में छाया हुआ है। राजस्थान पत्रिका लिखता है, भारतीय बेटियों ने लॉर्ड्स में लहराया तिरंगा, विदेश में सबसे बड़ी जीत। वहीं जनसत्ता ने राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले से जुड़ी याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट के नोटिस को सुर्खी बनाया है। पत्र लिखता है, केंद्र और यूपी सरकार को नोटिस, एसआईटी से स्थिति रिपोर्ट मांगी। अमरीका ईरान जंग तेज, रूस भी कूदा, अमर उजाला की सुर्खी है। पत्र लिखता है, ट्रंप ने ईरान की फिर की नाकेबंदी, हॉर्मूज से गुजरने पर 20% टोल मांगा। जगन्नाथ यात्रा में पहली बार देवी सुभद्रा का रथ खींचेंगी महिलाएं, हिंदुस्तान ने बदलाव शीर्षक से ये खबर प्रकाशित की है। अब नहीं सजेगा दिल्ली पुस्तक मेला, 31 साल पुरानी परंपरा हुई खत्म, दैनिक जागरण ने ये खबर प्रमुखता से प्रकाशित की है। अमरीका

0: अंतरिक्ष में दर्पण लगाएगा, रात में भी सूरज चमकेगा। दैनिक भास्कर की सुर्खी है, पत्र लिखता है जब चाहे जहां चाहे मिलेगी रोशनी, इस साल लॉन्च हो सकते हैं 2 सैटेलाइट। जनसत्ता ने अपने संपादकीय पन्ने पर श्रमिकों की सुरक्षा पर एक लेख प्रकाशित किया है, शीर्षक है सफाई कर्मियों की सुरक्षा का सवाल। पत्र लिखता है आज भी कई जगहों पर नाले या सेप्टिक टैंक की सफाई बिना सुरक्षा के श्रमिकों से कराई जाती है। हर साल बड़ी संख्या में ऐसे श्रमिकों की मौत हो जाती है, मगर पीड़ित परिवारों को न्याय कम ही मिल पाता है। आखिर कब तक इन मौतों को नजरअंदाज किया जा सकता है। कश्मीर के पहाड़ों पर 2 दशकों में लगभग 1 डिग्री बढ़ा तापमान हिमालय के नाजुक इकोसिस्टम पर क्लाइमेट चेंज के बढ़ते असर को दिखाती है ये स्टडी, वीर अर्जुन की सुर्खी है।
1: धन्यवाद सर फिरोजी। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य के रूप में वर्ष 2028-29 के कार्यकाल के लिए आधिकारिक रूप से अपना अभियान शुरू किया। वियतनाम में स्पीड बोट हादसे में मारे गए 15 भारतीय पर्यटकों के पार्थिव शरीर मुंबई लाए गए। पश्चिम बंगाल में

0: छत्तीसगढ़ी समन्वित साहित्यिक पत्रिका मोर भुइया के आज के अंक में आप सभी श्रोता साथी मन के स्वागत है। जय जोहार, राम राम, महेंद्र साहू को तिले। श्रोता साथी हो, आज के अंक में आप मन ला सुनवाथन एक कवि गोष्ठी, और एक कवि गोष्ठी के संचालन करत हैं श्री डुमन लाल ध्रुव। तो आवा सुनाथन एक कवि गोष्ठी ला।
1: मोर भुइया कार्यक्रम सुनैया संगवारी और श्रोता मल्ला हार्दिक जय जोहार। आकाशवाणी रायपुर द्वारा आयोजित काव्य गोष्ठी में पधारे हवे छत्तीसगढ़ी के सुप्रसिद्ध गीतकार कवि श्री रामेश्वर वैष्णव जी, जौन रायपुर

0: रंग झाझर झूरे जैसे बदरा घूंघट खोले चर चर चर चर घाम करे, जैसे बदरा घूंघट खोले चर चर चर चर घाम करे, कड़कड़ करानी रुम झुम रुम झुम बांध भरे, कड़कड़ करा पड़ पड़ पानी रुम झुम बांध भरे, सतरंगी धनुष देखे बर लैका सियान लो रहे, सुखा नंदिया पूरा चढ़ गे रंग झाझर झूरे, सुखा नंदिया पूरा चढ़ गे रंग झाझर झूरे, सुर सुर सुर सुर पवन झकोरा बेराला बिजरावत है, सुर सुर सुर सुर पवन झकोरा बेराला बिजरावत है, नारा बेला पहिराय कंगन रुख फुनगी इतरावत है, नार बेला पहिराए कंगन रुख फुनगी इतरावत है, नावा दुल्हिन हरियर कथरी ओढ़े गाथे कोरे है, सुखा नंदिया पूरा चढ़ गे रंग झाझर झोरे है, सुखा नंदिया पूरा चढ़ गे रंग झाझर झोरे है। और मोर अगला कविता है पानी द मोर दे, पानी द मोर दे नांगर बैला जोर दे, पानी द मोर दे नांगर बैला जोर दे, अक्तिति हार मनागे बादर बंधना छोर दे, पानी द मोर दे नांगर बैला जोर दे, होरा कस भूंजा थे जेठ के महीना, होरा कस भूंजा थे जेठ के महीना, बेरा के धरकत ले तलपते जीना, नौ टप्पा घुरुर घागर नौ टप्पा घुरुर घर अर भुया पाटी कोर दे, पानी द मोर दे नांगर बिला जोर दे, पानी द मोर दे नांगर बिला जोर दे, किसानी के बेरा आगे खपरा छानी छाओ जी, किसानी के बेरा आगे खपरा छानी छाओ जी, कांटा खुटी बीनो पर दपलानी बंधाओ जी, पै डगरी रेंगत छिपिर छापर भर का पानी लोर दे, पानी द मोर दे नांगर बिला जोर दे, पानी द मोर दे नांगर बिला जोर दे, और सर सर सर सर चलत हवे धूकी गरेरा, सर सर सर सर चलत हवे धूकी गरेरा, धर धर धर धर पानी गिरा जुड़ा जीवन डेरा, बिजबौनी टुकनी बिसा बिजबौनी टुकनी बिसा बीजा भात जोर दे, पानी द मोर दे नांगर बिला जोर दे, पानी द मोर दे नांगर बिला जोर दे।
1: अभी भाई श्री अशोक कुमार साहू जी आकाश छत्तीसगढ़ी में काव्य रचना करत रहने, और मैं छत्तीसगढ़ के माटी के सुगंध ला अपन लेखनी में समेटने वाला आदरणीय श्री रामेश्वर वैष्णव जिला काव्य पाठ खातिर सादर आमंत्रित करत हूँ।
2: स्वागत आकाशवाणी रायपुर है, छत्तीसगढ़ी के समृद्धि ला, छत्तीसगढ़ी के ताकत ला और छत्तीसगढ़ी के शब्द भंडार ला सामने लाए में बहुत बड़े योगदान दे है। आज जो छत्तीसगढ़ी है भाषा के दर्जा पाए के लायक बने हैं
1: जी,
2: तेकर पिछू में आकाशवाणी रायपुर के भी
0: बहुत बड़े
2: बहुत योगदान है
0: जी, सही बात।
2: अब मैं हास्य व्यंग लिखने वाला हूँ, अब विषय के कमी पड़ गए, हास्य भर कहाँ से विषय लाया जाए
0: जी।
2: हास्य कवि मन अतका विषय अतका सब खोदाल खोदाल के लिख डालीन है कि बचीस नहीं, तो मैं हर करुणा ला विषय मनात हूँ, तो अच्छा। डोकरा मन के जीवन में जो करुणा है
0: अच्छा,
2: तेला हास्य के माध्यम से
1: जी
2: पेश करे के मोर उदिम ल देखा
0: जी। जी जी स्वागत,
1: बहुत बढ़िया
0: स्वागत।
2: छाती महा मुरु दिल है जी डोकरा हवन तका हो गे, छाती महा मुरु दिल है जी डोकरा हवन तका हो गे,

0: गोठिया एक महफिल है जी, गोठिया एक महफिल है जी, भोभला हवन तक हो गे छाती महामरो दिल है जी, डोकरा हवन तक हो गे
1: बहुत बढ़िया,
0: छाती महामरो दिल है जी, डोकरा हवन तक हो गे। दुनिया किंदर के बैठे हन, अनुभव टमर के बैठे हन,
1: वाह वाह।
0: दुनिया किंदर के बैठे हन, अनुभव टमर के बैठे हन, सेहत भले गवा डारेन, संसोला धर के बैठे हन, सेहत भले गवा डारेन, संसोला धर के बैठे हन। जांगर अभी चलत है जी, जांगर अभी चलत है जी, बपरा हवन तक हो गे, धातीमा हमरो दिल है जी, डोकरा हवन तक हो गे, छातीमा हमरो दिल है जी, डोकरा हवन तक हो गे। एक कोठी दांत नहीं बाचिस,
2: वाह,
0: अब खून तात नहीं बाचिस,
1: बहुत बढ़िया।
0: एक कोठी दांत नहीं बाचिस, अब खून तात नहीं बाचिस, हम जे मने गए हो वो कोनो बरात नहीं बाचिस, हम जे मने गए हो वो कोनो बरात नहीं बाचिस, सब सूट बूट पहिरेन अब, सब सूट बूट पहिरेन अब, उघरा हवन तक हो गे,
1: हमरो
0: दिल है जी, डोकरा हवन तक हो गे, छाती मा हमरो दिल है जी, डोकरा हवन तक हो गे। और डोकरा मन के सबसे बड़े पीरा, पारा मुहल्ला नहीं पूछ है, बस्ती हमला नहीं पूछ है, पारा मोहल्ला नहीं पूछ है, बस्ती हमला नहीं पूछ है, भगवान के भरोसा हन, अब लोग लैका नहीं पूछ है, भगवान के भरोसा हन, अब लोग लैका नहीं पूछ है, बस जाए के तैयारी है, बस जाए के तैयारी है, खोरवा हवन तक हो गे, छाती महामरो दिल है जी, डोकरा हवन तक हो गे। गोठिया एक महफिल है जी, गोठिया एक महफिल है जी, भोबला हवन तक हो गे, छाती महामरो दिल है जी, डोकरा हवन तक हो गे, छाती महामरो दिल है जी, डोकरा हवन तक हो गे। आओ,
2: बहुत अच्छा लगे।
0: मोर कविता के बाद आज जो ये कवि गोष्ठी के संचालन कर रहे थे डुमन लाल जी ध्रुव, रहे बर तो नवा नेवरिया लगते हैं, हालांकि 50 साल की उम्र तक पहुंचत हो ही, लेकिन एकर बहुत बढ़िया हाल ये है कि ये नई कविता लिखते हैं, छत्तीसगढ़ी में नई कविता लिखते हैं, ये लिखना बड़ा बौद्धिकता की बात है। और मैं उकर से आग्रह करूं कि नई कविता के रंग में छत्तीसगढ़ी के ढंग ला पेश करें जी। भाई डुमन लाल जी ध्रुव।
1: मोर कविता के शीर्षक है अपन जिंदगी बचाना। जंगल अब पहले जैसे नहीं बोले,
2: हाँ,
1: जंगल अब पहले जैसे नहीं बोले, पेड़ मन खड़े रही थे ओकर छाव मा,
0: वाह।
1: जंगल अब पहले जैसे नहीं बोले, पेड़ मन खड़े रही थे ओकर छाव मा, थकान बैठे बर जगह नहीं बाँचे। जंगल अब पहले जैसे नहीं बोले, पेड़ मन खड़े रही थे ओकर छाव में, थकान बैठे बर जगह नहीं बाँचे, लकड़ी बन के निकले है जंगल,
0: वाह।
1: लकड़ी बन के निकले है जंगल, और माटी अपन हरियर सिंगार बर खोजत फिरत है, और माटी अपन हरियर सिंगार बर खोजत फिरत है,
0: वाह वाह।
1: तो धुआं हम हवा ले आगू भगत है, तो धुआं हम हवा ले आगू भगत है, मनखे अपन सांस ला हाथ ले टटोला थे, जैसे ऑक्सीजन घलो अब बाजार के चीज हो गए, नदी के पानी मा आगास के रंग कम है,
0: वाह वाह वाह।
1: नदी के पानी मा आगास के रंग कम, कारखाने के छैया ज्यादा दिखते,
0: वाह वाह वाह।
1: गोड़ेला चिड़ई पड़की मैना कोयली सबके गीत धीरे धीरे चुप होवा जाते, लैका मन किताब में चिड़ई ला देखते,

0: वाह वाह वाह,
1: लइका मन किताब में चिड़ई ला देखते, अंगना में नहीं, फिर धरती है कोनो शिकायत नहीं करे, सिर्फ चुपचाप सुखात रही थे।
0: वाह,
1: धरती है कोनो शिकायत नहीं करे, सिर्फ चुपचाप सुखात रही थे। ओकर चुप्पी सबले बड़े सवाल है, ओकर चुप्पी के सबले बड़े सवाल है, अगर आज एक ठन बीज बो है तो काली कोनो डार है, हवाला जन्म दे ही। आज अगर एक ठन बीज बो है तो काली कोनो डार है, हवाला जन्म दे ही, कोनो चिड़ई फिर अपन घर बनाही, और मनखे समझी जंगल बचाना सिर्फ पेड़ बचाना नहीं, अपन जिंदगी बचाना आए, जंगल बचाना सिर्फ पेड़ बचाना नहीं, अपन जिंदगी बचाना है।
0: बहुत सुंदर।
1: मोर दूसर कविता है बिहान ला जगाही।
2: वाह,
1: आज बिहान के हवा थके थके ऐस।
2: वाह वाह,
1: आज बिहान के हवा थके थके ऐस, ओकर संग फूल के महक नहीं, धुआं के गंध रहिस। आज बिहान के हवा थके थके ऐस, ओकर संग फूल के महक नहीं, धुआं के गंध रहिस। आज मनखे है मास्क पहिर के चलत है, आज मनखे है मास्क पहिर के चलत है, फिर पेड़ मन बिना शिकायत सबो ला सांस दे के कोशिश करत रही थे। कटत जंगल ला देख के, कटत जंगल ला देख के सूरज नारायण घलो कभो कभो उदास लगते। कटत जंगल ला देख के सूरज नारायण घलो कभो कभो उदास लगते, ओखर अंजोर मा पहली जैसे चमक नहीं है, ओकर अंजोर मा पहली जैसे चमक नहीं है, गोड़ेला चिड़ई अपन नान कुन घर ला छोड़ के कहां उड़ गए कोनो ला पता नहीं है।
0: वाह वाह वाह, क्या चीज।
1: गोड़ेला चिड़ई अपन नान कुन घर ला छोड़ के कहां उड़ गए कोनो ला पता नहीं है, ओकर घोंसला है हवा में डोलत रही थे, ओकर घोंसला है हवा में डोलत रही थे, धरती के सीना में जेन हरियर सपना रहिस, ओला कुदारी है कुटी कुटी काट डालिस।
0: बहुत सुंदर चित्र, बहुत सुंदर।
1: ओकर घोंसला हवा में डोलत रही थे, धरती के सीना में जेन हरियर सपना रहिस, ओला कुटी कुटी काट डालिस। अब जरूरत है नवा कारखाना ले पहली, अब जरूरत है नवा कारखाना ले पहली, नवा जंगल बनाए के।
2: वाह,
1: अब जरूरत है नवा कारखाना ले पहली, नवा जंगल बनाए के, नवा सड़क ले पहली, पुराना पेड़ बचाए के।
0: वाह वाह,
1: जेन दिन
0: बहुत बड़ी
1: हर घर एक ठन पेड़ लगाही, जेन दिन हर घर एक ठन पेड़ लगाही, ओ दिन ऑक्सीजन बिसाए ला नहीं पड़ी, हवा फेर मुस्काही, हवा फेर मुस्काही, और चिड़ई मन अपन गीत ले बिहान ला जगाही, और चिड़ई मन अपन गीत ले बिहान ला जगाही।
2: वाह वाह वाह वाह, बहुत बढ़िया।
1: और अब मैं काव्य पाठ के लिए श्री अशोक कुमार साहू आकाश जिला सादर आमंत्रित करत हूँ।
0: धन्यवाद ध्रुव जी। आज दूसरा दौर में मोरे कविता है काकरो बर थाढ़े नहीं बेरागा, काकरो

0: लगा। काकरो सपना अधिया थे, काकरो सपना मरिया थे, काकरो सपना अधिया थे, काकरो सपना मरिया थे, ओकरे जिंदगी पूरना थे, जहर पूरे बर अड़िया थे।
1: वाह वाह वाह।
0: बेरा के हाथ झपट खा ले केरा गा, काकरो बर ठाड़े नहीं बेरा गा, कतरो जांगर पीराए तो भोले नहीं ठीराए, घानी नांगर पंदाए तेल बेचे नहीं सिराए, कतरो जांगर पीराए तो भोले नहीं ठीराए, घानी नांगर।

0: तेल बेचे नहीं सिराए, ओकरे तनियाए रही थे डेरागा, ककरो बर ठाड़े नहीं बेरागा।
1: वाह वाह वाह।
0: जेहर रही थे अलाल, पर थे ओकरे बर अकाल, रही जेहर रही थे अलाल, पर थे ओकरे बर अकाल, ओला हीरा मिल के रही थे जेहर कोड थे पताल।
2: वाह वाह।
0: बड़े बड़े को कर गे कर फेरागा, ककरो बर ठाड़े नहीं बेरागा।
1: वाह वाह बहुत बढ़िया।
0: ककरो बर ठाड़े नहीं बेरागा।
2: अब
0: और अगला कविता है, जिंदगी खुवार हो गया फंदा।

0: ते लकड़ी।
1: अभी काव्य रचना पढ़त रहीन श्री अशोक कुमार साहू आकाश जी, जेकर कविता में छत्तीसगढ़ के लोक जीवन, गांव गवई के संवेदना, समाज के यथार्थ और जागरण के गहिर चित्रण देखे बर मिलिस। और अब मैं हम आमंत्रित कर

0: केउ जर होही, दिल हजत के उज्जर होही, करनी ओत के सुघर होही।
1: बहुत बढ़िया।
0: दिल हजत के उज्जर होही, करनी ओत के सुघर होही। मेहनत के अचरा झन छोड़ो, मेहनत के अचरा झन छोड़ो, किस्मत खुदे मंगेतर होही।
2: वाह वाह।
0: दिल हजत के उज्जर होही, करनी ओत के सुघर
2: होही।
0: जेन पसीना रोज बोहाही, रोज बोहाही हो, जेन पसीना रोज बोहाही, जेन पसीना रोज बोहाही, खेत ओकरे हरियर होही। दिल हजत के उज्जर होही, जेन पसीना रोज बोहाही, खेत ओकरे हरियर होही। दिल हजत के उज्जर होही, करनी ओत के सुघर होही। टुकना भर दुख परे हवैता, टुकना भर दुख परे हवैता, टुकना भर दुख परे हवै त खुशी घलो गाड़ा भर होही। दिल हजत के उज्जर होही, करनी ओत के सुघर होही। दिल हजत के उज्जर होही,
1: करनी ओत
0: छैहा के सपना देखत हो, छैहा के सपना देखत हो।
1: बहुत बढ़िया।
0: छैहा के सपना देखत हो, कोनो दिन तुहरो घर होही। दिल हजत के उज्जर होही, पर के धन लौले जीलत है, पर के धन जौने लीलत है, पर के धन जौने लीलत है, पन के धन जौने लीलत है, घर मो कर अजगर होही। दिल हजत के उज्जर होही, करनी ओत के सुघर होही। और आखिरी शेर है
1: जी जी,
0: बड़का मान उही लामिन ही, बड़का मान उही लामिन ही, बड़का मान उही लामिल ही, जेकर जौहर जांगर होही। दिल हजत के उज्जर होही, करनी ओत के सुघर होही। दिल हजत के उज्जर होही, करनी ओत के सुघर होही। आओ मैं अब फिर से डुमन लाल जी ध्रुव ला कविता पढ़े बार आमंत्रित करा थो। पहली बार कविता में उन छत्तीसगढ़ी में नई कविता सुनाई, और नई कविता के जतका तेवर है
1: जी,
0: ते सब ला आप देखे हो। अब मैं उकर से गेलौली करत हूँ कि वो अपन काव्य पाठ शुरू करे।
2: कविता के शीर्षक है धरती के भुखार।
1: वाह, अच्छा शीर्षक।
2: धरती ला हल्का भुखार रहीस, धरती ला हल्का भुखार रहीस, मन के ध्यान नहीं दिस। बुखार रहीस, मन के ध्यान नहीं दिस, भुखार बाढ़त गिस, नदी सुखाते गई। भुखार बाढ़त गिस, नदी सुखाते गिस, जंगल घटिस, गर्मी चढ़िस, फिर एक दिन सूरज नारायण घलो कड़क लगिस।
0: वाह।
2: फिर एक दिन सूरज नारायण घलो कड़क लगिस।
1: बहुत बढ़िया।
2: धरती किहिस, धरती किहिस, मोर दवाई पेड़ हवे।
0: वाह।
2: धरती किहिस, मोर दवाई पेड़ हवे।
1: बहुत बढ़िया।
2: मनखे सुनिस, फिर दूसरैया दिन फिर एक पेड़ कट गए। धरती किहिस, मोर दवाई पेड़ हवे। मनखे सुनिस, फिर दूसरैया दिन फिर एक पेड़ कट गए, फिर एक पेड़ कट गए।
0: वाह वाह वाह।
2: दूसरा है आखिरी महुआ। महुआ के बूढ़ा पेड़ गांव के छोर में खड़े हैं। महुआ के बूढ़ा पेड़ गांव के छोर में खड़े हैं। वो जानते कि ओकर संगवारी मन एक एक करके जावत हवे।
0: वाह।
2: महुआ के बूढ़ा पेड़

0: गांव के छोर में खड़े है वो जानत है कि ओकर संगवारी मन एक एक करके जावत हवे, फिर महुआ हर साल फूल झर रहते, धरती ऊपर सफेद चादर बिछ जाते, फिर महुआ हर साल फूल झर रहते, धरती ऊपर सफेद चादर बिछ जाते, पेड़ कही थे जब तक मैं हवा हूं, पेड़ कही थे जब तक मैं हवा हूं तब तक जंगल की कहानी जिंदा है।
1: वाह।
0: पेड़ कही थे जब तक मैं हवा हूं तब तक जंगल के कहानी जिंदा है, हवा ओकर बात ला दूर ले जाते, काबर की कहानी बचाना अब पेड़ बचाए जिसने कठिन हो गए हैं, काबर की कहानी बचाना अब पेड़ बचाए जिसने कठिन हो गए।
1: वाह वाह
2: बहुत बढ़िया।
0: तो अभी अपन मोर भुइया कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ी काव्य पाठ करत रही है छत्तीसगढ़ के लोकप्रिय गीतकार आदरणीय श्री रामेश्वर वैष्णव जी जौन रायपुर ले पधारे हवे, श्री अशोक कुमार साहू आकाश जी बालोद ले पधारे हवे, और मैं डुमन लाल ध्रुव जौन धमतरी ले आकाशवाणी में मोर भुइया कार्यक्रम के तहत काव्य पाठ करे बर हाँ हूँ, और आप सबके उपस्थिति ला मैं सादर नमन का करत हूँ। जय जोहार।
3: अभी आप मन सुनत रहे हो कवि गोष्ठी, और एक कवि गोष्ठी का संचालन करत रहिन श्री डुमन लाल ध्रुव, और एकरे संग छत्तीसगढ़ी समन्वित साहित्यिक पत्रिका मोर भुइया के आज के ए अंक ले मोला इहे विदा देवा। जय जोहार। राम राम।

0: फायदा है। जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुंच जाओ।
1: पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं?
0: बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो 8700014242।
1: ओ 8700014242। लो अभी फोन लगाता हूँ 8700014242 पर।
2: यदि आप अब कोई नई कार या बाइक लेने की तैयारी कर रहे हैं तो वो आपको काफी किफायती दामों पर उपलब्ध होगी। जीएसटी परिषद ने छोटी कारों 350 सीसी तक की बाइक और तिपहिया वाहनों पर टैक्स 28% से घटाकर 18% कर दिया है। 22 सितंबर 2025 से लागू होने वाला ये त्योहारी तोहफा एंट्री लेवल गाड़ियों को और भी किफायती बना देगा, जबकि लग्जरी कारें और बड़ी बाइक 40% के नए स्लैब में आ गई हैं, लेकिन फिर भी उन पर कम टैक्स लगेगा।
3: मीडियम वेव और एफएम बैंड पर हम आकाशवाणी के जगदलपुर केंद्र से बोल रहे हैं। इस समय सुबह के 9 बजे हैं। प्रस्तुत है रूपक गोंचा परब। रूपक के लेखक हैं जोगेंद्र महापात्र जोगी और प्रस्तुत करता है M.A. रहीम।

0: सत्य युग में मालव अंचल अवंती सम्राट इंद्रद्युम्न सत्यवादी पितृभक्त समस्त गुणयुक्त अति तेजस्वी परम विष्णु भक्त के रूप में प्रसिद्ध थे।
1: प्रजाजन उनकी कीर्ति पताका फहराती देख झूम उठते थे। इंद्रद्युम्न पूजा घर में तल्लीन थे भगवान श्री वासुदेव की स्तुति में।

0: वे दुखी थे श्री विष्णु जी का उन्हें प्रत्यक्ष दर्शन नहीं मिलने से कि जटिल मुनि का महल में आगमन होता है।
1: मुनिवर कहते हैं,
2: राजन आपकी सेवा शिरोधार्य है, धन्य है आपकी वासुदेव भक्ति, नमन है आपकी विष्णु भक्ति को, निश्चय ही आपको चतुर्भुज दर्शन देंगे।
0: ब्रह्म मुहूर्त के स्वप्न से राजा इंद्रद्युम्न को शंख चक्र गदा पद्म से अलंकृत विष्णु कहते हैं,
3: वत्स, उड़ीसा स्थित पुरुषोत्तम श्री क्षेत्र में मेरा शासन है, वहां मैं तुम्हें दर्शन दूंगा।
0: प्रातः राजा अपने राज पुरोहित के अनुज विद्यापति को स्वप्न सत्यता के लिए उत्कल भूमि भेजते हैं।
1: 45 दिनों के बाद विद्यापति उड़ीसा से वापस आकर राजा से कहते हैं,
2: नील पर्वत नीलांचल श्री क्षेत्र में शबर राजा विश्वावसु विश्वरूपम भगवान श्री नील माधव के प्रति समर्पित हैं। मैंने शबर राज की पुत्री ललिता से ब्याह कर संपूर्ण रहस्य जान लिया है कि विष्णु जी आपको किस प्रकार से प्राप्त होंगे। उन्होंने स्वप्न दिया है आप सकुटुंब प्रजाजनों के साथ श्री क्षेत्र पहुंचे।
1: और इंद्रद्युम्न ने महर्षि नारद तथा विश्वावसु के सहयोग से नील माधव का दर्शन कर दक्षिण तट पर महासमुद्र से विष्णु जी का

0: आशीष लेकर उनके आदेश से महादारु ब्रह्म प्राप्त किया
1: और गुंडीचा घर जनकपुर में विष्णु रूपी विश्वकर्मा जी से अर्ध निर्मित बलभद्र जगन्नाथ सुभद्रा काष्ठ प्रतिमा पाकर अपनी तपस्या बल से ब्रह्मा जी के द्वारा श्री मंदिर में वैशाख शुक्ल पक्ष अष्टमी बृहस्पतिवार पुष्य नक्षत्र में इंद्रद्युम्न ने जगन्नाथ सुभद्रा बलभद्र अन्य देवी देवताओं की प्राण प्रतिष्ठा की। जगन्नाथ जी इंद्रद्युम्न से कहते हैं,
2: पुत्र मैं तुम्हें अपनी अन्य पावनी भक्ति देता हूं। मैं यहां ब्रह्मा के द्विप्रहरार्ध के अंत तक वास करूंगा। मेरी भक्ति मुझे मेरे अनुसार अर्पण करना, यथा ज्येष्ठ शुक्ल पूर्णिमा को मेरा जन्मदिन मनाना और 15 दिवस तक मंदिर का कपाट बंद रखना। आषाढ़ शुक्ल द्वितीया से दशमी पर्यंत रथ पर्व, एकादशी को हरिशयन, श्रावण शुक्ल पूर्णिमा को मेरा बार उत्सव झूला जात्रा, भाद्रपद शुक्ल एकादशी को मेरे करवट लेने की विधि, आश्विन में कार्तिक शुक्ल नवरात्र एकादशी को देवोत्थान उत्सव, सुवर्ण वेश, मार्गशीर्ष शुक्ल षष्ठी को श्रृंगार पर्व, पौष शुक्ल पूर्णिमा को पुष्पाभिषेक, माघ पूर्णिमा को गज उद्धारण वेश, फाल्गुन शुक्ल पूर्णिमा को दोलोत्सव, चैत्र शुक्ल तृतीया को चंदन जात्रा, वैशाख शुक्ल को पुनः दोलोत्सव पूर्ण उत्साह और उमंग से संपन्न करना।
0: प्रत्यक्षतः भगवान के श्रीमुख से 12 मासों के संपूर्ण पूजा विधि विधान को सुनकर इंद्रद्युम्न की आंखें छलछला उठी, वे नतमस्तक हो गए।
2: भद्रायाह वाम भागे रथ चरण युत ब्रह्मा रुद्रे दुबंद्यम देवानाम सारमेकम स्वजन परिवृत्तम ब्रह्म मरुम नमामि।
0: इंद्रद्युम्न जगन्नाथ संस्कृति में डूबकर उत्कल महापर्व पूरी रथ यात्रा की परंपरा को स्थायित्व देकर बैकुंठवासी हुए।
1: तब से लेकर आज तक इस विशाल सनातनी राष्ट्र की उत्कल भूमि और देश के अनान्य प्रदेशों में गुंडीचा रथोत्सव अपने धार्मिक आध्यात्मिक ऐतिहासिक सामाजिक और रचनात्मक पक्षों को लेकर निर्विघ्नता से सम्पन्न होता चला आ रहा है।
0: ओडिशा की जगन्नाथ संस्कृति का पूर्ण प्रभाव आदिम जनजातीय राज्य, नैसर्गिक प्राकृतिक स्थल, लोक सांस्कृतिक धरातल, महाकांतार, दंडकारण्य क्षेत्र, बस्तर के ऊपर जिस ढंग से पड़ा है, देश के अन्य हिस्सों ने पुरुषोत्तम श्री भूमि की परंपरा को कम स्वीकारा है। बस्तर राज्य के चालुक्य नरेश पुरुषोत्तम देव एक शक्तिशाली शासक, कुशाग्र बुद्धि के लिए विख्यात थे। धर्म के प्रति उनकी आस्था से चालुक्य की प्रजा सुखी थी।
1: बस्तर भूमंडल में उनकी 12 जमींदारियां, 48 गढ़, 12 मुकासा, 32 चालकी और 84 परगन थे।
0: 25 वर्ष की आयु में पुरुषोत्तम देव नीति फाल्गुन कृष्ण 4 सोमवार संवत 1465 में राजधानी मधोता में सिंहासनारूढ़ हुए।
1: एक दिन बस्तराधिपति महारानी कंचन कुमारी बघेलिन से कहते हैं, भगवान विवेक की कसौटी है, इस विवेक को उन्होंने स्वयं होकर मनुष्य मात्र को दिया है।
0: हाँ राजन, आपका संकेत है बस्तर राज्य संस्कारों से संपूर्णता प्राप्त करे, यहाँ की प्रजा में चरित्र का नवनिर्माण वास करे।
1: राजगुरु, राज ज्योतिषी, राज पुरोहित, मंत्रीगणों ने राज राजेश्वरी दंतेश्वरी के भक्त राजा को बताया कि उनके नामानुरूप श्री पुरुषोत्तम क्षेत्र में आदिम जनजातियों के भगवान वृक्षदेव जगन जगन्नाथ रूप धरकर राज्य कर रहे हैं। आदिवासी जन आर्यगण उनके श्री चरणों में नित्य नैमित्तिक माथा टेक रहे हैं।
0: संस्कृत ब्रह्म पुराण, नारद पुराण, स्कंद पुराण, उत्कल खंड, कपिल संहिता, वामदेव संहिता, नीलांद्री महोदय, मुक्ति चिंतामणि, ओडिया महाभारत, दारू ब्रह्म लीला, पद्म पुराण, देवलो तोला, धार्मिक ग्रंथ।

0: से मार्गदर्शन प्राप्त कर बस्तर नरेश बस्तर में धर्मराज स्थापित करने के लिए चारित्र महासागर लाने के लिए जगन्नाथ दर्शन के प्रति व्याकुल हो उठते हैं।
1: विश्वनियंता श्री हरे जगन्नाथ चालुक्य राजा के चिंता छटपटाहट को देखकर सत्य युग के इंद्रजन्म के समान ब्रह्म मुहूर्त में स्वप्न देते हैं।
2: राजा, ईसवी 11वीं सदी में पुरी स्थित आधुनिक श्री मंदिर के निर्माता चोल गंगदेव द्वितीय अनंग भीम देव के वंशज बड़दांड के भव्य समारोह में तुम्हें आमंत्रित करेंगे। समारोह में भारतवर्ष के समस्त राजा एकत्रित होंगे। तुम वहां उपस्थित होकर मेरे अप्रत्यक्ष दर्शन का लाभ लेना।
0: प्रातः सभा सदों के मध्य पुरुषोत्तम देव स्वप्न कथा कहकर रोमांचित हो उठते हैं।
1: इंद्रदिम्न से अधिक भाव विवल होकर अपने आप को जगन्नाथार्पण कर निमंत्रण की प्रतीक्षा किए बिना बस्तर भक्त राजा विक्रम संवत 1507-8 के आसपास अपने कुछ एक राजदूतों चालुक्य सैनिकों को लेकर पुरुषोत्तम धाम के लिए पेट के बल सरकते दंडवत प्रणाम करते निकल पड़ते हैं जगन्नाथ को पाने के लिए, बलराम सुभद्रा को पाने के लिए।
0: श्री क्षेत्र बड़दांड के भव्य समारोह में पूरी गजपति नृपति एकत्र राजाओं को विदाई के लिए घोषणा करते हैं कि आकाश मंडल से देव वाणी गूंज उठती है।
2: गजपति नरेश, समारोह समापन मत करो। मेरा एक परम प्रिय भक्त बस्तराधिपति पुरुषोत्तम देव पेट के बल सरकते दंडवत करते यहाँ आ रहा है। उसे रथपति की उपाधि से मंडित करो।
0: आकाशवाणी से श्री क्षेत्र भूमंडल मानो सिहर उठा। राजा प्रजा दोनों कंपित रोमांचित होकर आकाश की ओर देखने लगे, विष्णु भक्त के लिए उतावले होने लगे।
1: शरीर में घावों का श्रृंगार, लहू लुहान, दोनों नेत्रों से प्रवाहित प्रेमाश्रु धारा, तेजस्वी मुखमंडल युक्त पुरुषोत्तम देव बड़दांड भूमि को नतमस्तक कर मिट्टी को कपाल में लेप के अग्रसर थे। शंख घंट पखावज मृदंग भेरी झांझ बज उठे।
2: महाम्बोस तीरे कनक रुचिरे नील शिखरे वसन प्रासादांतः सहज बलभद्रेण बलिना सुभद्रा मध्यस्थः सकल सुर सेवावसरतु जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी

0: रथपति उपाधि से श्रीमंडित बस्तर नरेश पुरुषोत्तम देव संकल्पित हुए। यहाँ जिस विधि विधान से रथोत्सव संपादित होता है, बस्तर राज्य उसका अनुकरण करेगा।
1: मंत्र शक्ति से अग्नि प्रज्वलित करने वाले यज्ञिक आरण्यक ब्राह्मण जो संबलपुर से पुरी आए थे, पाढ़ी पाणिग्रही शुंगा जोशी विप्रों के साथ
0: राजा के साथ गए राजदूत चालुक्य सेना भद्रों अर्थात भद्राओं को लेकर जब बस्तर नृपति ने अपने राज्य को स्पर्श किया, तब
1: संपूर्ण बस्तर अपने राजा की कीर्ति से जय जयकार कर उठा।
2: श्री श्री जगन्नाथ स्वामी की
3: जय।
2: श्री श्री जगन्नाथ स्वामी की
3: जय।
2: गजपति पुरुषोत्तम देव महाराज की
3: जय।
2: गजपति पुरुषोत्तम देव महाराज की
3: जय।
0: 16 चक्कों की रथपति उपाधि से विभूषित पुरुषोत्तम देव ने बस्तर में जगन्नाथ रथ यात्रा के लिए 4 चक्के जगन्नाथ जी के नाम से और 12 चक्के बस्तर आराध्य देवी दंतेश्वरी जी के नाम से संकल्प किए।
1: विभिन्न ऐतिहासिक तथ्यों, इतिहासकारों, विद्वानों की राय से बस्तर का महापर्व दशहरा, लघु महापर्व गुंडीचा रथोत्सव अर्थात गुंचा का आरंभ काल

0: में विक्रम संवत 1508 से है। गोंचा और दशहरा रथोत्सव पुरुषोत्तम देव की राजधानी ग्राम मधोता से हुई।
1: इसके पश्चात इनकी राजधानी बस्तर हुई। तब से चालुक्य वंशी राजाओं ने जहाँ जहाँ अपनी राजधानी बनाई, यथा प्रतापपुर, राजनगर, कोटपाड़, केसलूर और जगदलपुर, वहाँ वहाँ गोंचा पर्व पुरुषोत्तम देव की संकल्प परंपरा को साथ लेकर चला। पुरुषोत्तम देव के उपरांत जगन्नाथ संस्कृति को द्विगुणित कर चलने लगे।
0: जय सिंह देव, नरसिंह देव, प्रताप राज देव, जगदीश राज देव, वीर नारायण देव, वीर सिंह देव, दिक्पाल देव, राजपाल देव, चंदेल शासक, दलपत देव, अजमेर सिंह, दरियाव देव, महिपाल देव, भूपाल देव, भैरम देव, रुद्र प्रताप देव, महारानी प्रफुल्ल कुमारी देवी और महाराजा प्रवीर चंद भंज देव, इन बस्तर भूपतियों ने जनश्रुतियों में अपना अमूल्य नाम अंकित किया है।
1: इन्हीं नरेशों के शासनकाल में चालुक्य प्रजा के द्वारा गोंचा तिहार के उपलक्ष्य में बलभद्र जी के ताल ध्वज रथ के लिए, जगन्नाथ जी के नंदी घोष रथ के लिए, सुभद्रा जी के देवधर रथ के लिए सलामी हेतु तुपकी का आविष्कार किया गया था। मालकांगनी अर्थात पेंगू बीज, जो बंदूक की गोली का पर्याय है, पिचकारी रूपी बांस की बनी तुपकी से गोंचा रथोत्सव में जब जग नियंताओं को लगती है, गोंचा में एकत्र भीड़, आबाल वृद्ध, नर नारी, तुपकी पेंगू की मार से, आवाज से हर्षातिरेक हो जाते हैं।
2: फट फटा फट फटा पेंगू चुमारने आया गो। मुरहा मुहा भंजा लेका कन्हिया दुखली आया गो।
3: कुछ सफाई गोट के सोमारी मैं माने से, कुछ सफाई गोट के सोमारी मैं माने से, आनी पानी राइज रानी संसार दें से, आनी पानी राइज रानी संसार दें से। ये दाएं उछबने भबली तुझ होने गोनचा, ये दाएं उछबने भावली तुझ होने गोंचा, तुपकी झाए झाए ने बेंगू बान ठाए ठाए ने, तुपकी झाए झाए ने बेंगू बान ठाए ठाए ने, गोलार जो भाए भाए ने।

0: दे संसार हासे दे गुंचा गागे दे संसार हासे दे निमारले तुपकीने निमारले तुपकीने निकोलार तुपकीने
1: मैं पाय पड़े से हाथ जोड़े से सोमारू
0: आजी गुंचा तिहार राजबस्तर सोमारी।
2: ईसवी सन 1771 में जब महाराजा दलपत देव ने जगदलपुर को अपनी राजधानी बनाई तब मिट्टी का महल चारों ओर से सुरक्षित था।
3: तीन बड़े बड़े दरवाजे पूर्व दक्षिण उत्तर दिशा की ओर थे। जगदलपुर नगर के चारों ओर ईंट की दीवारें थीं।
2: अन्य राजधानियों की अपेक्षा बस्तर रथ पर्वों को इस राजधानी से जिस प्रकार नवरूप मिला रथ परिक्रमा को व्यवस्थित सहजता सरलता प्राप्त हुई।
3: आज जगन्नाथ मंदिर जहाँ स्थित है वहाँ पहले चालुक्य वंशी कश्यप गोत्री पंडित भागीरथी महापात्र राज पुरोहित का परिवार निवासरत था।
2: ईसवी सन 1908 में अंग्रेज प्रशासक और राजा रुद्र प्रताप देव ने सर्किट हाउस के निकट विशाल भूखंड प्रदत्त किया और राज पुरोहित निवास स्थल में 1908 के उपरांत भव्य जगन्नाथ मंदिर का निर्माण किया गया। एक से दो शनै शनै छह गोंचा रथ एक लघु गोंचा रथ आषाढ़ शुक्ल द्वितीया को श्री गुंडीचा अर्थात श्री गोंचा आषाढ़ शुक्ल दशमी को बाहुड़ा गुंडीचा अर्थात बहुर्ती गोंचा के रूप में नगर स्थित गोल बाजार की परिक्रमा कर सिंह ड्योढ़ी के सामने तोप बंदूक सलामी सम्मान पाने लगे।
3: महाराजा प्रवीर चंद भंजदेव तक

0: चौसौ आतिशबाजियों, लोक नृत्यों, पाला, नाच, विभिन्न कार्यक्रमों और तुक्की की गड़गड़ाहटों से संपूर्ण बस्तर को भक्तिमय बना देता था।
1: बस्तर प्रजा और अन्यान्य आगंतुकों अतिथियों से गुंचा तिहार झनकृत हो उठता था।
0: चंद्र ध्रुव नक्षत्र की उपस्थिति में बस्तर रथ परंपरा कायम रहेगी। पुरुषोत्तम देव का हस्तलिखित ताम्रपत्र कहीं सुरक्षित है।
1: जगन्नाथ मंदिर के 6 कक्षों में जगन्नाथ मंदिर, मलकारनाथ मंदिर, अमायतनाथ मंदिर, भरत देव मंदिर, मरठिया मंदिर, रामचंद्र और कालिकानाथ मंदिरों में जगन्नाथ, सुभद्रा, बलभद्र, सुदर्शन, लक्ष्मी जी और अन्यान्य देवी देवताओं को आज भी 360 घरिया आरण्यक ब्राह्मणों को प्रशासन से नैवेद्य, भोग पूजन, सेवा प्राप्त होती है। रियासत काल में 18 गांव इन मंदिरों की व्यवस्था के लिए संचालित थे।
0: 12 महीने इस मंदिर के धार्मिक कृत्यों से बस्तर जनों के साथ दरबार खास के लोग उत्कल वैदिक ब्राह्मण, आरण्यक ब्राह्मण, संवार, खवास, सहीदार, बैदार, तालुकेदार, कपड़दार, नेंगी, जोगी समाज के नाइक पाइक, मांझी मुखिये, पटेल, माफीदार, मालगुजार मिलकर रचनात्मक भूमिका निभाते थे।
1: जगन्नाथ मंदिर के पर्वों में रामरथ शोभा यात्रा, चैतराई, मावली परघाव, कुंवारी पूजन, अक्षय तृतीया, देव स्नान पूर्णिमा, गोंचा, हरियाली अमावस्या, नया खानी, श्री कृष्ण जन्माष्टमी,
0: जगार, धनकुल, पोला, दीपावली, भैया दूज, देवोत्थान, एकादशी, भीतर मंडई, अघन यात्रा, चरु यात्रा, पौष पूर्णिमा, माघ पूर्णिमा, बसंत पंचमी का भव्य आयोजन, फाल्गुन शुक्ल दशमी से पूर्णिमा पर्यंत होली का उत्सव प्रमुख थे।
1: अब इन पर्वों की औपचारिकता विशेष के कारण गुंचा तिहार के उत्साह में कमी आई है।
0: तथापि आषाढ़ीय हीरा पंचमी के दिन सिरासार में लक्ष्मी नारायण संवाद से श्रद्धालु जन उमंग से वशीभूत होकर कमियों को भूल जाते हैं।
1: वर्षों तक गोंचा के 6 रथ बाहर मठ स्थित लक्ष्मी नारायण बालाजी मंदिर के विशाल बाड़े में गोंचा समापन के बाद खड़े कर दिए जाते थे।
0: गोंचा तिहार द्वितीया से दशमी तक 9 दिन ये रथ गुंडीचा मंदिर सिरासार जनकपुर के सामने खड़े रहते थे।
1: जनकपुर से जगन्नाथ, सुभद्रा, बलभद्र के प्रिय नैवेद्य गजामूंग भक्तवृंद प्राप्त कर अखंड मित्रता के लिए बंध जाते थे।
0: गजामूंग के प्रति आस्था आज भी विद्यमान है। जैसे बाली फूल, कोदोमाली, गजामूंग, डांडामाली, गंगा, केवरा, झाड़माली आदि।
1: बड़ेगुड़ी जगन्नाथ, अमायतनाथ मंदिर में बहुर्ती गोंचा के दिन आरण्यक, विप्र 2 वर्गों में विभक्त होकर लक्ष्मी नारायण संवाद प्रस्तुत करते हैं।
0: दासियों से लक्ष्मी जी कहती हैं,
2: लक्ष्मी जी बोलंती आलो दासी जाओ, ब्रजकिल्लोणी कबाट पकाओ, आसी देड़ सुर पसंतु घर, थाउ कलामुख बेड़ा बाहर।
0: और जगन्नाथ जी की ओर से,
2: तेरी जाति तुम्हें अति अबुझ, बुझाई कहिले अधिक जुझ, सुभद्रा तुमर प्रिय ननंद, प्रिय कथा कही कर आनंद, संतोष हेब प्रिय संतोष हेब, प्रिय सखी संगे प्रशंसा नेब।

0: श्रद्धालुओं की अपार भीड़ लक्ष्मी नारायण वाक युद्ध से गदगद होकर आनंदित होती है।
1: गोंचा रथ के आगे आगे जिन लोगों ने राजा महाराजाओं को पालकी हाथी घोड़ों में सवार देखा है, डोली चावर लाठ बैरक सिरहा मोहरी नगारा भत्रा धनुषधारियों को देखा है, उनके वंशज गोंचा स्तुति गान में डूब जाते हैं।
2: गोंचा वासी लाने देखो सरथ चाक चाक रे लात पकी।

ढूटी जे की मारी हासी देला।

अभी आप सुन रहे थे रूपक गोंचा परब। लेखक थे जोगेंद्र महापात्र जोगी। वाचक स्वर था नारायण सिंह बघेल और करमजीत कौर का। अन्य स्वर थे के परेश, जगदीश अधिकारी, लक्ष्मी दत्ता और एम ए रहीम के। संगीत गायन था दिलीप पांडे, रिंकी मोटवानी, ललिता कुमार, मनीषा हाबिल, संजय पांडे और रवि पटनायक का। वादन पक्ष के कलाकार थे निशांत मिश्रा, जितेंद्र पानीग्राही और अरविंद भारती। रूपक के प्रस्तुति सहायक थे बलबीर सिंह कच्छ और प्रस्तुतकर्ता थे एम ए रहीम। ये रूपक आपकी सेवा में आकाशवाणी के जगदलपुर केंद्र से प्रसारित किया गया।

0: सुनो ना।
1: हाँ?
0: सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों ना बढ़ा लूँ।
1: तो रोका किसने है? हाँ?
0: रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं।
1: मुझसे।
0: तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर।
1: आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है।
0: पर उससे मेरा क्या फायदा?
1: देखो फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुँच जाओ।
0: पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं?
1: बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो, 8700001424।
0: ओ 8700001424। लो अभी फोन लगाता हूँ 8700001424 पर।
2: आकाशवाणी का ये जगदलपुर केंद्र है, पेश है कार्यक्रम एक ही फिल्म से। आज की फिल्म है गुमनाम।

यह था गुमनाम फिल्म का शीर्षक गीत। आवाज लता मंगेशकर की। श्रोताओं, फिल्म गुमनाम सन 1965 में प्रदर्शित हिंदी फिल्म है। यह अगाथा क्रिस्टी के 1939 के रहस्यमय उपन्यास एंड देन देयर वर नन का रूपांतरण है। फिल्म का निर्माण किया है NNCP ने। निर्देशक हैं राजा नवाथे। फिल्म का छायांकन किया है KH कपाड़िया ने। संपादन किया है DN पाई ने। आइए सुनते हैं फिल्म का अगला गीत। आवाजें हैं मोहम्मद रफी और शारदा की।

श्रोताओं, फिल्म गुमनाम के गीत लिखे हैं हसरत जयपुरी और शैलेंद्र ने। गीतों को संगीतबद्ध किया है शंकर जयकिशन ने। आइए अब सुनते हैं फिल्म का अगला गीत। आवाज है लता मंगेशकर की।

श्रोताओं, एक ही फिल्म से कार्यक्रम में आज हम आपको सुनवा रहे हैं फिल्म गुमनाम के गाने, और गुमनाम फिल्म से जुड़ी हुई कुछ बातें हम साझा कर रहे हैं। फिल्म गुमनाम में मुख्य भूमिकाएं निभाई हैं मनोज कुमार, नंदा, महमूद, प्राण, हेलेन, मदनपुरी, तरुण बोस, धूमल और मनमोहन ने। श्रोताओं, फिल्म गुमनाम को सर्वश्रेष्ठ कला निर्देशन के लिए एस.एस. सेमल को फिल्मफेयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। फिल्म धूमल का कथानक इस प्रकार है। एक अंधेरी रात में धनी सेठ सोहनलाल

में धुत होटल से बाहर निकलते हैं, तभी एक तेज रफ्तार कार उन्हें टक्कर मार देती है और मौके पर ही उनकी मौत हो जाती है। सामने वाले कमरे में सेठ सोहनलाल के हत्यारे खन्ना, जिसकी भूमिका हीरालाल ने निभाई थी, जो थोड़ी देर बाद आने वाली कार के अज्ञात चालक को नोटों का बंडल देते हैं। इसके बाद खन्ना की भी हत्या हो जाती है। बाद में खन्ना सेठ सोहनलाल की भतीजी आशा को फोन करते हैं और सात लोगों का चयन एक होटल में होता है अज्ञात द्वीप में जाने के लिए। सुनसान द्वीप पर आपातकालीन लैंडिंग करनी पड़ती है विमान को, जिसमें फ्लाइट अटेंडेंट आनंद यानी मनोज कुमार होते हैं और उस द्वीप में बटलर महमूद एक हवेली में होता है और रहस्यमयी घटनाएं घटती हैं। चलते चलते श्रोताओं, आइए सुनते हैं फिल्म का एक और गाना, जिसे स्वर दिया है मोहम्मद रफी और महमूद ने।

0: ख्यालों में जय हंगामा, कहां भाग रही थू मैं? काले से डर गए क्या?
1: हमें काले हैं तो

0: ताली ताक ढूंढ ताक ताली ताक जमी ताक झाला आंगो ताक ढूंढ ताक ताली के नंतर ताक नाक ताक ढूंढ ताक नाक नाक ढूंढ ताक नाक नाक ढूंढ ताक नाक नाक जम तारी ता जग तारी ता जन जाने को गुदारी ता गुदारी के ताक जम तारी ता जग तारी ता जन जाने को गुदारी ता गुदारी के जम तारी जग तारी ताक नाक ताक ताज जन ताज जन ताज जन ताज जम तारी जग तारी जाने जाने को ताज जन ताज जम ताज जन ताक ताक
1: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम एक ही फिल्म से। आज की फिल्म थी गुमनाम। मीडियम व्यू और एफएम बैंड पर ये आकाशवाणी का जगदलपुर केंद्र है। सुबह के 9:55 होने को हैं। प्रादेशिक समाचार अब हम आकाशवाणी के रायपुर केंद्र से रिले कर रहे हैं।
2: मैं राहुल सिन्हा। और अब पेश आज के मुख्य समाचार। प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में भू संपत्ति का डिजिटल रिकॉर्ड तैयार करने चलाया जा रहा है राजस्व ग्राम सर्वेक्षण अभियान। खरीफ मौसम के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत 12 जुलाई से पंजीयन की प्रक्रिया शुरू हो गई है और भारतीय सेना ने छत्तीसगढ़ के अभ्यर्थियों के लिए आयोजित कॉमन एंट्रेंस एग्जाम के परिणाम घोषित कर दिए हैं। अब समाचार विस्तार से। प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में भू संपत्ति का डिजिटल सटीक रिकॉर्ड तैयार करने के साथ ही भूमि स्वामियों को उनकी भूमि और मकान का मालिकाना हक प्रदान करने के लिए राजस्व ग्राम सर्वेक्षण अभियान चलाया जा रहा है। इसके तहत राजस्व विभाग ने प्रदेश में कुल 20,551 राजस्व ग्रामों में से 19,805 ग्रामों का विस्तृत सर्वेक्षण कार्य पूरा कर लिया है। डिजिटल रिकॉर्ड तैयार होने से भूमि संबंधी आपसी विवादों और मुकदमों में कमी आएगी। वहीं किसानों को बैंकों से ऋण प्राप्त करने, फसल बीमा और शासकीय योजनाओं का लाभ प्राप्त करने में भी सुगमता होगी। प्रदेश में खरीफ मौसम के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत 12 जुलाई से पंजीयन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। कृषि विभाग ने प्रदेश के किसानों से 31 जुलाई तक धान, मक्का, सोयाबीन सहित 11 अधिसूचित फसलों का बीमा कराने की अपील की है। मौसम विभाग द्वारा अलनीनो के प्रभाव से अनियमित या कम वर्षा की आशंका जताए जाने के बीच कृषि विभाग ने कहा है कि फसल बीमा किसानों को प्राकृतिक आपदाओं से होने वाले नुकसान के विरुद्ध आर्थिक सुरक्षा प्रदान करेगा। कृषि विभाग ने किसानों से फसल क्षति होने पर 72 घंटे के भीतर इसकी सूचना संबंधित विभाग, बैंक, बीमा कंपनी या टोल फ्री नंबर 1-4-4-4-7 पर देने की अपील की है। भारतीय सेना ने आर्मी रिक्रूटिंग ऑफिस के अंतर्गत छत्तीसगढ़ के अभ्यर्थियों के लिए आयोजित कॉमन एंट्रेंस एग्जामिनेशन सीईई के परिणाम घोषित कर दिए हैं। यह परीक्षा 1 से 12 जून तक राज्य के 10 परीक्षा केंद्रों पर आयोजित की गई थी। अभ्यर्थी अपना परिणाम भारतीय सेना की आधिकारिक भर्ती वेबसाइट www.joinindianarmy.nic.in और आर्मी रिक्रूटिंग ऑफिस रायपुर के सूचना पटल पर देख सकते हैं। कॉमन एंट्रेंस एग्जामिनेशन सफल अभ्यर्थियों को अब शारीरिक दक्षता परीक्षा, दस्तावेज सत्यापन और चिकित्सीय परीक्षण सहित भर्ती प्रक्रिया के अगले चरण में शामिल होना होगा। हवलदार और जूनियर कमीशन्ड अधिकारी पदों के लिए भर्ती रैली 25 जुलाई से 6 अगस्त तक मध्यप्रदेश के सीहोर में आयोजित की जाएगी। बिलासपुर जिले के सरकंडा स्थित बाल संप्रेक्षण गृह में 4 बाल अपचारी ड्यूटी पर तैनात सुरक्षा गार्ड की हत्या कर फरार हो गए। ये चारों बाल अपचारी हत्या, दुष्कर्म, चोरी जैसे मामलों में बाल संप्रेक्षण गृह में निरुद्ध थे। फरार होने के दौरान ये अपचारी बाल संप्रेक्षण गृह में लगा सीसीटीवी का डीवीआर भी अपने साथ ले गए। बिलासपुर जिले में बिलासपुर उर्गा के बीच बन रही सड़क पर देर रात हुए हादसे में 4 लोग घायल हो गए। बताया जा रहा है कि ढेंका के पास निर्माणाधीन पुल से एक कार करीब 30 फीट नीचे जा गिरी। कार सवार सभी युवक कोरबा से बिलासपुर की ओर आ रहे थे। इस दौरान अरपा नदी पर बन रहे अधूरे पुल से कार हवा में उछलकर नीचे जा गिरी। घटना के बाद स्थानीय लोगों की मदद से सभी घायलों को कार

से बाहर निकालकर अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनको उपचार जारी है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने नीट यूजी 2026 की पुनर्परीक्षा को की ओएमआर शीट और रिकॉर्ड किए गए उत्तर जारी कर दिए हैं। एजेंसी ने बताया कि उम्मीदवार एनटीए की वेबसाइट neet.nta.nic.in पर अपने आवेदन नंबर लॉग कर इन ओएमआर शीट और उत्तर देख सकते हैं। राजधानी रायपुर में पुलिस कमिश्नरी में प्रशासनिक फेरबदल किया गया है। गृह विभाग ने 3 रिक्त डीसीपी पदों पर एएसपी तारकेश्वर पटेल, रचना झा और दीपमाला कश्यप की पदस्थापना की है। तारकेश्वर पटेल को सेंट्रल जोन, दीपमाला कश्यप को नॉर्थ जोन और रचना झा को ट्रैफिक और प्रोटोकॉल का डीसीपी बनाया गया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में भू संपत्ति का डिजिटल रिकॉर्ड तैयार करने चलाया जा रहा है राजस्व ग्राम सर्वेक्षण अभियान। खरीफ मौसम के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत 12 जुलाई से पंजीयन की प्रक्रिया शुरू हो गई है और भारतीय सेना ने छत्तीसगढ़ के अभ्यर्थियों के लिए आयोजित कॉमन एंट्रेंस एग्जाम के परिणाम घोषित कर दिए हैं भारतीय सेना ने छत्तीसगढ़ के अभ्यर्थियों के लिए आयोजित कॉमन एंट्रेंस एग्जाम के परिणाम घोषित कर दिए हैं।

0: छत्तीसगढ़ की लोक कल्याणकारी सरकार जनहित में लोक सेवा के लिए हमेशा प्रयत्नशील रहती है। यही कारण है कि यहाँ जनता के लिए अनेक कल्याणकारी योजनाएं संचालित की जा रही हैं। छत्तीसगढ़ की सरकार के लिए सर्वोपरि है अपने नागरिकों की आवश्यकताओं और अपेक्षाओं को पूरा करना। इसीलिए शासन द्वारा नित नए संसाधनों को विकसित किया जाता है और उन्हें प्रभावी ढंग से जन जन तक पहुंचाया जाता है। हितग्राहियों तक शासकीय सेवाओं और कल्याणकारी योजनाओं की पहुंच आसान बनाने के लिए छत्तीसगढ़ शासन ने अपना आधिकारिक पोर्टल सेवा सेतु आरंभ किया है। सेवा सेतु पोर्टल के माध्यम से प्रदेश के नागरिक जन केंद्रित योजनाओं और सेवाओं के लाभ आसानी से निर्धारित समय सीमा में उठा सकते हैं। इससे कागजी कार्यवाही और दफ्तरों के चक्कर लगाने के झंझटों से मुक्ति मिली है। छत्तीसगढ़ सेवा सेतु पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन सेवाएं अब सबके लिए सुलभ हो गई हैं।
1: मेरा नाम सुनील कुमार दुर्गम है। मैं ई डिस्ट्रिक्ट मैनेजर हूँ, जिला बीजापुर, छत्तीसगढ़ स्टेट। सेवा सेतु के बारे में मैं ये बताना चाहूंगा। सेवा सेतु एक छत्तीसगढ़ के नागरिकों तक सरकारी डिजिटल सेवाओं को मतलब सरल समयबद्ध तरीके से पहुंचाने की एक महत्वपूर्ण पहल किया गया है। इसके माध्यम से नागरिकों को ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं और अपने आवेदन की स्थिति और निगरानी कर सकते हैं तथा जो निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार सेवाओं का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। इससे सेवा वितरण में पारदर्शी, जवाबदेही और दक्षता सुनिश्चित होती है। हम ये बोल सकते हैं कि सेवा सेतु पोर्टल को पारदर्शी क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसमें सभी आवेदन, जितने भी आवेदन हमारे सेवा सेतु पोर्टल में आते हैं, सभी आवेदन ऑनलाइन दर्ज किया जाता है, जिसकी रिकॉर्ड भी सुरक्षित रहती है और आवेदन की वर्तमान स्थिति, एप्लीकेशन स्टेटस और नागरिकों द्वारा ऑनलाइन मतलब देखी जा सकती है, उनका कौन से लेवल में पेंडिंग है और सेवाओं के लिए निर्धारित समय सीमा भी तय किया होता है और प्रत्येक आवेदन संबंधित अधिकारी को ऑनलाइन आवंटित होता है, जिससे जवाबदेही सुनिश्चित होती है। आवेदन की निरंतर मतलब मॉनिटरिंग जिला स्तर से भी की जाती है ताकि समयबद्ध तरीके से कोई भी आवेदन निराकरण हो सके और आवेदन के निस्तारण का डिजिटल रिकॉर्ड उपलब्ध रहता है, जिससे अनावश्यक हस्ताक्षेप और त्रुटियां की संभावना भी कम होती है और नागरिकों को सेवा प्राप्त करने की प्रक्रिया स्पष्ट और समान रूप से उपलब्ध होती है। इसमें लगभग सभी सेवाओं को जो पहले से चले आ रहे हैं और अभी जैसे आई जाति निवास हो गया, अभी

रिसेंटली जो सेवाएं चालू हैं जैसे मैरिज, विवाह प्रमाण पत्र ग्रामीण स्तर पर जो नहीं थे उन लोगों को बहुत परेशानी करना पड़ता था ऑफलाइन, क्योंकि माने नहीं कर रहे थे, जैसे आधार कार्ड में नाम परिवर्तन किए जैसे शादी के बाद महिलाओं का। तो जब ये सेवाएं ग्रामीण स्तर पर भी आ गए हैं सचिवों के माध्यम से जारी होता है, तो ऑनलाइन उनको आवेदक जो भी आवेदन करता है उनको ऑनलाइन ये सर्विस प्राप्त हो जाता है, मतलब सर्टिफिकेट उनको मिल जाता है। और इसके अलावा अभी जो रिसेंटली चालू है राशन कार्ड में जैसे नाम जोड़ना और नाम हटाना, तो ये भी ग्रामीण स्तर पर ये भी सेवाएं अभी चालू की गई है।

0: किया गया सेवा सेतु पोर्टल एक महत्वपूर्ण डिजिटल सुशासन पहल है, जिसके माध्यम से विभिन्न विभागों की कई सरकारी सेवाएं अब पूरी तरह से ऑनलाइन उपलब्ध हैं। अक्सर आम जनता को जरूरी प्रमाण पत्रों को बनवाने के लिए जिस परेशानी से जूझना पड़ता था, वे सभी दस्तावेज अब बड़ी आसानी से कम खर्च और सीमित समय में बन रहे हैं। अब आय, जाति, निवास, जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र, राशन कार्ड, विवाह प्रमाण पत्र और खसरा भू नकल जैसी सभी प्रमुख सेवाएं एक ही जगह उपलब्ध हैं।
1: मेरा नाम अनुपेंद्र प्रधान है, मैं डिस्ट्रिक्ट मैनेजर जिला रायगढ़ से हूँ। मैं सेवा से तो हमारे ऑनलाइन सेवाएं हैं, जिसमें हमारे 400 से अधिक सर्विसेज हम लोग डिलीवर करते हैं। इसमें आय, जाति, निवास से लेकर राशन कार्ड, विवाह प्रमाण पत्र सेवाएं इसमें है, 400 से अधिक सेवाएं हैं।

सेवाएं हैं जिसमें हमारे 400 से अधिक सर्विसेज हम लोग डिलीवर करते हैं। इसमें आय जाति निवास से लेकर राशन कार्ड विवाह प्रमाण पत्र सेवाएं इसमें है, 400 से अधिक सेवाएं हैं। निवास से लेकर राशन कार्ड विवाह प्रमाण पत्र सेवाएं इसमें है, 400 से अधिक सेवाएं हैं है। और वो लोक सेवा गारंटी के अधिनियम के अधीन इसका निराकरण होता है। निराकरण होने के पश्चात हमारे जो आवेदक हैं उनके मोबाइल नंबर पर यह मैसेज चला जाता है आपका आवेदन स्वीकार्य है और उनका सर्टिफिकेट या लाइसेंस उनको जारी हो जाता है, जिससे उनको कहीं किसी पर्टिकुलर ऑफिस में जाने की जरूरत नहीं पड़ती, किसी सिंगल विंडो पर जाने नहीं पड़ती। वो खुद अपने घर में बैठकर या अपने वॉकिंग डिस्टेंस अपने पास में किसी भी चॉइस सेंटर में अपना आवेदन वो कर सकते हैं। और करने के साथ ही उनका जो ट्रेकिंग नंबर होता है उससे वो ट्रेक कर सकते हैं कि उनका आवेदन कहाँ पे किस ऑफिस में वो अभी लंबित है, तथा वो जो आवेदन है वो डिस्ट्रिक्ट ऑफिस में भी इसका समीक्षा होता है कि वो आवेदन लोक सेवा गारंटी का उल्लंघन तो नहीं कर रहे हैं। ये सब कुछ यहाँ से भी मॉनिटरिंग हमारे टीएल जो वीकली टीएल रिव्यू मीटिंग होता है इसमें रिव्यू होता है, जिससे हमारे आवेदक हैं उनको सही समय पर उनको सर्टिफिकेट प्राप्त होता है। इसमें आपका नगरीय निकाय के हैं, आपके आपके ग्राम पंचायत के विवाह प्रमाण पत्र हैं, राशन कार्ड है, और आपके तहसील से जो राजस्व से हैं आपके आय जाति निवास है, और ई कोर्ट के भी सर्विसेज हैं, समानता नामांतरण के भी सर्विसेज हैं। इसमें हमारे 400 से अधिक सेवाएं इसमें चल रही है। इसमें फॉरेस्ट के भी सेवाएं हैं, हमारे कल्चरल डिपार्टमेंट की भी सेवाएं हैं, SSG खादी ग्राम उद्योग की भी सेवाएं हैं। इसमें ऑनलाइन दो तरीके से होते हैं, एक आवेदक जो है वो स्वयं कर सकता है, या तो वो अपने व्हाट्सएप के माध्यम से अपने चैटबोर्ड के माध्यम से भी आवेदन कर सकता है। अब चैटबोर्ड का भी हमारे सेवा सेतु में फीचर है, चैटबोर्ड से भी आवेदन कर सकता है व्हाट्सएप के माध्यम से। दूसरा वो पोर्टल में वो स्वयं अपना लॉगिन आईडी बना सकता है, सिटीजन लॉगिन के माध्यम से खुद लॉगिन करके उसमें आवेदन कर सकता है। तीसरा अगर आवेदक को किसी की जरूरत पड़ती है तो हो सकता है कि वो मैं अपना कंप्यूटर के जानकार नहीं हूँ या मोबाइल से जानकार नहीं हूँ ऐसा सोचता है, तो वो हमारे निकटतम ग्राम पंचायत के पास में हमारे जो च्वाइस सेंटर होते हैं जिनको हमने ट्रेनिंग दिया हुआ है, प्रशिक्षण दिया हुआ है, उनका हेल्प लेकर उनके माध्यम से वो आवेदन कर सकते हैं। और आवेदन करने का शुल्क मात्र 30 रुपया होता है, तो वो उनके माध्यम से वो आवेदन करते हैं।

छत्तीसगढ़ शासन ने एक बड़ी पहल करते हुए प्रशासनिक सेवाओं को और अधिक सरल, पारदर्शी और जन सुलभ बनाने की दिशा में सेवा सेतु पोर्टल को आम जनता के लिए मुहैया कराया है।

0: डिजिटल सुशासन की अभिनव पहल के तहत प्रदेश के नागरिकों को 441 से अधिक शासकीय सेवाएं एक ही ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध कराई जा रही हैं। सरकार का उद्देश्य है कि ग्राम पंचायत स्तर तक इन डिजिटल सेवाओं को पहुंचाया जाए ताकि नागरिकों को त्वरित और सुविधाजनक सेवाएं मिल सकें।
1: मैं आशीष स्वर्णकर, सहायक प्रबंधक, जिला कलेक्ट्रेट, जिला ई गवर्नेंस सोसाइटी राजनांदगांव से बोल रहा हूँ। सेवा सेतु परियोजना शासन की एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है और एक महत्वपूर्ण सेवाएं है, जिसमें वर्तमान में पूर्व में 80 से 82 प्रकार की सेवाएं ही आम आदमियों को प्रदान की जा रही थी। इसको अभी फिर से रिवाइज करके इसमें लगभग 440 प्रकार की बहुत सारी सेवाओं को ऑनलाइन किया गया है। मुख्य रूप से इसमें जो ग्रामीण स्तर पर होने वाले विवाह प्रमाण पत्र, नजूल पट्टा, नामांकन, हौती नामांतरण, इस टाइप की जो और पंचायत स्तर की, जैसे नल कनेक्शन के लिए हो गया, साफ सफाई के लिए हो गया, और सबसे महत्वपूर्ण इसमें राशन कार्ड परियोजना। राशन कार्ड के अंतर्गत जो आम आदमी जो होता था, उन्हें पहले पंचायत स्तर पर मैनुअली आवेदन करना पड़ता था, फिर विभिन्न प्रकार के ऑफिसों के चक्कर काटने पड़ते थे। उन सब चीजों से हितग्राहियों को फायदा मिला है। राशन कार्ड एपीएल बीपीएल नाम परिवर्तन करना, जोड़ना, संशोधित करना, नए राशन कार्ड के लिए अप्लाई करना, ये सारी सेवाएं आज सेवा सेतु पोर्टल के माध्यम से आम लोगों को प्रदान की जा रही है। और इस चीज का व्यापक प्रचार प्रसार भी शासन के द्वारा किया जा रहा है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी ने इस परियोजना में विशेष ध्यान देते हुए अत्यधिक अनेक प्रकार के विभागों की सेवाओं को ऑनलाइन किया गया है। इसका पूरा पूरा लाभ आम आदमी को मिलना चालू हो चुका है। लोग नित प्रतिदिन इसका उपयोग कर रहे हैं और आप देख सकते हैं कि सेवा सेतु परियोजना सिर्फ और सिर्फ सरकारी ऑफिस तक सीमित न रहकर ग्राम गांव गांव में जो सीएससी या कॉमन सर्विस सेंटर है उसके माध्यम से प्रदाय की जा रही है और इसका वृहद पैमाने पर लोग उपयोग कर रहे हैं। यह एक ऐसी सुविधा है, यदि कोई कंप्यूटर का जानकार है तो स्वयं नागरिक अपने स्वयं के नागरिक पोर्टल से भी इन सेवाओं का लाभ उठा रहे हैं। और यदि हितग्राही पढ़ा लिखा नहीं है तो नजदीकी सामान्य सेवा या लोक सेवा केंद्र के माध्यम से इसमें आवेदन किया जा रहा है और लगातार आवेदन हमको प्राप्त हो रहे हैं। राजनांदगांव में भी अनेक हितग्राहियों के द्वारा इसका लाभ लिया गया। विशेष रूप से अभी जो मई और जून में जो विवाह का सत्र चलता है, सीजन चलता है, उसमें कई आवेदकों के द्वारा अपना विवाह किया गया। संबंधित पंचायत में ऑनलाइन करने के बाद उनका ऑनलाइन विवाह प्रमाण पत्र संबंधित सचिव के द्वारा जारी किया जा चुका है। इसी प्रकार राशन कार्ड के लिए भी अब आवेदन आने प्रारंभ हो चुके हैं। तो कुल मिलाकर यह कहा जा सकता है कि सरकार जनता के बहुत ही नजदीक पहुंच रही है और उनके घर तक पहुंच रही है। और जिस प्रकार की इनकी सोच रहती कि समाज के अंतिम व्यक्ति तक इस सेवा का लाभ पहुंचाया जाए, तो यह सेवा का लाभ पहुंचाया जा रहा है और इसका व्यापक स्तर पर उपयोग किया जा रहा है आम लोगों के द्वारा। छत्तीसगढ़ में इस सेवा के प्रारंभ किए जाने के लिए छत्तीसगढ़ सरकार को भी धन्यवाद और हम एक कर्मचारी की हैसियत से यहाँ पर उपस्थित होने वाले प्रत्येक हितग्राही और सभी को इस चीज का प्रॉपर नॉलेज देते हैं। और आज ई डिस्ट्रिक्ट परियोजना से या लोक सेवा केंद्र से इसका नाम हटाकर सेवा सेतु परियोजना कर भी दिया गया है और यह एक बहुत अच्छी सुविधा है जिसका लोग फायदा उठा रहे हैं।

0: छत्तीसगढ़ सेवा सेतु पोर्टल के माध्यम से जरूरी प्रमाण पत्र और पंजीयन जैसी सुविधाएं तो आसान हुई ही हैं, साथ ही सामाजिक सुरक्षा योजनाओं से जुड़े आवेदनों की प्रक्रिया और श्रम एवं राजस्व विभाग की सेवाएं भी जनसुलभ हो गई हैं। सेवा सेतु के आ जाने से अब नागरिकों को अलग अलग सेवाओं के लिए विभिन्न कार्यालयों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे, क्योंकि सारी सरकारी सेवाएं अब ऑनलाइन जो हो गई हैं।
1: मेरा नाम शांतनु शुक्ला है, मैं जिला कोंडा गांव में ई जिला प्रबंधक हूं और सेवा सेतु पोर्टल के माध्यम से समस्त नागरिकों को लगभग 400 से अधिक सेवाओं का लाभ एक ही प्लेटफॉर्म के माध्यम से दिया जा रहा है, जिसमें वो विभिन्न प्रकार के जो विभाग हैं उनके लोक सेवा गारंटी अंतर्गत की जो सेवाएं हैं उसको आवेदन कर सकते हैं सेवा सेतु पोर्टल के माध्यम से। तो इसके लिए उनको पोर्टल ओपन करके जो भी सेवाएं हैं उनको सारी लिस्ट है सेवाओं की, उनमें वो सर्च के ऑप्शन से खोज भी सकते हैं किसी स्पेशल सेवा को अगर खोजना चाहे तो, या फिर सारी सेवाओं की लिस्ट देख सकते हैं उसमें सेवाओं से संबंधित क्या विवरण है, क्या क्राइटेरिया होता है, उन सब सेवाओं के बारे में सहायक दस्तावेज क्या लगाने चाहिए, कैसे फॉर्म भरना चाहिए, उन सब के बारे में जानकारी दिया गया है। तो उसको पढ़ के वो अप्लाई कर सकते हैं, खुद से आईडी बना के खुद से भी अप्लाई कर सकते हैं चाहे तो, या उनको लोक सेवा केंद्र के माध्यम से या किसी सेवा सेतु मैनेजर के संपर्क करना चाहे तो उससे भी संपर्क करके वो आवेदन डाल सकते हैं। आवेदन डालने के बाद क्या है, कुछ संबंधित विभाग की वेबसाइट में वो उनके आईडी में वो आवेदन प्रदर्शित होता है और उसके निराकरण की स्थिति को देखने के लिए वो आवेदन की स्थिति भी देख सकते हैं पोर्टल के माध्यम से कि किस स्थिति में है उनका आवेदन, कि भाई अभी अगर तहसील में आवेदन किए हैं तो तहसील में भी अग्रसित हो गया है, कि अगर कुछ समस्या होगी तो उनको आईडी में वापस भी होता है वो कि भाई ये कुछ आपत्ति होती है तो उसका निराकरण करके भी दोबारा आवेदन प्रेषित किया जा सकता है। और अगर सर्टिफिकेट अगर उनका बन गया है, आवेदन अगर अनुमोदित हो जाता है तो उस आवेदन संख्या के माध्यम से वो अपना डिजिटली सर्टिफिकेट डाउनलोड कर सकते हैं जिसको कि वो अपने अन्य कामों में इस्तेमाल कर सकते हैं। ये सुविधा सेवा सेतु पोर्टल के माध्यम से समस्त नागरिकों के लिए

छत्तीसगढ़ सरकार की एक बड़ी उपलब्धि के रूप में सेवा सेतु ने पारंपरिक व्यवस्था को बदलते हुए नागरिकों को वन स्टॉप सॉल्यूशन

0: आभूषण मुहैया कराया है। पहले प्रमाण पत्र बनवाने जैसी मूलभूत सेवाओं में श्रम, समय और आर्थिक संसाधनों की काफी खपत होती थी, लेकिन सेवा सेतु के आ जाने से अब कई मुश्किलें आसान हो गई हैं। छत्तीसगढ़ लोक सेवा गारंटी अधिनियम के तहत नागरिकों को निर्धारित समय सीमा में सेवाएं प्राप्त करने का अधिकार दिया गया है। सेवा सेतु इसी अधिकार को व्यावहारिक रूप से मजबूत कर रहा है।
1: मेरा नाम देवेश कुमार सिंह है, जिला कबीरधाम से, ये डिस्ट्रिक्ट मैनेजर। तो जैसे अभी मान के चलिए एग्जांपल ले लेता हूँ मैं, ग्राम पंचायत विवाह प्रमाण पत्र, तो उसमें क्या सिस्टम हो गया है, पहले क्या है जो जारी होता था विवाह प्रमाण पत्र ग्राम पंचायत स्तर पे वो ऑफलाइन रहता था। तो ऑफलाइन रहने के कारण क्या हो रहा था कि एक तो कई लोग मिसप्लेस कर ले रहे थे, दूसरा उनको अगर जैसे शादी के बाद लड़की को अपना नाम चेंज करवाना तो वो ऑफलाइन वाला वेरीफाई नहीं हो पा रहा था यूआईडीआई से, तो वो रिजेक्ट कर दे रहे थे। तो फिर इसको जैसे ही सेवा सेतु में ये चालू हुआ, अब वो ऑनलाइन सर्विस हो गया, उसमें क्यूआर कोड भी जनरेट हो गया, तो अब जैसे मेरे को अपना चाहिए विवाह प्रमाण, मैं उसको ऑनलाइन अप्लाई करूंगा। अप्लाई करने के बाद ऑनलाइन इसमें पेमेंट का भी सिस्टम है, जैसे अगर मैं अगर नागरिक लॉगिन करूंगा तो नागरिक लॉगिन करके फॉर्म भरूंगा, जो भी डॉक्यूमेंट है वो डालूंगा, ऑनलाइन चलान जो होगा अगर मैं लेट है, अगर एक साल दो साल बाद बनवा रहा हूँ तो 500 रुपए का चलान पटा दूंगा ऑनलाइन, उसके बाद वो पेमेंट होके डायरेक्ट सचिव की आईडी में चला जाता है। सचिव क्या करता है उसको वेरीफाई करके तुरंत जारी कर देता है। तो अब वो एक डिजिटली हो गया है, मेरा घूमेगा नहीं, अगर मिसप्लेस भी हो जाएगा तो मैं पोर्टल के माध्यम से अपना मोबाइल नंबर डाल के निकाल सकता हूँ। अब वो डिजिटली हुआ तो उसमें क्यूआर कोड भी है, लड़की को अपना नाम चेंज करवाना है अगर आधार कार्ड में सरनेम, तो उसके बेस पे उसको अप्लाई करेगा, अप्लाई करने के बाद आधार वेरीफाई करेगा क्यूआर कोड के थ्रू, अब वो जारी हो जाता है। तो जिससे एक साथ दो दो सर्विस इजिली अवेलेबल हो गई है। सर्विस में तो बहुत सारी सर्विस है, आय है, जाति है, निवास है, विवाह प्रमाण पत्र है, आपका गुमास्ता लाइसेंस है, पेंशन की सर्विसेज है, तो जो भी ये तो मैं अभी जो रिसेंटली अभी राशन कार्ड भी सर्विस ऐड हो गया, तो जो नया राशन कार्ड बनाना हो गया, राशन कार्ड में नाम जोड़ना हो गया, राशन कार्ड में नाम हटवाना हो गया, ये भी सर्विस चालू हो गई है। भूमि मतलब क्या भूया पोर्टल में चलता है वो भी ऑनलाइन है, लेकिन वो सेवा सेतु से अभी लिंक कर रहे हैं उसको भी, तो जैसे वो लिंक हो जाएगा ना, जैसे बाकी रीडायरेक्ट सर्विस ऐड हुए हैं तो वो भी प्रोसेस में आ जाएगा।

भरपूर लाभ उठा रहे हैं और सुशासन की पारदर्शी और सरल प्रशासनिक व्यवस्था को मजबूत बनाने में सहभागी बन रहे हैं। राज्य शासन की ये पहल केवल तकनीकी परिवर्तन नहीं बल्कि प्रशासनिक संस्कृति में बदलाव का भी संकेत है। छत्तीसगढ़ में प्रशासन और जनता के बीच की मजबूत कड़ी है सेवा सेतु। इस सरल और सुगम सेतु पर अपने कदम रखकर प्रशासन और नागरिक अब एक साथ बढ़ रहे हैं उजाले की

0: इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता थे छत्तीसगढ़ संवाद।
1: उजाले की ओर ये प्रायोजित कार्यक्रम अभी आप सुन रहे थे। यह आकाशवाणी का रायपुर केंद्र है।
2: मीडियम वेव और एफएम बैंड पर ये आकाशवाणी का जगदलपुर केंद्र है।
3: एक मजबूत घर बिल्कुल उस पिता की तरह होता है जो हर मौसम सहकर भी घर की नींव को कभी हिलने नहीं देता।
4: आपके घर के लिए भरोसे का दूसरा नाम चेटिनाड सीमेंट का मैक्स क्रीट सीमेंट, 64 सालों की बुनियाद के साथ चेटिनाड सीमेंट द परफेक्ट कंक्रीट चॉइस।
5: किसान भाई बहन मन का जे नुआ उवाट एदाएं रोज शनिवार के सांझ बेरा 7:30 बजे ले 8 बजे तक सुना फोन इन किसान वाणी। यथा कृषि महकमा चो विशेषज्ञ बल्लो ने खोजाकारी दादा दीदी दे दे आपन मन चो खेती कमाने ले जुड़ लो सपाय समस्या चो समाधान। बीज ले धरून हाट बाजार तक हर सवाल चो जवाब सीधा आपन मन के मिरे दे। और हाँ, ये कार्यक्रम चो रिकॉर्डिंग होय से रोजे मंगलवार अड़ौ पहार 3:30 बजे ले 4 बजे तक। तो आपन मन सपाय सुना और आप लोग सवाल सीधा आम के फोन ने सांगा। आमचो फोन नंबर आए 07782222666। फोन इन किसानवाणी आपन मंचो सवाल आपन मंचो कहानी खेती बाड़ी चो जुबानी आकाशवाणी जगदलपुर ने।
2: आकाशवाणी का ये जगदलपुर केंद्र है। इस समय सुबह के 10:30 हुए हैं। गुरुदेव कार्यक्रम में आज सुनिए महेश पांडे और साथियों के स्वर में हल्बी लोकगीत।

0: बस्तर के लोकगीतों के कार्यक्रम गुड़दुम में अभी आप हल्बी गीत सुन रहे थे। गायक स्वर था महेश पांडे और साथियों का।
1: ये इयररिंग दिखाना
2: गया तेरा प्राइस मनी।
1: कुछ इन्वेस्टमेंट भी कर लेती,
3: आते समय कर लिया मोबाइल से।
1: कहाँ?
3: गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में।
1: हाँ,
3: RBI रिटेल डायरेक्ट मोबाइल ऐप है ना, रिटेल डायरेक्ट स्कीम द्वारा इन्वेस्टमेंट यानी मैच्योरिटी पर गारंटीड रिटर्न्स।
1: नो ब्रोकरेज,
4: नो हिडन फीस।
1: मान गए, आपको नहीं आपको।
3: हाँ? RBI कहता है
5: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
0: मीडियम वेव 396.82 मीटर अर्थात 756 किलोहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का जगदलपुर केंद्र है। आप हमें न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और FM बैंड 100.1 मेगाहर्ट्ज पर भी सुन सकते हैं। सुबह के 11 बजे हैं, प्रस्तुत है कार्यक्रम एक ही कलाकार।

स्वर कभी नहीं मरते, वे समय की सीमाओं से परे जाकर पीढ़ियों तक गूंजते रहते हैं। आज हम याद कर रहे हैं उस महान गायिका को जिनकी आवाज ने करोड़ों दिलों को छुआ, जिनके गीतों ने हर भाव, प्रेम, विरह, भक्ति और उल्लास को अपनी अनूठी अभिव्यक्ति दी। भारतीय सिनेमा की सुप्रसिद्ध पार्श्व गायिका एस जानकी अब हमारे बीच नहीं रही, लेकिन उनके सुर सदैव अमर रहेंगे।

हुआ। शुरुआत में उन्होंने तेलुगु फिल्मों के लिए पार्श्वगायन किया, लेकिन धीरे धीरे उनकी आवाज का जादू तमिल, कन्नड़, मलयालम और हिंदी सिनेमा तक फैल गया।

दक्षिण भारत में एस जानकी को नाइटिंगेल की उपाधि दी गई। सन 1957 में शुरू हुआ उनका करियर 6 दशकों तक निरंतर चलता रहा। एस जानकी ने 17 से अधिक क्षेत्रीय भारतीय भाषाओं और कई विदेशी भाषाओं में गाने रिकॉर्ड किए हैं। तकरीबन 20,000 से अधिक गाने उनकी आवाज का नायाब तोहफा है मिला भारतीय सिने जगत को। दक्षिण भारतीय गायकों में पीबी श्रीनिवास, डॉक्टर राजकुमार और एसपी बालासुब्रमण्यम के साथ उनके युगल गीत तमिल, कन्नड़ और तेलुगु फिल्म के संगीत के इतिहास में सबसे रोमांटिक युगल गीतों में से कुछ थे। एसपी बालासुब्रमण्यम उन गायकों में से एक थे जिनके साथ एस जानकी की जुगलबंदी दक्षिण भारतीय गीतों के साथ साथ हिंदी सिने संगीत के लिए भी याद की जाती रही है। इन दोनों कलाकारों ने मिलकर हजारों ऐसे गीत फिल्म संसार

पार्श्व गायक मोहम्मद रफी के साथ भी कुछ गीत गाए, लेकिन वे तेलुगु भाषा में रिकॉर्ड हुए हैं। हिंदी फिल्मों में उनकी आवाज सुनने को मिली किशोर कुमार, मन्ना डे, भूपिंदर, मनहर उदास, अमित कुमार, सुरेश वाडकर, मोहम्मद अजीज, उदित नारायण, शब्बीर कुमार और शंकर महादेवन के साथ। उन्होंने कई युगल गीत इनके साथ भी गाए हैं। सबसे ज्यादा हिंदी फिल्मों में एस जानकी ने बप्पी लहरी के संगीत निर्देशन में गीत गाए हैं। एक गीत तो दोनों की आवाज का नायाब तोहफा भी है।

एस जानकी की आवाज और गायन को चार बार सर्वश्रेष्ठ गायिका का राष्ट्रीय अवार्ड मिला, चार बार उन्हें राज्य पुरस्कार प्राप्त हुए और 11 बार उन्हें अन्य पुरस्कारों से भी सम्मानित किया गया है। एस जानकी एक प्रतिभाशाली गीतकार भी मानी जाती हैं। उन्होंने तेलुगु और तमिल में कई गीतों की रचना की है। एस जानकी एक ऐसी आवाज जिसमें कहीं ना कहीं पार्श्व गायिका आशा भोसले की झलक सुनाई देती है। कई बार तो पता ही नहीं चलता कि गीत में आवाज आशा जी की है या जानकी जी की। उनकी गायकी में हूबहू आशा भोसले जैसी वही मिठास, वही नजाकत और वही दिल को छू लेने वाला जादू बसा है। फिल्म पाप की दुनिया के इस गीत को सुनिए जिसे किशोर कुमार और एस जानकी ने गाया है। महसूस कीजिए, आपको हर सुर में कहीं ना कहीं आशा भोसले की आवाज का एहसास होगा। दो गीत आपके लिए।

ये घोड़ा सुना क्या लड़की बोला बात में बहुत दम है छाती ठोक ठोक के बोला।

सुर कभी नहीं मरते, वे समय की सीमाओं से परे जाकर हमेशा गूंजते रहते हैं। एस जानकी भी आज हमारे बीच भले ही शारीरिक रूप से नहीं हैं, लेकिन उनकी आवाज का जादू आने वाली न जाने कितनी पीढ़ियों तक संगीत प्रेमियों के दिलों में जीवित रहेगा। 11 जुलाई 2026 को मैसूर में एस जानकी ने अंतिम सांस ली, लेकिन उनके जाने के बाद भारतीय संगीत का एक स्वर्णिम अध्याय इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गया। अपनी विलक्षण गायकी, भावों की अद्भुत अभिव्यक्ति और हर गीत में जान डाल देने की अनूठी कला ने उन्हें संगीत जगत की उन विरल हस्तियों में शामिल कर दिया जिनका कोई विकल्प नहीं होता। उनका स्वर हमेशा हमें ये एहसास कराता रहेगा कि सच्चे कलाकार कभी विदा नहीं होते, वे अपनी कला के माध्यम से हमेशा हमारे साथ रहते हैं।

0: एक ही कलाकार। आज का हमारा ये कार्यक्रम केंद्रित था मशहूर पार्श्व गायिका एस जानकी पर। ये आकाशवाणी का जगदलपुर केंद्र है। दिन के 11:30 हुए हैं।
1: मजबूत घर बिल्कुल उस पिता की तरह होता है जो हर मौसम सहकर भी घर की नींव को कभी हिलने नहीं देता।
2: आपके घर के लिए भरोसे का दूसरा नाम चेटिनाड सीमेंट का मैक्स ग्रेड सीमेंट, 64 सालों की बुनियाद के साथ। चेटिनाड सीमेंट, द परफेक्ट कंक्रीट चॉइस।
0: ये आकाशवाणी का जगदलपुर केंद्र है। लोक वाद्य धुनों के कार्यक्रम पाड़ में प्रस्तुत है वादक कलाकार हैं भारत और साथी।

0: लोकवाद धुनों के कार्यक्रम पाड़ में अभी आप बासन बुंदिन पाड़ सुन रहे थे। वादा कलाकार थे भारत और साथी। आकाशवाणी का ये जगदलपुर केंद्र है। इस समय दिन के 11:55 होने को हैं। अब हिंदी में समाचार हम आकाशवाणी के रायपुर केंद्र से रिले करते हैं।
1: ये आकाशवाणी रायपुर है। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं राहुल सिन्हा। और अब पेश है आज के मुख्य समाचार। मौसम विभाग ने कल से प्रदेश में वर्षा की गतिविधियों में बढ़ोतरी होने की संभावना जताई है। खरीफ मौसम के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत 12 जुलाई से पंजीयन की प्रक्रिया शुरू हो गई है और भारतीय सेना ने छत्तीसगढ़ के अभ्यर्थियों के लिए आयोजित कॉमन एंट्रेंस एग्जाम के परिणाम घोषित कर दिए हैं। अब समाचार विस्तार से। प्रदेश में आज कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना है। वहीं एक दो स्थानों पर भारी बारिश और गरज चमक के साथ आकाशीय बिजली गिरने की चेतावनी दी गई है। मौसम विभाग ने आगामी 15 और 16 जुलाई को प्रदेश में वर्षा की गतिविधियों में बढ़ोतरी होने की संभावना जताई है। प्रदेश में खरीफ मौसम के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत 12 जुलाई से पंजीयन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। कृषि विभाग ने प्रदेश के किसानों से 31 जुलाई तक धान, मक्का, सोयाबीन समेत 11 अधिसूचित फसलों का बीमा कराने की अपील की है। मौसम विभाग द्वारा अलनीनो के प्रभाव से अनियमित या कम वर्षा की आशंका जताए जाने के बीच कृषि विभाग ने कहा है कि फसल बीमा किसानों को प्राकृतिक आपदाओं से होने वाले नुकसान के विरुद्ध आर्थिक सुरक्षा प्रदान करेगा। कृषि विभाग ने किसानों से फसल क्षति होने पर 72 घंटे के भीतर इसकी सूचना संबंधित विभाग, बैंक, बीमा कंपनी या टोल फ्री नंबर 1-4-4-4-7 पर देने की अपील की है। भारतीय सेना ने आर्मी रिक्रूटिंग ऑफिस के अंतर्गत छत्तीसगढ़ के अभ्यर्थियों के लिए आयोजित कॉमन एंट्रेंस एग्जामिनेशन सीईई के परिणाम घोषित कर दिए हैं। यह परीक्षा 1 से 12 जून तक राज्य के 10 परीक्षा केंद्रों पर आयोजित की गई थी। अभ्यर्थी अपना परिणाम भारतीय सेना की आधिकारिक भर्ती वेबसाइट www.joinindianarmy.nic.in और आर्मी रिक्रूटिंग ऑफिस रायपुर के सूचना पटल पर देख सकते हैं। कॉमन एंट्रेंस एग्जामिनेशन में सफल अभ्यर्थियों को अब शारीरिक दक्षता परीक्षा, दस्तावेज सत्यापन और चिकित्सीय परीक्षण सहित भर्ती प्रक्रिया के अगले चरण में शामिल होना होगा। हवलदार और जूनियर कमीशन्ड अधिकारी पदों के लिए भर्ती रैली 25 जुलाई से 6 अगस्त तक मध्यप्रदेश के सीहोर में आयोजित की जाएगी। छत्तीसगढ़ शासन द्वारा 1 नवंबर को आयोजित होने जा रहे राज्य स्थापना दिवस के मुख्य समारोह के दौरान डॉ खूबचंद बघेल कृषक रत्न पुरस्कार प्रदान किया जाएगा। इस संबंध में कृषकों से 31 जुलाई तक आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। संयुक्त संचालक कृषि से प्राप्त जानकारी के अनुसार इच्छुक कृषक जो खेती में नवाचार, जैविक कृषि, उत्पादन में वृद्धि, कृषि यांत्रिकरण या जल संरक्षण जैसे क्षेत्रों में उल्लेखनीय योगदान दे रहे हैं वे इस पुरस्कार के लिए आवेदन कर सकते हैं। कल 13 जुलाई को प्रयागराज संगम में पद्म विभूषण डॉ तीजनबाई के पुत्र दिलहरण पारधी ने उनकी अस्थियों का विसर्जन किया। इस दौरान उत्तर मध्य सांस्कृतिक केंद्र के उपनिदेशक डॉ मुकेश उपाध्याय और अनेक गणमान्य नागरिकों की उपस्थिति में तीजनबाई के लिए फ्रांस और जर्मनी से भेजे गए शोक संदेश का पाठन भी किया गया। वहीं आज गनियारी में विशाल श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया है। बिलासपुर जिले के सरकंडा स्थित बाल संप्रेक्षण गृह में 4 बाल अपचारी ड्यूटी पर तैनात सुरक्षा गार्ड की हत्या कर फरार हो गए हैं। ये चारों बाल अपचारी

0: की जाएगी। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मौसम विभाग ने कल से प्रदेश में वर्षा की गतिविधियों में बढ़ोतरी होने की संभावना जताई है। खरीफ मौसम के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत 12 जुलाई से पंजीयन की प्रक्रिया शुरू हो गई है और भारतीय सेना ने छत्तीसगढ़ के अभ्यर्थियों के लिए आयोजित कॉमन एंट्रेंस एग्जाम के परिणाम घोषित कर दिए हैं। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन छत्तीसगढ़ी में होगा, जिसे शाम 6:10 पर सुना जा सकता है। नमस्कार।
1: मीडियम वेव 396.82 मीटर अर्थात 756 किलोहर्ट्ज़, एफएम बैंड 100.1 मेगाहर्ट्ज़ और न्यूज़ ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर

जुहार दादा दीदी मन जुहार। कला और कलाकार सुनतो सप्पा दादा दीदी मन सियान सजन संगजौरिया संगवारी मन के मैं पारो करे से जुहार। और ये चीज संग संगे हम के नन्नी नन्नी पीला मन के बल नहीं भूलत रहे तो सप्पा रेडियो कट्टा बसलो नन्नी नन्नी पीला मन के मैं पारो बाटले खुबे खुबे मैं और चुमा। तो दादा दीदी मन तखा आमी कार्यक्रम भित्रे कैक अचन ज्ञान ध्यान चो गोट और अमचो कलाकार चो मुंड्रा ने आमी बड़े बड़े कलाकार मन चो जीवन परिचय और रंग रसिया गीत गोविंद केवल धरुण भाती तुम जो लगे अमराऊ से। तो दादा दीदी मन दखा असन समय आए कि आमी आमचो जीवना ने कला गोटोक असन आमचो पहचान हो से गोटोक ना हो से और कला कई बरंचो हो से जो नाम जो जीवना ने गोटोक आमचो काजे अलग पहचान और अलग नाम बनाए से आमी आमचो कला के आमचो भीतर चो लुक लोगुन के असन बाहरे अनुन भाती आप लोग कलाकार के लोग लगे दखाउन भाती आमी आप लोग नाव गोटोक देश विदेश ने बोले गाँव राज्य जहाँ बोले आमचो गोटोक नवा पहचान हो से नवा गोटोक ना हो से। तो दादा दीदी मन आमचो जीवना ने कला चो खूबे बड़े महत्व आए। दादा दीदी मन आमचो जीवना ने दखा असन परंपरा बल्लो ने पुरखा पाटी बराले समय ले तो गोटोक असन रुसुम हो से जोन आमी परंपरा पुरखा पाटी बराले निभाती यूं से और यही परंपरा और आमचो रीति नीति ले आमचो जीवना ने कैक असन काम धाम हो से जे चो काजी आमी इचो पालन पोषण करूं से कसन बल्लो ने आमी ये जी रीति नीति आमचो घर चो हर काम ने आम उनकी सूरता करूं भाती आम उनके अनुसार चलूं से और गुटो के रीति नीति असन अनुशासन हो से जोन चो माध्यम ले आमी कई बल काम के नानी हो चाहे बड़े हो चाहे तीज त्योहार हो चाहे बड़े काम धाम हो आमी असन करूं से जोन चोले आमके ये आम के समाज ने लोग ने सब ने गुटो आमचो नवा पहचान बने से कसन बल्लो ने ये परंपरा असन आमचो अनुशासन नियम हो से जिनचो ने आम के नानी ले धरुन बड़े कई बल काम ने आमी आप लोग सगा समाज ने नानी बड़े काम ने बोले आमी ये चो पालन करून भाती खुबे नगद आमचो परिवार के आमचो समाज के चलाऊ से भले आधुनिकता असन चीज आए जोन एक दूसरे चो इमन दोनों अलग नो आत बल्कि आमी आधुनिकता ने बोले जाऊन भाती आमचो परंपरा के धरून चलू से कसन बल्लो ने आमचो समयाले जोन आमचो रीति नीति चलते यही से जोन काम आमी करूं से हुन्ने दोनों एक दूसरे चो पूरक आत बल्लो ने गोटोक आत आमी आप लो पीला झीला के बोले आमचो परंपरा के आमचो पुरखा पाटी बेराले चलतो रीति नीति के नी भूलकू और सांगू से और आगे बोले ये परंपरा रह दे तब भी आमचो काम आसान हो दे नहीं तो लोग असन कहीं नियम धर्म नहीं हो दे असन कहीं आमचो ये तो समयाने लोग ये सब चीज के नहीं जान दे तो कई बल काम उठपटांग कर दे और ये चो परिणाम अच्छा नहीं हो दे। तो जो आमचो क्रमबद्ध चलते यही से बड़े ले नानी ले जो आमचो नियम धर्म चलते यही से पुरखा पाटी बेराले हुंचो संगे संगे आधुनिक उपकरण चो बल आम के उपयोग करते रहे और हुंचो अनुसार बल चलते रहे मंत्र आमचो जो पुरखा पाटी बेराले चलते यही से रीति नीति बल आम के नी भूलक तो राय ये दोनों चो बीच ने समांतर बनाउन संगा तो राय और ये चीले आमचो जो ये तो पीढ़ी आई से हुन चो काज बले हुमन चो जीवना काज बले उपयोग हो दे ये मानवी परंपरा के रुत रुसुम के जोड़ुन संगालो ने आमचो संगे संगे वैज्ञानिक दृष्टिकोण ले बले आधुनिक तकनीक के बले अपना तो राय मंत्र परंपरा आधुनिकता चो मंजी कुटोक संतुलन बनाउन संगा तो राय ये व्यवहार आप लोग ये तो पीढ़ी के बले

असनी ज्ञान देऊन भाती आमचो समाज के और आमी बाढ़तीचो बाढ़ने नेऊ दे। परंपरा आपलो आधुनिकता आपलो दोनोंले अलग होऊन भाती इमन अलग अलग आपलो संस्कृति चो पहचान बना दे मांतर इमन के हम जोड़ून संगालो ने आमचो बीच ने जोन वैज्ञानिक तकनीकी उपकरण बल होई से और बाढ़ती

0: 8 बजे तक सुना फोन इन किसान वाणी। यथा कृषि महकमा चो विशेषज्ञ बल्लो ने खोजाकारी दादा दीदी दे दे आपन मन चो खेती कमाने लिए जुड़ लो सपाय समस्या चो समाधान। बीज ले धरून हाट बाजार तक हर सवाल चो जवाब सीधा आपन मन के मिरे दे। और हाँ, ये कार्यक्रम चो रिकॉर्डिंग होय से रोजे मंगलवार अड़ौ पहार 3:30 बजे ले 4 बजे तक। तो आपन मन सपाय सुना और आप लोग सवाल सीधा आम के फोन ने सांगा। आम चो फोन नंबर आए 07782222266। फोन इन किसान वाणी आपन मंचो सवाल आपन मंचो कहानी खेती बाड़ी चो जुबानी आकाशवाणी जगदलपुर ने।
1: एक मजबूत घर बिल्कुल उस पिता की तरह होता है जो हर मौसम सहकर भी घर की नींव को कभी हिलने नहीं देता।
2: आपके घर के लिए भरोसे का दूसरा नाम चेटिनाड सीमेंट का मैक्स क्रीट सीमेंट, 64 सालों की बुनियाद के साथ। चेटिनाड सीमेंट, द परफेक्ट कंक्रीट चॉइस।

और देश विदेश ने गुटुक असन नाम बनवरला जेचुने गोपाल प्रसाद के आज बली महान कलाकार जो रूप ने हमी सुरता करूं से। तो इतोरली गोपाल प्रसाद दुबे चो जीवन परिचय एचो बाद आमचो मुड़राना से कायमंजा गीत गोबिन आले इया एके बले सुनू फिर गीत कुरिया चुनाव के सांगवा।

हाँ तो दादा दीदी मन काय सुंदर गीत चो गीत कुरिया भाई मन रोत शिवना शिवराम नागौर हुंचो संगवारी मन। तो दादा दीदी मन आमचे मुड्रा ने आले फिर कुटो गीता से आले एके बले सुनू फिर गीत कुरिया मन चुनाव के सांगो।

कला और कलाकार। अभी आप हमारा ये कार्यक्रम सुन रहे थे। आकाशवाणी का ये जगदलपुर केंद्र है। दिन के 12:30 हुए हैं। प्रस्तुत है ग्रामीण महिलाओं का कार्यक्रम घर द्वार।

दीदी बहीन मन जुहार। एची संगे कार्यक्रम घर द्वार सुन तो सब पाए दीदी बहिन मन के मैं पारो करे से जुहार। तो दीदी बहिन मन तुम्ही तो जान साची आमी घर द्वार भित्रे आमचो बड़े मुंडा ने कैक असन ज्ञान ध्यान चो गोट भेट वार्ता कविता कहानी और काय मंजा रंग रसिया गीत गोबिंद के धरुन भाती तुम च लगे अमराऊ से। तो बहिन मन तुम्ही जान साची ए बे समिया आमके भेड़ा खाड़ा चोहली से और असन समय ने आम के कसन बड़न चुड़न भाती काम बुता करते रहे और आप लोग जो संगे संगे घर द्वार जो बुता के बले दखते रहे। बहन मन तुम्हें तो जान साची आमी मेहरार मन घर जो मुखिया हूँ से बल्लो ने सब पाए काम धाम जो बोझा आम चुपरे रहे से पीला झीला के बले तैयार करतोर स्कूल पठातोर सत्रह सत्री चो सेवा करतोर घर चो सफाई बुता करतोर और कितरो बड़े आम चो लगे घर चला तो जिम्मेदारी रहे से और ए चीज संगे संगे आमी कितरो नगत अमचो घर परिवार के चलाऊं से। तो बहिन मन दखा घर चला तो का जे पैसा रुपया बोले हो तो रासे मंतर एचो संगे संगे आम के घर चो परिवार के संभाल तो का जे आमचो घर ने आमचो मंजी गोट बात हो तोर खूबी जरूरी है। कसन बल्लो ने गोट बात होलो ने आमी एक दूसर चो मंचो समस्या के बल जानू से उनचो परेशानी के जानू से बात गोट बात ने आमी घर चो कहीं बले कमी कहीं बले गलत फहमी के दूर कर सकूं से और आमी कहा ले इलो ने गोटक लग बसलो ने आमी कहीं बले गांव चो हो विषय ने कहीं बल समस्या आसे कहीं बल हुंचो बलो ने उलझन आसे कहीं बले हुंचो विपत्ति आसे आले आमी गोट बात चो माध्यम ने हुन समस्या के हुन गोट के हुन गलती के आमी कम करुक लाए सकूं बलो ने हुंचो आमी हल निकराक लाए सकूं हुंची काजे आमके घर परिवार ने एकता काजे हुंचो बाढ़ती काजे और आप लोग परिवार चो उन्नति बाढ़ती काजे आमचो मजी गोट बात हो तो खूब जरूरी है। आमचो घर परिवार ने दखा असन तकनीकी माध्यम बल होली से एवे लोग एक दूसरा के समय नहीं देवत बलो ने आप लहान खुली खुली ने कोना कोना ने आप लहान ने व्यस्त आसत असन ने काय हो से घर परिवार चो दूरियां बढ़े से और आमी एक दूसरा के समझुक नहीं सकूं काचो मन ने काय चले से काचो मन ने काय परेशानियां से काके काय समस्या से हुनके आमी जानुक नहीं सकूं मंतर आम के ये सब चीज के लुकातोर छुपातोर नु आए और एक दूसरा के परिवार ने समय देतो रहे समय दिलो ने काय होई से आप लहांचो मनचो गोट मनचो विचार पूरी आई से और हुन गोट की सुनुन भाती जोन बल आमचो लगे हुनचो समस्या चो हल निकरुक सके आमी आप लो सुझाव देऊं से और गोट बाट चो माध्यम ने ची बड़े बड़े समस्या चो बड़े बड़े दुख तकलीफ चो निदान हुई से आमचो घर परिवार ने संवाद हो गोट बात हो तो जरूरी है। गोट बात होलो ने का है आमचो पीला झीला के सही संस्कार मिले से आत्मविश्वास सम्मान

0: मनचो मन ने विकसित होई से बोलो ने आमचो गोट बात आमचो व्यवहार ने हुन मनचो मन ने असन पिला मनचो दिमाग ने जाय से कि आमचो परिवार ने कसन परिस्थिति ने कसन गोट बात होई से और आमचो मंजी आमचो गोट बात ने कितरो प्रेम आसे और आमी आमचो परिवार ने कितरो मया कितरो प्रेम और कितरो एकता आसे आमचो व्यवहार ने ची आमचो गोट बात ने ची आमचो पीला झीला उनके सीखसो आमचो गोट बात आमचो कितरो समस्या चो हल होए से और गोट बात चो माध्यम ने ची आमी आपलो परिवार के ऊपरी उठा सकूं। गोट बात नहीं हो तो जगह मन ने लोग दूसरा लोग मन गलत फहमी फैलासो कहीं दूसरा चो गोट के धरुन भाती झगड़ा लड़ी होए से चाहे हुमन घर चो बंटवारा चीज संबंध ने हो जमीन जायदाद चो संबंध ने हो नहीं तो घर द्वार जो संबंध ने हो कितरो लोग चो गोट के धरुन भाती झगड़ा लड़ी होए से कितरो कोर्ट कचहरी होए से और परिवार टूटे से भाई भाई टूटे से माए बाप ले टूटे से बेटा बेटी ले टूटे से तो असन आमी आप लोग गोट के लुकाऊ दे दूसरा जो गोट के धरून दे तो असन आमचो परिवार बिखरू सके हुनी गोट के आमी गोट बार चो माध्यम ले आप लोग घर परिवार ने बसुन भाती हुन गोट के निकरक सकूं बलुक सकूं आमचो अच्छा काजबल हो चाहे आमचो खराब काजबल हो आमचो बड़े जो नासोत घर परिवार ने हुन गोट के हुमन लग सांगलो ने कहीं तो आम के विचार सांग दे और असन आए कि परिवार चो मुखिया जोन हो से हुनके भी गलत निर्णय निधरू सके बोलो ने आमी अगर तीन चार भाई बहन आसू और आमचो बीच ने कई मतभेद हो से तो आमचो बाप माए आमचो संगे गलत नहीं करू सकत तो हुनी चीज के आम के दूसरा जो गोट के निधरुन भाती एक गोट बात के आप लोग घर परिवार ने करतो रहे और एक गोट बात ने ची आमचो घर परिवार चो जोन बले आमचो समस्या आसे जोन बले गोट दुख तकलीफ बला से आले ये चीन ची हल हो दे हुनी काजे आमचो परिवार ने एक दूसरा के समय देत रहा एक दूसरा संगे समय बितात रहा और जितरो समय आमी घर परिवार के देवन भाती मंचो बीच ने कहीं बल गोट बात करूं दे तो हुचो परिणाम अच्छा होए दे तो आमी आप लोग जीवना के खूब अधिक प्रभावी बनातो काजे आमचो खुशहाल जीवन काजे आमचो पीला जिला जो उन्नति बढ़ती काजे हुन मन के सही रास्ता दिखातो काजे आमचो बीच ने आमचो परिवार ने गोट बात होतोर खूबे जरूरी है और आमी आप लोग परिवार के असन गोट बाट चो माध्यम ने अच्छा ज्ञान देऊन भाती आमी आप लोग परिवार ने एकता बनाऊ सकू उन्हीं का जे आम के आप लोग परिवार ने गोट बात करतोर खूबे नगत हो से और जरूरी कितरी समस्या होले वाले आमचो गोट बाट चो कारण ने ची आम एक चो निपटारा करू सकू तो आप लोग परिवार चो उन्नति बाढ़ती का जे आम के नगद समय ने बसून भाती नगद गोट बात करतो रहे और सभी समस्या चो निदान करतो रहे तो बहन मन ये तो रली आमचो कला कार्यक्रम चो मोटरा ने गोट बात चो नगद गोट तो ये चो बात आमचो कलाकार चो मोटरा ने कार्यक्रम चो मोटरा ने आसे जहाला आले के बले सुनो
1: पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है।
2: अच्छे उपचार के लिए अब नहीं रहेगा कोई लाचार। देश भर में 60 करोड़ से ज्यादा लाभार्थी हैं। अब 5 लाख के मुफ्त इलाज के हकदार। अब तक 1.25 लाख करोड़ रुपए

0: से बल्कि जनावर मन चो इलाज बोले सस्ता हो तो भरसा आसे। जीएसटी ले वेटनरी सर्जिकल चो सामान सस्ता होली से नुआ कीमत ले सामान बना तो लोग और घेन तो लोग दोनों के लाभ मिरे दे। ये नुआ जीएसटी दर 22 सितंबर 2025 ले लागू हो दे।
1: एक मजबूत घर बिल्कुल उस पिता की तरह होता है जो हर मौसम सह कर भी घर की नींव को कभी हिलने नहीं देता।
2: आपके घर के लिए भरोसे का दूसरा नाम चेटिनाड सीमेंट का मैक्स क्रीट सीमेंट 64/7 चेटिनाड सीमेंट द परफेक्ट कंक्रीट चॉइस।
3: किसान भाई बहन मन का जे नुआ उवाड एदाए रोज शनिवार के सांझ बेरा 7:30 बजे ले 8 बजे तक सुना फोन इन किसान वाणी। यथा कृषि महकमा चो विशेषज्ञ बल्लो ने खोजाकारी दादा दीदी दे दे आपन मन चो खेती कमाने लिए जुड़ लो सपाय समस्या चो समाधान। बीज ले धरून हाट बाजार तक हर सवाल चो जवाब सीधा आपन मन के मिरे दे। और हाँ, ये कार्यक्रम चो रिकॉर्डिंग होय से रोजे मंगलवार अड़ौ पहार 3:30 बजे ले 4 बजे तक। तो आपन मन सपाय सुना और आप लोग सवाल सीधा आम के फोन ने सांगा। आमचो फोन नंबर आए 07782222666। फोन इन किसान वाणी आपन मंचो सवाल आपन मंचो कहानी खेती बाड़ी चो जुबानी आकाशवाणी जगदलपुर ने।
4: सो बिड़किन बिड़िया राहत तिंदनत उंडाना सामान तलाय दरकता डबल रोटी आरी और छेना पनीर असित के इंजे जीएसटी लगे मायो। इदेना संगेन 33 जरूरी दवाई नद मोला वेंट कम की सित तोड़ अदेन के इलाज तलाय खर्चा वेंट कम लगे माता। जीवन बीमा तगवेंट इंजे जीएसटी छूट दोर किता अदेन के पॉलिसी पोईतनत इंजे सस्ता आंता। सुडला कार गाड़ी और 350 सीसी ता फोटरू गाड़ी ता पर्रो 28% जीएसटी मत्ता अद कम मास इंजे 18% अत्ता। इदेन मतलब इद की इंजे गाड़ी पोटरू गाड़ी असित के सस्ता दोरकीता।
5: हाँ, तो भाई बहन मन आमचो कलाकार कार्यक्रम चो मोडराने और दखा काय मंजा रंग रहस्या गीत मन बला से। तो ये गीत के सुनू फिर गीत कुरिया चुनाव के सांगवा।

0: হ্যাঁ দাদা দিদিমান, আমি কায়মঞ্জা গিচু গীত কুরিয়ামান রোহত যোগেশ্বর পূজারী অরুঞ্চ সঙ্গারিমান। তো দিদি বহিনমান, দেখা আমচো কার্যক্রম ভিতরে গোটক আমচো লাগে বার্তা আছে বরসাত নে স্বচ্ছতা। তো এমঞ্চো নাম আয় নির্মলা কমর আলিয়া, এমঞ্চো বার্তাকে বলে শুনো।
1: मानसून के मौसम में स्त्री स्वच्छता कैसे बनाए रखे, और आर्द्र मानसून आ गया है और साथ ही नम मिट्टी की महक भी। लेकिन रुकिए, क्या यह आपको अजीब और असहज महसूस करा रहा है? हम आपकी पीड़ा महसूस कर सकते हैं। मानसून के मौसम संक्रमण पैदा करने वाले बैक्टीरिया लेकर आ सकती है, जो अंततः कई योनि संक्रमणों का कारण बनती है। इसलिए अपनी योनि की स्वच्छता का ख्याल रखना और भी महत्वपूर्ण है। लेकिन

चिंता ना करें, हम आपको डराने के लिए नहीं बल्कि आपकी मदद करने के लिए यहाँ हैं। आगे कुछ आदतों के बारे में हम आपको बताएंगे जिन्हें आप आसानी से अपना कर इस गीले और नम मौसम में योनि संक्रमण और असुविधा की किसी भी संभावना को रोक सकते हैं। वे बातें इस प्रकार हैं। पहला, आपके अंतर वस्त्रों का चयन बुद्धिमानी से करें। मानसून संक्रमण और असुविधा की संभावनाओं को लेकर कुख्यात है। इस मौसम में सूती अंडरगारमेंट्स पहनना बहुत जरूरी है। कोई भी तंग अंडरगारमेंट्स हरकत को सीमित कर सकता है और ज्यादा पसीना पैदा कर सकता है जिससे हवा प्रवाह बाधित होता है। यह बैक्टीरिया के अतिवृद्धि के लिए एक वातावरण बना सकता है। आरामदायक पैंटी पहनना जरूरी है जो आपके योनि क्षेत्र को सूखा और आरामदायक बनाए रखे। अक्सर मानसून में दिन में दो बार अंतरंग क्षेत्र को साफ करने की सलाह दी जाती है। अगर आपको अत्यधिक पसीने की समस्या का सामना करना पड़ता है तो अधिक बार साफ करें। वहां बार बार सफाई करने और उसे सूखा रखने से उसमें बैक्टीरिया के संक्रमण और गंध से मुक्त रखा जा सकता है। दूसरा है, पीरियड के दौरान सावधानी। मानसून की नमी बहुत परेशान करने वाली होती है। मानसून में पीरियड्स के दौरान स्थिति और भी खराब हो सकती है। मानसून के मौसम में पीरियड्स के दौरान उचित अंतरंग स्वच्छता बनाए रखना बहुत जरूरी है। हमेशा सुनिश्चित करें कि आपका अंतरंग क्षेत्र साफ, सूखा और स्वच्छ हो। आपके मासिक धर्म उत्पादों को अधिक बार बदलें, लगभग 4 से 6 घंटे में। अतिरिक्त योनि स्राव को सोखने और उसे नीचे ताजा रखने के लिए सैनिटरी पैंटिलाइजर का उपयोग करें। तीसरा है, हाइड्रेट रहें। बच्चे अपनी माँ की बात सुनो, पर्याप्त पानी पिएं और हाइड्रेट रहें। मानसून की नमी के कारण बहुत ज्यादा पसीना आता है। हम शरीर में तरल पदार्थ और नमक ज्यादा बार खो देते हैं। हाइड्रेट रहने से मूत्र मार्ग साफ और सुरक्षित रहता है। यह शरीर से विषाक्त पदार्थों को बाहर निकालने और पीएच संतुलन बनाए रखने में भी मदद करता है। चौथा, मसालेदार भोजन की लालसा पर अंकुश लगाएं। आप जो खाते हैं वही आप हैं। यह बात आपने कई बार सुनी होगी। यह बात बुरी है लेकिन यह सच है। ऐसे भोजन की अम्लीयता प्रकृति हमारे शरीर के पीएच में असंतुलन पैदा कर सकती है। यह असंतुलन हमारे योनि के स्वास्थ्य पर बहुत बुरा प्रभाव डाल सकता है जिससे वहां से दुर्गंध आती है। मसालेदार भोजन के बजाय सादा दही, स्ट्रॉबेरी और हरी पत्तेदार सब्जियों जैसे प्रोबायोटिक युक्त भोजन का सेवन बढ़ाएं। ये योनि में स्वच्छ बैक्टीरिया के विकास में मदद करने के लिए जाने जाते हैं। अपनी योनि पर कठोर मत बनो। याद रखें कि जब लोग आपके पास कठोर व्यवहार करते थे तो आपको कैसा महसूस होता था। खैर, आपकी योनि के साथ ऐसा ना करें। वहां की त्वचा बहुत संवेदनशील होती है और इसके रखरखाव में कोमल देखभाल की आवश्यकता होती है। आपके योनि क्षेत्र में साबुन का उपयोग बिल्कुल भी उचित नहीं है क्योंकि उनका पीएच फैक्टर आपके प्राकृतिक योनि पीएच से बहुत

कोमल देखभाल की आवश्यकता होती है। आपके योनि क्षेत्र में साबुन का उपयोग बिल्कुल भी उचित नहीं है क्योंकि उनका पीएच फैक्टर आपके प्राकृतिक योनि पीएच से बहुत उचित नहीं है क्योंकि उनका पीएच फैक्टर आपके प्राकृतिक योनि पीएच से बहुत

सेवर से सलाह लें और उनके द्वारा बताए गए चरणों का पालन करें। मानसून एक ऐसा मौसम है जो बहुत ही मजेदार और आनंददायक होती है। जब हम चिलचिलाती गर्मी से बहुत संघित छुट्टी का आनंद लेते हैं, यह पूरी तरह से एक अलग अवधि है जो हमारे अंदर के मजेदार बच्चे को बाहर लाती है। लेकिन यह मौसम ऐसी परिस्थितियां भी लेकर आता है जो संक्रमण और बीमारियों का कारण बन सकती है। उन दिनों में सुरक्षित और स्वच्छ रहने के लिए एंटीबैक्टीरिया पैड का इस्तेमाल करें। उन दिनों में जब नियमित डिस्चार्ज आपको असहज कर रहा हो तो क्विक एब्जॉर्ब फोर्स वाले पेंटिलाइजर स्वर्ग जैसा महसूस कराएंगे और आप हमारी बात पर यकीन कर सकते हैं। सैनिटरी पैड को अपना सबसे अच्छा दोस्त बना लें और आपको योनि या मासिक धर्म की परेशानी के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं होगी। रेस मुक्त मानसून के लिए स्वच्छता संबंधी आदतें। मानसून चिलचिलाती गर्मी से ताजगी भरी राहत देता है, लेकिन यह त्वचा से जुड़ी कई समस्याओं को भी साथ लाता है। बढ़ी हुई नमी और गीलापन बैक्टीरिया और फंगस के लिए एकदम सही प्रजनन भूमि बनाता है, जिससे चकते और त्वचा में संक्रमण होता है। यह सुनिश्चित करने के लिए कि मानसून के मौसम में आपकी त्वचा स्वस्थ और रेस मुक्त रहे, एक उचित मानसून महत्वपूर्ण है। बारिश के मौसम में आपकी त्वचा को तरोताजा और चमकदार बनाए रखने के लिए अपनी त्वचा को सूखा रखें। मानसून में सबसे महत्वपूर्ण चीजों में से एक है अपनी त्वचा को सूखा रखना। मानसून के दौरान उच्च आर्द्रता का स्तर अत्यधिक पसीना पैदा कर सकता है, जिससे चकते और फंगल संक्रमण हो सकता है। पसीना आने या बारिश में भीगने के बाद अपनी त्वचा को साफ तौलिए से थपथपाना सुनिश्चित करें। दूसरा, रेजिना का उपयोग करें। जो लोग विशेष रूप से चकते और त्वचा की जलन से ग्रस्त हैं, उनके लिए रेजिना जैसी विशेष सुरक्षा का उपयोग करना आवश्यक है। रेजिना को अंडरआर्म्स रैश, अंडरब्रा रैश, ब्रेस्ट स्ट्रैप रैश, पैड रैश, योनि की खुजली, अंडरवेयर और स्ट्रैप दर्द को दूर करने के लिए डिजाइन किया गया है। इसका अनूठा फॉर्मूला त्वचा पर एक अदृश्य अवरोध बनाता है जो घर्षण और नमी के निर्माण को रोकता है, जो मानसून के मौसम में चकते के सामान्य कारण हैं। इसको शामिल करना मानसून में त्वचा की देखभाल का सबसे अच्छा तरीका है, जो आपकी त्वचा को आरामदायक और रैश युक्त रखने में मदद करेगा। तीसरा है, ढीले हवादार कपड़े पहने। सूती जैसे ढीले सांस लेने वाले कपड़े चुने जो आपकी त्वचा को सांस लेने और शुष्क रखने की अनुमति देते हैं। सिंथेटिक कपड़े पहनने से बचें जो आपकी त्वचा के खिलाफ पसीने और नमी को फंसा सकते हैं। चौथा, भीगने के बाद नहाएं। अगर आप बारिश में भीग जाते हैं तो जल्द से जल्द नहा लें। बारिश के पानी में प्रदूषक और सूक्ष्म जीव हो सकते हैं जो आपकी त्वचा को परेशान कर सकते हैं। अपनी त्वचा को साफ करने और किसी भी अशुद्धता को हटाने के लिए जीवाणु रोधी साबुन का इस्तेमाल करना चाहिए। पांचवा, निजी सामान शेयर करने से बचें। तौलिए, कपड़े और टॉयलेटरीज जैसी निजी वस्तुओं को शेयर करने से संक्रमण फैल सकता है। सुनिश्चित करें कि आप अपनी निजी वस्तुओं का इस्तेमाल खुद करें और उन्हें दूसरों के साथ शेयर करने से बचें। यह बैक्टीरिया और फंगस को फैलने से रोकने में मदद करेगा, जो चकते और त्वचा संक्रमण का कारण बन सकते हैं। छठवां, अच्छी स्वच्छता बनाए रखें। मानसून के मौसम में अच्छी स्वच्छता बनाए रखना बहुत जरूरी है। आपके हाथों को नियमित रूप से धोएं। गंदगी और बैक्टीरिया के जमाव को रोकने के लिए अपने नाखूनों को छोटी और साफ रखें। संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए अपने चेहरे को गंदे हाथों से बचाएं। सातवां, नियमित रूप से एक्सफोलिएट करें। नियमित रूप से एक्सफोलिएट मृत कोशिकाओं को हटाने में मदद करता है और बंद रोम छिद्रों को रोकता है, जिससे चकते और मुहासे हो सकते हैं। अपनी त्वचा को चिकना और स्वच्छ रखने के लिए सप्ताह में एक या दो बार सौम्य एक्सफोलिएटर का इस्तेमाल करें। जरूरत से ज़्यादा एक्सफोलिएट करने से बचें, क्योंकि इससे आपकी त्वचा में जलन हो सकती है और आगे भी समस्याएं हो सकती।
लगती है। मानसून में त्वचा की देखभाल के लिए इन सुझावों का पालन करने और उचित स्वच्छता की आदतों

को बनाए रखकर आप रैश मुक्त मानसून के मौसम का आनंद ले सकते हैं। आपकी त्वचा को सूखा रखना, हवादार कपड़े पहनना, हाइड्रेट रहना और अच्छी स्वच्छता बनाए रखना याद रखें। रेजिन जैसे उत्पादों को मानसून में अपनी त्वचा की देखभाल की दिनचर्या में शामिल करने से रैश और त्वचा जलन से सुरक्षा मिल सकती है। मानसून के दौरान महिलाओं को अपनी सेहत का ख्याल रखना चाहिए। इसके निम्नलिखित उपाय हैं: व्यक्तिगत स्वच्छता। मानसून में नमी और पसीने के कारण संक्रमण का खतरा बढ़ जाता है, इसलिए दिन में 2 बार स्नान करें और त्वचा को सूखा रखें, खासकर बगल, कमर और पैरों जैसे हिस्सों में। एंटीसेप्टिक साबुन का उपयोग करें और शरीर की दुर्गंध से बचने के लिए डिओड्रेंट का उपयोग करें। दूसरा, संतुलित आहार करें। स्वच्छ और पौष्टिक भोजन खाएं जिसमें फल, सब्जियां और अनाज शामिल है। बाहर का खाना खाने से बचें क्योंकि यह दूषित हो सकता है। पर्याप्त मात्रा में पानी पिए ताकि शरीर हाइड्रेट रहे। तीसरा, पर्याप्त नींद लें। हर रात 7 से 8 घंटे की नींद लें जो आपकी प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत बनाती है। अन्य सुझाव, मानसून के दौरान अपने आसपास साफ सफाई रखें, बारिश में भीगने से बचें और यदि आप भीग जाते हैं तो जल्द से जल्द अपने कपड़े बदलें और खुद को सूखा रखें। यदि आपको कोई स्वास्थ्य संबंधी समस्या है तो डॉक्टर से सलाह लें। मानसून में महिलाओं को अपनी स्किन केयर का भी ध्यान रखना चाहिए। आइए हम कैसे अपनी त्वचा को हेल्दी और फ्रेश रखें इसके लिए तरीकों के बारे में बातें करते हैं। मानसून का मौसम में उमस, पसीना और नमी के कारण त्वचा संबंधी समस्याएं बढ़ सकती है। हालांकि सही देखभाल और घरेलू उपायों से आप अपने की संभावना अधिक होती है। त्वचा को रोजाना कम से कम 2 बार साफ करें और एक माइल्ड क्लींजर का उपयोग करें। दूसरा, मॉइस्चराइज करें। मानसून के दौरान त्वचा को मॉइस्चराइज करना बहुत जरूरी है क्योंकि इस मौसम में त्वचा शुष्क और बेजान हो सकती है। एक अच्छा मॉइस्चराइजर चुनें और इसे अपनी त्वचा पर लगाएं। तीसरा, सनस्क्रीन का उपयोग करें। मानसून के दौरान सनस्क्रीन का उपयोग करना बहुत जरूरी है क्योंकि

0: गुलाब जल, गुलाब जल को अपनी त्वचा पर लगाएं और इससे त्वचा को टोन करें। इससे त्वचा निखर जाएगी और त्वचा की समस्याएं कम हो जाएगी। नींबू और शहद, नींबू और शहद को मिलाकर एक फेस पैक बनाएं और इसे अपनी त्वचा पर लगाएं। इससे त्वचा निखर जाएगी और त्वचा की समस्याएं कम हो जाएगी। ऋतुओं का राजा मानसून, गरज बिजली, रिमझिम फुहारों, मिट्टी की खुशबू और लजीज चाय पकौड़ों के साथ दस्तक दे चुका है। बेशक हर कोई इस मौसम को जन्म से लेकर अंत तक प्यार करता है और बारिश की फुहारों का आनंद लेने के लिए उत्सुक रहता है। मानसून हमें गर्मी के मौसम की तपती धूप से राहत देता है और प्रकृति को तरोताजा कर देता है, लेकिन यह अपने साथ स्वास्थ्य संबंधी जोखिम भी लेकर आता है। इस मौसम में अपनी सेहत को सुनिश्चित करने के लिए कुछ सावधानियां बरतना बहुत जरूरी है। इस बारिश के मौसम में स्वच्छ और सुरक्षित रहने के तरीकों के बारे में बताएंगे। अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाएं। पहला, मानसून के मौसम में अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाना बहुत जरूरी है। जरूरी विटामिन्स और खनिज पाने के लिए फलों, सब्जियों और साबुत अनाज से भरपूर आहार लें। अपने रोजाना के खाने में खट्टे फल, लहसुन, अदरक और दही जैसे रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने वाली खाद्य पदार्थ शामिल करें। प्रभावित न होने दें। शारीरिक, यदि आप आउटडोर व्यायाम पसंद करते हैं तो सही समय चुनें जब भारी बारिश न हो रही हो। व्यायाम रक्त परिसंचरण में सुधार करता है, आपके मूड को बेहतर बनाता है और आपके समग्र स्वास्थ्य को बेहतर बनाता है। तीसरा, स्वस्थ रहने का वातावरण बनाए रखें। बरसात के मौसम में मोल्ड, फंगस और बैक्टीरिया के विकास को रोकने के लिए स्वच्छ वातावरण बनाए रखना महत्वपूर्ण है। अपने घर को सूखा और ताजा रखने के लिए उचित वेंटिलेशन सुनिश्चित करें। संक्रमण के जोखिम को कम करने के लिए अक्सर छुई जाने वाली सतहों को नियमित रूप से साफ और कीटाणु रहित करें। चौथा, श्वसन स्वास्थ्य का ध्यान रखें। बरसात के मौसम में हवा में नमी बदलने के कारण श्वसन संबंधी संक्रमण होना आम बात है। अपने श्वसन तंत्र की सुरक्षा के लिए नमी वाले क्षेत्रों में जाने से बचें। याद रहे, आपका स्वास्थ्य आपके हाथों में है और थोड़ी सी अतिरिक्त देखभाल आपको बरसात के मौसम में सुरक्षित रखने में काफी मदद कर सकती है। हरियाली, बारिश की मधुर आवाज और ठंडी हवा का आनंद लें, लेकिन अपनी सेहत को प्राथमिकता देना न भूलें। इसलिए पूरे आत्मविश्वास के साथ मानसून का स्वागत करें और अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखने के लिए इन तरीकों को अपनाएं। ऐसा करके आप इस मौसम को आसानी से पार कर पाएंगे और यह सुनिश्चित कर पाएंगे कि आप और आपके प्रियजन सुख, स्वच्छ और बारिश के साथ आने वाले संभावित स्वास्थ्य जोखिमों में सुरक्षित रहेंगे। धन्यवाद।
1: अले बहिन मन मके दिया विदा पूरे मैं अले ए निर्मला कमर बहिन चो गोट के सुन लास कितरो आमचो देह पाए के नगद संगातो का जे आमचो कार्यक्रम में रहे। अले चो संगे मके दिया विदा। कार्यक्रम सुन तो सपाए बहिन मन के मैं पारो करे से जुहार।

घर द्वार। अभी ग्रामीण महिलाओं का ये कार्यक्रम हम प्रसारित कर रहे थे। ये आकाशवाणी का जगदलपुर केंद्र है। इस समय दिन का 1 बजने को है। अब हिंदी में समाचार हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले कर रहे हैं।

भारत का सबसे बड़ा वैश्विक वस्त्र कार्यक्रम भारत टेक्स 2026 आज नई दिल्ली के भारत मंडपम में शुरू हुआ। वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह ने आज इस कार्यक्रम का उद्घाटन किया। संवाददाताओं से बातचीत में श्री सिंह ने कहा कि भारत टेक्स प्रधानमंत्री का दृष्टिकोण है। उन्होंने कहा कि

0: अब एक अंतर्राष्ट्रीय आयोजन बन चुका है और हर साल इसमें प्रदर्शकों, खरीदारों, विक्रेताओं और आगंतुकों की संख्या में वृद्धि हुई है। उन्होंने
1: दुनिया
0: कहा कि
1: के
0: बांग्लादेश
1: 130 देशों से ऊपर बायर आया है। अभी मोदी जी ने 56 देशों से FTA हो रहा, कुछ से हो गया है, कुछ से बाकी। ये बताता है कि आज 60,000 से ऊपर एग्जीबिटर आए हैं। और सबसे बड़ी खासियत है इस एक्सपो में 90% MSME आए हैं। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि इस बार जो बायर आ रहे हैं ये सारे दुनिया के रिकॉर्ड को तोड़ेंगे।
0: उद्घाटन समारोह में वस्त्र राज्य मंत्री पवित्रा मार्गरेटा और विभिन्न राज्यों के वस्त्र मंत्रियों ने भी भाग लिया। भारत और ब्रिटेन के बीच व्यापक आर्थिक तथा व्यापार समझौता कल से लागू हो जाएगा। इस ऐतिहासिक समझौते के अंतर्गत भारतीय निर्यात को ब्रिटेन के बाजार में 99% शून्य शुल्क की सुविधा मिलेगी। ये समझौता भारत और ब्रिटेन की रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने और अपने लोगों के लिए समृद्धि लाने की साझा प्रतिबद्धता को दर्शाता है। संसदीय कार्य और अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरेन रिजिजू कतर के अमीर शेख हमद बिन खलीफा अल सानी के निधन पर भारत सरकार और जनता की ओर से शोक संवेदना व्यक्त करने के लिए आज दोहा के लिए रवाना हुए। विदेश मंत्रालय ने कहा कि अमीर ने आधुनिक कतर के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और वे भारत के घनिष्ठ मित्र थे। मंत्रालय ने कहा कि भारत कतर संबंधों को मजबूत करने में उनके अमूल्य योगदान के लिए अमीर को हमेशा याद किया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी ने आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पर साल 2020 में उत्तर पूर्वी दिल्ली दंगों के दौरान खुफिया विभाग के अधिकारी अंकित शर्मा की हत्या के दोषियों का समर्थन करने का आरोप लगाया है। नई दिल्ली में संवाददाताओं को संबोधित करते हुए भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता गौरव भाटिया ने दिल्ली की एक अदालत द्वारा आम आदमी पार्टी के पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन और चार अन्य लोगों को अंकित शर्मा की हत्या का दोषी ठहराए जाने के फैसले का स्वागत किया। श्री भाटिया ने पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल पर वोट बैंक की राजनीति के लिए हुसैन का बचाव करने का आरोप लगाया। वियतनाम में नाव दुर्घटना में जान गंवाने वाले आंध्र प्रदेश के 3 पर्यटकों के पार्थिव शरीर आज सुबह हैदराबाद लाए गए। आंध्र प्रदेश के लघु और मध्यम उद्यम मंत्री के श्रीनिवास हैदराबाद हवाई अड्डे पर मौजूद थे। राज्य सरकार ने कहा है कि शोक संतप्त परिवारों को सभी आवश्यक सहायता प्रदान की गई है। वियतनाम के फोकवोक द्वीप के पास हुई स्पीड बोट हादसे में मारे गए 15 भारतीय पर्यटकों के पार्थिव शरीर स्वदेश लाए गए हैं। अमेरिका ने लगातार तीसरी रात ईरान पर हवाई हमले किए हैं। इससे दोनों देशों के बीच तनाव फिर से बढ़ गया है। अमेरिका की सेना के सेंट्रल कमांड ने कहा कि उसने अबू मूसा, बंदर अब्बास, बुशहर, चाहबार, जास्क और कुनारक के आसपास के इलाकों में हमला कर ईरानी तटीय रक्षा प्रणालियों, मिसाइल और ड्रोन ठिकानों तथा उनकी नौसैनिक क्षमताओं को निशाना बनाया है। ईरान ने बहरीन, जॉर्डन और जलमरु मध्य से गुजर रहे संयुक्त अरब अमीरात से जुड़े 2 टैंकरों को निशाना बनाया। इसमें एक नाविक की मौत हो गई और 8 अन्य घायल हो गए। संयुक्त अरब अमीरात के रक्षा मंत्रालय ने कहा कि टैंकरों पर हुए इस हमले में एक भारतीय नागरिक की मौत हुई है और 6 भारतीय तथा 2 यूक्रेनी नागरिक घायल हुए हैं। इससे पहले कल राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने घोषणा की थी कि अमरीका होर्मुस जलडमरु मध्य में ईरानी जहाजों पर फिर से नाकेबंदी लागू करेगा और समुद्री सुरक्षा की लागत को पूरा करने के लिए इस रणनीतिक जलमार्ग से गुजरने वाले माल पर 20% का शुल्क लगाएगा। फीफा विश्व कप में आज रात टेक्सास के डलास स्टेडियम में पहला सेमीफाइनल फ्रांस और स्पेन के बीच खेला जाएगा। ये मैच भारतीय समय के अनुसार रात 12:30 बजे शुरू होगा। इंग्लैंड के लिलेशॉर नेशनल स्पोर्ट्स सेंटर में अंडर 21 महिला हॉकी श्रृंखला में आज भारतीय टीम का सामना बेल्जियम से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: ये आकाशवाणी का जगदलपुर केंद्र है। दोपहर के 1:05 हुए हैं। सुनिए कृषि समय की बेड़ा खड़ा चुगोट।
3: दीदीमन जसन की तुम्हें बे तुरई, खीरा, काकड़ी, लाऊ और करेला फसल चो कमानी करला साहस होती तो ये फसल मन ने की और बीमारी ले बचाते उपाय के मैं सांगे से फसल मन चुनाव के एक हार और सुना। तुरई, खीरा, काकड़ी, लाऊ और करेला ये मन ने काय काय कीड़ी मन जोटुआ।

0: एक एक ध्यान देऊन सपाय सुना। दादा दीदी मन, कीड़ी बल्ले गोटो कीड़ी होय से लाल कीड़ी। ये कीड़ी साग बूटा के खूबे नुकसान अमराय से। ये कीड़ी बाड़लों ने लाल हरदया बरंचो जोत बीती कीड़ी मन रसोत। ये कीड़ी चो चोंडी बले रहे से और ये कीड़ी पाना के तना फूल और फर के बले खाए से। ये कीड़ी मन पाना चो खाले बाटे रसोत। ये कीड़ी के मरला तो काजे 5 किलोग्राम कार्बोरिल 5 किलोग्राम राख के 1 एकड़ हिसाब ने छिचुन देतो रहे। नहले दूसर उपाय बले आसे 500 ग्राम कार्बोरिल 50% घुलनशील पाउडर के 100 लीटर पानी ने घोरून 1 एकड़ ने छिंचतो रहे। एक खारे की और सुना। ये कीड़ी के मरला तो काजे 5 किलोग्राम कार्बोरिल और 5 किलोग्राम राख के 1 एकड़ हिसाब ने छिंचतो रहे। नहले दूसर उपाय एचवाय 500 ग्राम कार्बोरिल 50% घुलनशील पाउडर के 100 लीटर पानी ने घोरून 1 एकड़ चो हिसाब ने छिंचतो रहे। गोटोक कीड़ी हो से फर मच्छी। फर मच्छी कौरी फल ने गार दे से और ये चो गार ले कीड़ी मन निकरून फर चो गुदा के खासोत जिचोले फर न सुन जाए से। और ये फर मच्छी के मरला तो काजे उपाय है 250 मिलीलीटर फेनीट्रोथियन 50 EC नहाले 400 मिलीलीटर मैलाथिल नहाले 500 ग्राम कार्बोरिल घुलनशील पाउडर और 1/4 किलो गुड़ के 250 लीटर पानी ने मिसाउन 20 दिन चो फरक ने 1 एकड़ हिसाब ने छिंचतो रहे। एक हार एक और सुना। 250 मिलीलीटर फेनीट्रोथियन 50 EC नहाले 400 मिलीलीटर मैलाथियन नहाले 500 ग्राम कार्बोरिल घुलनशील पाउडर और 1/4 किलो गुड़ के 250 लीटर पानी ने मिसाउन 20 दिन चो फरक ने 1 एकड़ हिसाब ने छिंचतो रहे। गोटोक और कीड़ी हो से माहू। ये कीड़ी के फुदका बले बलसोत। ये कीड़ी मन पाना मन चो रस के चुहकुआत जेचो कारण फसल कमजोर हो जाए से और उपजन कम हो से। ये कीड़ी के थेबा तो काजे 250 मिलीलीटर मैलाथियन 50 EC के 250 लीटर पानी ने मिसाउन 10 दिन तो फरक ने छिंचतो रहे। एक हर और सुना कि कीड़ी होय से माहू। ये कीड़ी के बल सोत फुतका पाना मन चोरस के चुहकुआत जेचो कारण फसल कमजोर हो जाए से और उपजन कम हो से। ये कीड़ी के थेबा तो काजे 250 मिलीलीटर मैलाथियन 50 EC के 250 लीटर पानी ने मिसाउन 10 दिन चो अरक फरक ने छिंचतो रहे। दादा दीदी मन ये सुनलास कीड़ी मंचो गोट अदाए बीमारी मंचो गोट के सुना। गोटक बीमारी आए भभूतिया रोग। ये रोग ने फपूं दसन होए से पाना ने तना ने 15 माह चूर्ण जमा हो जाए से और पाना बले सुकुन जाए से। ये बीमारी के थेबा तो काजे 500 ग्राम घुलनशील गंधक सल्फेक्स नहले वेट सेल्फ के 200 लीटर पानी ने घोरून 1 एकड़ जो हिसाब ने छिंचतो रहे। एक हरे की और सुना। भभूतिया रोग फफूं दसन होए से पाना ने तनाने 15 माह चूर्ण जमा हो जाए से और पाना बले सुखुन जाए से। और ये थेबा तो काजे 500 ग्राम घुलनशील गंधक सल्फेक्स नहले वेट सेल्फ के 200 लीटर पानी ने घोरून 1 एकड़ चो हिसाब ने छिचुन देतो रहे। गोटक दूसर बीमारी आए डाउनी मिल्ड्यू। ये बीमारी चो नाम आए डाउनी मिल्ड्यू। ये बीमारी होलो ने पाना चो ऊपरे हरदया नहले नारंगी रंग चो कोणदार बानाचीना बनुन जासोत। ये बानाचीना बीती बीमारी चो इलाज आए इंडोसल्फान M45 नहले ब्लाइटाक्स 50 ग्राम दवाई के 1 लीटर पानी ने घोरून फसल भीतरे छिंचतो रहे। एक हार और सुना। बीमारी आए डाउनी मिल्ड्यू। ये बीमारी होलो ने पाना चो ऊपरे हरदया नहले नारंगी रंग चो कोणदार बानाचीना बनुन जासोत। और ये बानाचीना बीती डाउनी मिल्ड्यू बीमारी चो इलाज आए इंडोसल्फान M45 नहले ब्लाइटाक्स 50 ग्राम दवाई के 1 लीटर पानी ने घोरून भाती फसल चो भीतरे छिंचतो।
1: अभी कृषि समय की बेड़ा खाड़ा चौगुट का पुनः प्रसारण किया गया।
2: किसान भाई बहनों के लिए आकाशवाणी जगदलपुर की नई पहल। अब हर शनिवार को शाम 7:30 बजे से 8 बजे तक सुनिए फोन इन किसान वाणी, जहां कृषि विशेषज्ञ देंगे आपकी खेती से जुड़ी हर समस्या का आसान समाधान। बीज से लेकर बाजार तक हर सवाल का जवाब सीधे आपके लिए। और हाँ, इस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग होगी हर मंगलवार दोपहर 3:30 बजे से 4 बजे तक। तो आप भी जुड़िए और अपने सवाल हमें सीधे फोन पर बताइए। हमारा नंबर है 07782222666। फोन इन किसान वाणी, आपकी आवाज, आपकी कहानी, आपके खेतों की जुबानी।
1: हम आकाशवाणी के जगदलपुर केंद्र से बोल रहे हैं। दोपहर के 1:10 हुए हैं। पेश है फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम श्रोता सुमन। कार्यक्रम सुन रहे सभी श्रोताओं को आप

0: की रेडियो दोस्त मनिंदर सिंह देवगुण का प्यार भरा नमस्कार।
1: वेलकम फ्रेंड्स टू द शो दैट नेवर एंड्स। आई हैव टेकन द चांस टू मेक यू डांस। यू विल मूव योर फीट एंड ग्रूव टू द बीट। सो देन व्हिच बीट वुड यू लाइक? दोस्तों कौन सा डांस पसंद करेंगे आप? रॉम्बा?
2: नो।
1: सांबा?
2: नो।
1: रॉम्बा?
2: नो।
1: सांबा?
2: नो।
1: टेकिला?
2: नो।
1: टैंगो?
2: नो।
1: चार्ल्सटन?
2: नो।
1: पोल्का?
2: नो।
1: नो?
2: नो।
1: तो फिर क्या हो? वन

0: अभी आपने किशोर कुमार, एस जानकी और जावेद जाफरी की आवाजों में फिल्म मेरी जंग का गीत सुना। गीतकार थे आनंद बख्शी, संगीत दिया था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। गीत सुनने की चाहत आप सबने की थी। कबीर रेडियो श्रोता संघ डोंडी लोहारा बालोद से देवशंकर तामुरिया, अजय देव, राधिका, तुषार तामुरिया, डॉली, अल कबीर, बेबी पूजा तामुरिया और प्रभा देवी तामुरिया। ग्राम बनबघेरा जिला राजनांदगांव से थे योगेश सारवा, आशा सारवा, नीरज, नीलेश और कुमारी अंजलि सारवा। मोरटक्का माफी जिला खंडवा मध्य प्रदेश की श्रोता हैं जगन्नाथ पटेल, कमला पटेल, अंतिम ज्योति, ललित, मनीषा, शुभम, देवी किशन, भावना कनिका, आदित्य, मानस और मन पटेल। इसी गीत की फरमाइश टाउनशिप सेक्टर 8 भिलाई नगर से श्रीमती प्रमिला श्याम कुमार, अशोक श्याम कुमार, श्रीमती अनुश्री श्याम कुमार, दीपक श्याम कुमार और आसमा श्याम कुमार की आई थी। हरदेव लाल पारा वार्ड सिमगा से रमेश कुमार यादव, श्रीमती माया, रिंकू, सन्नी और कोमल यादव हैं। सूर्यवाड़ी औरंगाबाद से प्रकाश बोरगांवकर, सुषमा प्रकाश, प्राजक्ता प्रांजलि, सोहम बोरगांवकर, सुभाष सदानंद, नीरज और विराज भी हैं। काटा रोड वाशिप महाराज से हैं मास्टर विठल सुरोशे, सुषमा सुरोशे, निधीश परिधि और मायरा सुरोशे। बसमत रोड परभणी से हैं रंजीत कार्यगांवकर, कांचन सृष्टि और समरजीत कार्यगांवकर। आप सिंघाड़ तलाई खंडवा से राधेश्याम यादव, श्रीमती प्रभा यादव, भारती शालिनी और कमेश यादव हैं। शंकरलाल गंगराड़े, वनीता छोटू, रोशनी अजय और कृष्ण देवी गंगराड़े आप ग्राम दीवाल से हैं। आप खंडवा लक्कड़ बाजार से मोहम्मद रफीक पवार, मोहम्मद साकिब पवार और मोइन छोटू पवार। प्रमिलागंज आलोट जिला रतलाम के श्रोता बलवंत कुमार वर्मा, राजू बाई, माया, शोभा, राहुल, ज्योति, अतुल, पायल, प्रियांश और ऋषि शर्मा। चारमीनार चौक गंडे पंडरिया से हैं दरियानमल, अनिता मोटवानी, राजेश, मुकेश मोटवानी। गांधी बाग नागपुर से हैं अशोक सावलानी। इसी गीत की फरमाइश आई थी जामरून से दुर्गादास जोशी, गंगाधर जोशी, गजानन, संजय, आशीष, पृथ्वीराज, कुमारी साध्वी जोशी के साथ हैं गणेश हारबांवकर। ग्राम बुजगहन से राम दुलारी प्रजापति, राम शरण, चंद्रेश कुमार, चंद्रकला, शशिकांता प्रजापति। आप वाशिम के श्रोता हैं प्रेमा खंब्यातकर, प्रीति, राश्री, राजू भावसार और राजेश खंब्यातकर। फरसगांव से हैं सत्येंद्र मंडावी, सरिता मंडावी, उमेश नाग, कृष्ण नेताम और रंजीत भंडारी। ये श्रोता हैं सांगली जिले के जत शहर से अल्ताफ हुजरे, सैफुल्ला, सबाहत, कीरत हुजरे और रेहान शेख। नांदुड़ा महाराष्ट्र से हैं सोपान ताड़े, विजया ताड़े, अमोल और सरिता ताड़े, वसंत राव भोजने, सुनंदा राजू और सोनू भोजने के साथ निवृत्ति आड़ोकार। आप सभी जीगांव नांदुड़ा से हैं। सौंगा मगरलोट छत्तीसगढ़ से फनेश कुमार चंदन, सावित्री देवी, मोहित कुमार, देविका रानी, गजेंद्र कुमार और हेयांश कुमार चंदन। मोहाली पंजाब से बब्बल मल्होत्रा और ओम प्रकाश मल्होत्रा, पीपरपारा पालचुआ मुंगेली के श्रोता उत्तरा कुमार दिवाकर, परमेश्वरी, युगीता, नितिन, वंशिका, भानुप्रिया दिवाकर। बठिंडा पंजाब से इस गीत को सुनना चाहा था जगमाल सिंह दागला, हैप्पी दागला, जेएस नायक, शोभा नायक ने। आप रिंगनी छत्तीसगढ़ से हैं दिनेश कुमार वर्मा, करुणा देवी वर्मा, प्रियंका गौरव बंछोड़ और भागवत वर्मा। बुरसुंदा से हैं चंद्रप्रकाश, चिराग सेन, संतोषी नेहा भगवानी और कचिन राजेंद्र सेन। कस्बा बराड़ा जिला अंबाला से रवि कुमार राहुल, रंजीत कौर, प्रियंका, जयप्रकाश राहुल, नूर नमन, सिमरत, गुरकिरत और गुरशब्द राहुल।
1: जीएसटी काउंसिल ने बीमा पर लगने वाले 18% टैक्स को घटाकर जीरो कर दिया है। ऐसे में जीवन बीमा लेने वालों को अब सिर्फ इंश्योरेंस का प्रीमियम ही भरना होगा और इस पर कोई भी अतिरिक्त टैक्स नहीं देना होगा। ये हेल्थ इंश्योरेंस लेने वालों के लिए बड़ा फायदा है क्योंकि LIC को पहले से ही इनकम टैक्स में छूट मिली हुई है। वहीं अब GST भी हटने से बीमा लेना फायदे का सौदा होगा।
0: श्रोता सुमन कार्यक्रम की अगले गीत की फरमाइशकर्ताओं के नाम चंडीगढ़ से सतीश अनेजा और बिमला अनेजा, चांदनी चौक गंडे पंडरिया से हैं पवन कुमार।

वी लक्की विक्की नानू रविंद्र और रौनक सेन। भाटापारा से दान सिंह रावत दानू, पद्मिनी रावत, शुभम सौरभ और नीरज रावत। पीड़ामल जिला उज्जैन के श्रोता विनोद मुड़त, नेहा जैन, दीपक मयंक मुड़त, चेतन नाहटा, दिलीप सिंह पवार और दीक्षा के साथ कुश मुड़त। रानीगांव नगरी से हैं किलेश कुमार साहू, चित्ररेखा, शुभम, सेजल, इंद्राणी, रोहन भरो साहू। बीड शहर महाराष्ट्र से हैं प्रकाश पगारिया, पराग पगारिया, प्रदीप पगारिया, केशव पटेल और रामनिवास अग्रवाल। नसवाला चौक मलकापुर से हैं संजय पाटिल, उषा पाटिल, प्रथमेश पाटिल, निवृत्ति क्षीरसागर, संजय कुमार चौहान। कंवर कॉलोनी बड़वाह से हैं प्रवीण श्रीमाली, मीना श्रीमाली, आदित्य अदिति शिवानी और मीनूराज श्रीमाली। कंडला बंदरकच्छ से हैं जगदीश जोहरी, पूजा जोहरी और जीनीश। गांधीग्राम से हैं प्रवीण सोनी। कतियापारा जूना बिलासपुर से हैं सुशील, अखिलेश, लोकेश, आशीष, रवि, शनि, रेयांश, कान्हा और आदित्य देवांगन। बमहर चाडीदी से हैं गंगा देवी, पूनम, धनेश्वरी, महेश्वरी, कुमारी मिल्की और आदित्य देवांगन। बमहर चाडीदी से हैं गंगा देवी, पूनम, धनेश्वरी, महेश्वरी, कुमारी मिल्की और

रायपुर से नीलू मेघ, डॉक्टर वंदना और बिट्टू कुमार, ग्राम बेलरगांव सिहावा से हैं मिथिलेश देवांगन, मधु और हिमांशु और अंकित देवांगन, गांव नथाना पंजाब से हरजिंदर छिंदा, जसवीर, रेखा, गगन, सोनी, सीता और गीता हैं, पुजारी पारा कोंडागांव से हैं सेतुराम चक्रधारी, मंगती नाशी और अस्तिका चक्रधारी, खुपटी महाराष्ट्र से हैं बंडू लोहार पोपलघट, माया शिवांश चंद्रकला और देवीदास पोपलघट, भोकर श्रीरामपुर से हैं हरिभाव बिड़वे, श्रावण और अनीता, प्रकाश तिरसुनिया, विकास तिरसुनिया, नैतिक मुकुल, दिव्यांश और धैर्य के साथ आराध्या, आप सभी उत्तर बस्तर कांकेर भानुप्रतापपुर के श्रोता। हटोत बाजार लाहौल से हैं कमलनाथ पटेल, राकेश कुमार पटेल, समीर पटेल और राजकुमारी पटेल, शिव कुमार अंगारे, अंजनी, त्र्यंबिका, लीना, अंशुमाला, आशुतोष अंगारे, आप सभी बंगला मटिया बालोस से हैं, डोंडी भर्रे टोला बालोस से हैं नमित कुमार, गौतम, पीहू, निहू, नीतू, प्रियंका, मुरली और गौतम, धुर्रा बांदा भाटापारा से हैं प्रमोद कुमार साहू, देव कुमार साहू, नवीन कुमार साहू और युवराज साहू। बस्तर से हैं शंकर सलाम, नरसिंह थापा, क्षेत्राम नेताम, शिवराम जैन, रामधर कश्यप, डोमन लाल कोठारी और ललित नागवंशी। आप सबकी फरमाइश पर हम आपको सुनवा रहे हैं फिल्म हनीमून का गीत। आवाजें हैं सुरेश वाटकर और अनुराधा पोडवाल की, नगवानिगार हैं नवाब आरजू और मौसीकार हैं आनंद मिलिंद।

आप फिल्म हनीमून का गीत सुन रहे हैं और इस गीत की फरमाइश आपने भी की थी समडेल नवापारा से मुकेश गुप्ता, श्रीमती श्रद्धा गुप्ता, आदिति गुप्ता, राधे गुप्ता, दीपक गुप्ता, श्रीमती अंकु और राघव गुप्ता ने। आप सुनना चाहते थे अमोड़ा केशकाल से सुनील यादव, शिव कुमार, बेबी तनिष्क और नौबत यादव। छत्तीसगढ़ हसदा नंबर 2 से कमलेश साहू, जितेंद्र और पायल साहू। पिपरिया से कमलकांत गुप्ता, श्रीमती दीपा रिमझिम गुप्ता। बन्ने बुजुर्ग पलेरा टीकमगढ़ मध्य प्रदेश के श्रोता विजेंद्र विश्वकर्मा, तारा देवी, सोनाली सोनम और आशीष विश्वकर्मा ने भी इस गीत की फरमाइश की थी। और देवरी भाटावाला से के आर साहू, आकाश, कमलेश और मुरली छत्री की भी फरमाइश आई थी। साथ ही ये फरमाइश भी आई थी इसी गीत को सुनने के लिए मेचका नगरी से भूपेंद्र नाथ, पूर्णिमा, निखिल और तरुणदीप नाग की। अब अगले गीत की फरमाइशकर्ताओं के नाम लेने से पहले फिल्म का नाम हम आपको बता दें। फिल्म सितमगर का गीत, गीतकार है मजरू सुल्तानपुरी, आर डी बर्मन का संगीत और आवाजें किशोर कुमार और आशा भोसले की है। फरमाइश आप सबने की। छत्रपति संभाजीनगर से राजेश सावले पाटिल, राजदीप राजेश, राशि राजेश और श्रीमती शीतल राजेश। गौतम नगर जिला नांदेड़ से प्रभाकर जोंदले और आरती जोंदले। फरसगांव से फागेश्वर मंडावी और हेमराज भारद्वाज। आप बेरड़ी से हुकुम कर्मकर, सुनीता कर्मकर, हार्दिक, प्राची और तनु कर्मकर हैं। मछली गोदाम कैदी मुड़ा रायगढ़ से हैं पुरुषोत्तम सिंह, श्रीमती उषा सिंह, प्रियंका, पूजा सिंह, लीलू रितु और ऋषभ सिंह। इसी गीत को सुनना चाहा है कुल्हारी कोट पांडुका से नरोत्तम कश्यप, नीतू कश्यप, मोहनीश और अनुराग कश्यप ने भी। आप हैं कस्बा गुन्नौर से फारूक अली खान, फैजी फराज, फरहीन फरहान, फरिया और ताहिरा। महेंद्र सरकटे विजय और मिलिंद सरकटे जोलका के आप श्रोता हैं। भटेना से हेम्बल, करण, अंजलि वर्मा, कुमारी ज्योति वर्मा। चटोदा सारागांव से सुजान वर्मा, सोहद्रा, आयुषी और कृत वर्मा। पोटिया कला दुर्ग से हैं संजय, सुजाता, शशांक और सीमा साहू। रामजी साहू, जीवनलाल रजक, निम्मी, शिवम, सतीश, मुकेश कुमार साहू, ये सभी लच्छनपुर के श्रोता हैं। बलोतरा राजस्थान से हैं कृष्ण कुमार डाबी, भूपत कुमार, राधा देवी, विक्रम अर्चना और साक्षी डाबी। अनूपपुर मध्य प्रदेश से हैं जयमंत्री केवट, अंजलि केवट, रुद्राणी केवट। फरसावर गांव से हैं रघुनाथ नारे, पुष्पाताई, श्रीधर और मीनल नारे। प्रेमलाल साहू, भूपेंद्र, दुष्यंत, राघवेंद्र और तेजल साहू। नेहरूवाड भाटापारा से हैं मोहनपारा, कलतारा से हैं अभिनव, अभिषेक और उमा देवी साहू। सुभाष चक्रधारी, श्रीमती कविता चक्रधारी, मुस्कान और अनुष्का चक्रधारी, ये श्रोता कोंडा गांव से हैं। आप सेक्टर 67 मोहाली चंडीगढ़ से हैं टीडी मल्होत्रा, ऋतिक मल्होत्रा, प्रतीक मल्होत्रा, नव शर्मा। कालका से शुभचंद्र बजाज, बिट्टा बजाज और साहिल। नागर कोहरा जिला राजनांदगांव से हैं छग्गर राम साहू, बबलू, जामुन देवी साहू, प्रेम, पूजा, दुष्यंत, प्रांजल, समीक्षा बेबी, आराध्या साहू। यमुनानगर बुलंदशहर से हैं धीरेन्द्र सोलंकी, सुनीता मौर्य और मून सोलंकी।

हरजिंदर सिंह भाटिया, एंजल भाटिया, नवनीत और पप्पी भाटिया आप सभी जमशेदपुर के श्रोता हैं। बोरागाछी से हैं मुन्ना लाल भगत और गुड्डी भगत। आदर्श नगर मलोट पंजाब के श्रोता हैं राज शर्मा, मीना शर्मा, मैंडी, योगेश, सौरभ, शाहिना और निवान शर्मा। गांधी चौक बाड़मेर से हैं बमलेश पवार, डेनी पवार और मास्टर मनीष। रघुनाथपुरा श्रीगंगानगर राजस्थान के श्रोता हैं लालगिरी गोस्वामी, हेमलता हीना और खुशी गोस्वामी। रोहांसी पलारी से श्यामलाल साहू, युवराज, बिंदु और वर्षा साहू। जलालाबाद पंजाब से हैं सुरेश गगनेजा, पूनम गगनेजा, निमित गगनेजा, विशाल प्रिया और दिशानी। मोतीलाल झेरिया, कल्पना बिट्टू कुमार झेरिया, चिंटू और युग कुमार झेरिया। मोती गार्डन भाटापारा से आपने पत्र भेजा है। लाल माता सुदामा नगर रटलाई जिला झालावाड़ा राजस्थान से हैं हर्षिता रामेश्वर, कान्हा सफलता कपिल, मीनाक्षी सत्यनारायण, मनोहर भाई और प्रभुलाल बाकरी। आप हैं कुंडलवाड़ी नांदेड़ से गंगाधर सावनकर, विजय लक्ष्मी, राकेश, राजेश और रक्षित सावनकर। भटिड्डा रोड डब्वाली से राजेंद्र, अंजू और मोहित नारंग हैं। आर्यनगर कोहका भिलाई से उत्तम सिंह जंघेल, मोरस जंघेल, अनीश कुमार, अजीत कुमार, आयुष और नंदिनी जंघेल। गांधीनगर गुजरात के श्रोता हमारे हैं सुरेश राठौर, मंजुला राठौर, विशाल और निशा राठौर। आप हैं जालना महाराष्ट्र से विजय पाटिल, पद्माबाई, ज्ञानेश्वर और तेजस्वनी। भंवरपुरा बसना छत्तीसगढ़ से राधेश्याम देवांगन और चंपा देवांगन। और रायगढ़ से हैं रोहित जयलक्ष्मी, अंशलक्ष्मी और ऋषभ लक्ष्मी। इसी गीत को सुनना चाहा है शहडोल से सोनू खान, मोनू खान और गोलू खान ने। वासुदेव वोदवड़े, माधुरी वोदवड़े और आकाश कुमार वोदवड़े आप सभी हैं वडगांव बुल्ढाना महाराष्ट्र से। बुल्ढाना महाराष्ट्र से ही अनीता, रमेश राव और लोकेश कुमार गाठोड़े। तो पेश आप सबकी पसंद पर सितमगढ़ का ये गाना। आशा भोसले और किशोर कुमार की आवाजें हैं। मजरू सुल्तानपुरी का लिखा गीत है, संगीत आरटी बर्मन का है।

आप सुन रहे हैं फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम श्रोता सुमन। अगले गीत की फरमाइश आई है पुणे से पंकज वाडोदे, आर्या, प्रियंका, बीटी वाडोदे, चंद्रप्रभा वाडोदे और बाबा साहेब वाडोदे की। मेगापारा लोरमी से कृष्ण कुमार साहू, धनंजय, सत्यम, कुमारी गायत्री और मनोज कुमार साहू हैं। बचेली से हैं बलराम सेन, इंदु सेन, प्रीतिका सेन, पुष्पराज सेन और पंचू सेन। आप हैं गांव जाखोद राजस्थान से पूजा खटक, पिम्बला देवी, शंभुदयाल खटक। कस्बा नोहर राजस्थान से नरेंद्र सुधार, मनोज सुधार और हिमांशु सुधार। हीरावाला फजिलका पंजाब से सुभाष गोदारा, पिम्बला गोदारा, इंदु पार्वती, हिमांशु गोदारा। गुरमीत सिंह मित्ता साउथ एक्सटेंड नई दिल्ली से हैं। महामायापारा ग्राम दरचूरा से हैं फिरवरी कुमारी, प्रीतम कुमार साहू। दरचूरा से ददुआ, भूरी, रेखा और मोतीलाल साहू हैं। आप परसा टोला अम्बागढ़ चौकी से हैं ओम प्रकाश मसिया, सिलोचनी मसिया, खुमेंद्र और तुषारनी मसिया। यहीं से हैं रिजवान खान, आयशा, सबिया, अनस और रेहान। नितेश कुमार देवांगन, दुर्गा प्रसाद, तनुजा और ईशांत देवांगन बलौदा बाजार के। आप सभी श्रोता हैं खैल बाजार पानीपत से हैं नरेश मल्होत्रा, लक्ष्य कोयल और नानकचंद मल्होत्रा। चंडीगढ़ से शेफाली, अरुण कुमार, शेफी और हिमांशु सेठी हैं। बुर्ज हनुमानगढ़ फाजिलका से रमन वर्मा, अमन वर्मा और डॉक्टर मदन लाल वर्मा। भिलाई छत्तीसगढ़ से हैं मुकेश शर्मा, गौरव शर्मा और गरिमा शर्मा। बाजारपारा बेमित्रा से हैं भाई भरतलाल सिन्हा, लव कुमार, लक्की सिन्हा, मुरली मनोहर पटेल, भगवान सिंह राजपूत। ये सभी साथी बेमित्रा से हैं। आप भनपुरी रायपुर के श्रोता हैं प्रियेश गुप्ता, श्रेयांश और शशांक, एमएल यादव, अजय कुमार यादव, अमित, अमीन, गिरीश, करण, युवान और ढाबेश यादव सुभाष वार्ड भाटापारा से हैं। आप हैं सुनील पाठक, कमल पाठक, दीपिका मल्होत्रा, आशीष मल्होत्रा, बेबी काव्य और भाई सुच्चा पाठक। अनारकली बाजार जगराव से हैं। गांधी चौक रोपर्स पंजाब से हरदेव मिक्का, बलविंदर वीर्क, जेतेक और मिक्का वीर्क हैं। रामजी साहू, निम्मी शिवम, सतीश, मुकेश कुमार और जीवनलाल रजक लच्छनपुर से हैं। कन्हैया लाल, रीता देवी, शिल्पा रानी और आकाश कुमार ये हमारे श्रोता हैं दिल्ली शहर मुरीगेट से। सुरित रमेश साहू, तारा विद्या साहू, किशन कुमार, चंद्रहास, हीरेंद्र कुमार, सुनीता, त्रिलोक कुमार, जितेंद्र राजा और रणजीत सिंह साहू ये सभी श्रोता जुनवानी स्मृति नगर जिला दुर्ग से हैं। डोंगरगांव से हैं राष्ट्रपाल गजबी है, राधिका, बेबी अनिष्कर्तन में गजबी है। आकार हाइट्स बहादुरा नागपुर से हैं शैलेश गवाणकर, वैशाली, श्वेता, सुमित गवाणकर और कुमारी ध्वनि गवाणकर। मेहरनगर उमरखेड़ महाराष्ट्र से हैं अभिजीत गवाणकर, सरिता, सिद्धांत, प्रिंस एकांश और प्रणीता गवाणकर। ये श्रोता हैं मदनपुर कवर्धा से श्रवण कुमार साहू, योगेश और राहुल साहू। दत्ता घयाल, सुनीता बाई घयाल, सानिका और गजानन घयाल आप सभी हैं मालेगांव के श्रोता। हिंगोली महाराष्ट्र से हैं शाहजी बोड़के, श्रीमती नंदा बोड़के, हनुमान बोड़के और उत्तम जमधाड़े। आप हैं कोटवा नारायणपुर बाबा पट्टिया बलिया से ओम प्रकाश राय, श्रीमती उषा राय, अमित कुमार राय और हैप्पी राय। दुबिहा नेवादा गाजीपुर से प्रतीक राय, श्रीमती रोशनी और प्रांजल राय। गाजीपुर से अवधेश, श्रीमती प्रीति और नवनीत राय हैं। रोहांसी से हैं टकेश्वर राम साहू, घनश्याम और नूतन गौरव साहू। दतरिंगी से हैं मनोज कुमार, सूरज और सागर कुमार साहू। रोहांसी ये हैं दौलतबाग मुरादाबाद से जाफर हुसैन, नईमा बेगम, कासिम अली, नदीम और जूनियर दबासी। आप सबकी पसंद पर पेश है फिल्म तेजाब का गाना। मिली जुली आवाजें हैं नितिन मुकेश, अलका याग्निक और शब्बीर कुमार की। शब्द रचना है जावेद अख्तर की, तर्ज बनाई है लक्ष्मी का।

फिल्म तेजाब के इसी गीत की फरमाइश शायद थी धनोरा बस्तर से वी पूनम नायडू, साजन के मास्टर शिवांशु, रिशु वी चैतन्य, दुर्गेश कुमार, अक्षय कुमार और अभिषेक नायडू की। लच अघनपुर धर्मपुरा से डी वनीता नायडू, डी कृष्णा राव नायडू, डी ईश्वर राव नायडू, डी रोजा देवी नायडू, डी सोमशेखर राव नायडू की भी थी।

सेन, कौशल और खुशबू सेन, यवतमाल विदर्भ से संतोष खड़से और विनोद खड़से, गोरबा बिलाईगढ़ से हैं देवलाल कर्ष, कामिनी और यश कर्ष, गुमला झारखंड से हैं सिम चावेद और शाह गुप्ता अंजुम। घंटाघर चौक खंडवा से हैं संजय पंचोलिया, प्रियंका गुनगुन, संप्रीत, हेमेंद्र और सन्मति पंचोलिया। बागपत उत्तर प्रदेश से हैं संजय ढींगिया, नमन ढींगिया और अपार ढींगिया। आप हैं गीदम रोड जगदलपुर से टी राजू राव, टी सुनील राव, शिवानी राव, कृष्ण तुलसी राव, भाग्य लक्ष्मी राव, आनंद राव, मनीष शाह, श्रवण कुमार, नानू, श्रुति, काव्य और राशि राधिका। ग्राम बगबुड़वा पथरिया से नरेन और कुसुम नेताम, शीतला नगर दुर्ग से हैं शिव और भगवान चंद्राकर। आप हैं सपना संगीता रोड इंदौर से लाल फतेह चंदानी, लीला फतेह चंदानी, संगीता सुनीता, पिंकेश, साक्षी और मनन के साथ तानिया। गौरी नगर इंदौर से हैं आनंद कुमार कामले, रेखा कामले, राखी, पारस तपस्या और करिश्मा कामले। शिवाजी चौक राजिम से हैं अनिल कुमार, अंजू लत्ता, आदित्य कुमार और कृष श्रीवास्तव। अमरपुर पेंड्रा से हैं दीपक कुमार, रोशन कुमार, बंशीलाल, रेखा देवी, श्वेता देवी, सुरुचि देवी, दीशा और लबी श्रीवास्तव। ग्राम मामड़पाल दरभा बस्तर के श्रोता हैं गणपत बघेल, मनीष और अनंत बघेल। आप हैं महादेव घाट अमलेश्वर से डोमन ठाकुर, सुमन ठाकुर, मिथिलेश ठाकुर, तारिणी ठाकुर, सूरज ठाकुर, सुजला, ज्योति और रियांश ठाकुर। बाटापारा दतरिंगी से हैं द्वारिका प्रसाद वर्मा, किशोर कुमार वर्मा, दीपक कुमार, छाविंद्र कुमार वर्मा। कृष्णनगर टीवी टावर सेमिनरी हिल्स नागपुर से हैं नाना डोंगर दीवे, रमाताई, सीमाताई, रीमाताई, दीक्षाताई और राहुल डोंगर दीवे। चंदन नाग, हरीश नाग, मोतीलाल मौर्य, दुखुराम मौर्य और रामधर बघेल आप सभी लौंडीगुड़ा बस्तर से हैं। दली राजरा से हैं ललित यादव, श्रीनिवास और सुरेश नागवंशी। रामधर कश्यप, सोनू ठाकुर और भीमा सोड़ी बस्तर से हैं। ये श्रोता हैं संबलपुर उत्तर प्रदेश के श्रोता, धर्मनगरी से चैतन्य कोठारे और मनीषा कोठारे। आप हैं सागर मध्य प्रदेश से चंद्रेश गौहर, श्रीमती वंदना गौहर, मयंक और तन्वी गौहर। मध्य प्रदेश धाम मोहल्ला पन्ना से कौशल किशोर, संगीता हर्षित और वैभव मट्टू हैं। लुहेड़ी महोबा उत्तर प्रदेश से हैं जयपाल यादव, इंद्रपाल, राघवेंद्र, अरविंद, प्रिया, रेणु, दिव्यांशी, रोनिका और रागिनी यादव। गोलबाजार बक्सर से हैं श्रद्धानंद आर्य, अभयनंद, परमानंद, पंकज, प्रमोद, रोहित, मोहित और बीना आर्य। श्वेता भगत, किशुताशु, अर्णव आनंद और सत्यम आनंद। फ्रेंड्स कॉलोनी करनाल से हैं गुरविंदर सिंह पांधा, इंद्रजीत कौर, बेबी मनमीत, मनविंदर पांधा, गोलू काकू और जीएस रामगढ़िया। शाहूनगर यवतमाल से हैं राहुल मनवर, सरला मनवर, विशाल, चेतन मनवर, रोशनी मनवर और बेबी प्रियांशी। ग्राम पजोनिया जिला जालौन उत्तर प्रदेश से हैं सत्येंद्र कुमार चंसुलिया, आदर्श, सार्थक और अलौकिक चंसुलिया। आप हैं जसपुर उत्तराखंड से रियासत हुसैन सिद्दीकी, नाजमा बेगम सिद्दीकी, रियाज, रिफाकत, शमरीन, परवीन, मोहम्मद रिहान और माहिरा नूर। विष्णु साहू, पूरब साहू, वीरा साहू, योगेश्वरी साहू, कुमकुम और हर्ष साहू आप सभी बलौदाबाजार भाटापारा से हैं। आप हैं कोली नांदेड़ महाराष्ट्र से नारायण गायकवाड़, दयानंद, ओमकार और साई गायकवाड़ हैं। मधुबनी बिहार से हैं नवनीत, नवीन सिंह, ज्योति, श्वेता, स्वाति, सुशांत, चुलबुरानी और संतोष सिंह। हिच्छा महासमुंद से हैं अदालत दास वैष्णव, मानस, शांति वैष्णव, ऋचा गायत्री वैष्णव और भीषण दास वैष्णव। आप गांव सुहारी साही से हैं देवेंद्र ताती, राकेश ताती, प्रकाश ताती, नीरव कुमारी और निशा कुमारी और देवेन। जमशेदपुर झारखंड के ये श्रोता हैं चंदनगर सतारा से हैं सतीश, आतिश, स्वाति, वर्षा, श्रवण और शिमेन वागमारे। कोल्हापुर के श्रोता हैं विजय चौहान, तेजस्वनी, अंकिता, अनिकेत और माय चौहान। रजन साहू, बेबी ईशानी साहू, छन्नूलाल श्रीवास और अनिता श्रीवास आप सभी तेलीपारा बिलासपुर से हैं। और आप हैं धाड़ी नादुरा महाराष्ट्र से श्री कृष्ण बाठे, संदीप बाठे, मूल्य बाठे और वैशाली बाठे। आप सबने सुनना चाहा है फिल्म बारूद का गीत, स्वर है कुमार शानू और अलका याग्निक का। गीतकार हैं समीर और धुन बनाई है आनंद मिलिंद ने।

महफिल को यही विराम देते हैं। उम्मीद है गीतों की ये खुशबू आपके दिलों में देर तक महकती रहेगी। अब दीजिए मुझे यानी आपके दोस्त मनिंदर सिंह देवगुन को कार्यक्रम श्रोता सुमन से अनुमति। फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार, हैव ए नाइस डे।

नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। भारत ने होर्मुज जलडमरू मध्य में 30 भारतीय नाविकों को ले जा रहे दो जहाजों पर हुए हमले की कड़ी निंदा की। कहा अंतर्राष्ट्रीय

0: हम्द बिन खलीफा अस्सानी के निधन पर भारत सरकार और जनता की ओर से शोक संवेदना व्यक्त करने के लिए आज दोहा के लिए रवाना हुए। विदेश मंत्रालय ने कहा कि अमीर ने आधुनिक कतर के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और वे भारत के घनिष्ठ मित्र थे। मंत्रालय ने कहा कि भारत कतर संबंधों को मजबूत करने में उनके अमूल्य योगदान के लिए अमीर को हमेशा याद किया जाएगा। वियतनाम के फो क्वोक द्वीप के पास हुई नाव दुर्घटना में मारे गए 15 भारतीय पर्यटकों के पार्थिव शरीर स्वदेश लाए गए हैं। वियतनाम में भारतीय दूतावास ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि शव वियतनाम एयरलाइंस के जरिए हो ची मिन्ह सिटी से मुंबई लाए गए। इनमें से आंध्र प्रदेश के 3 पर्यटकों के पार्थिव शरीर आज सुबह हैदराबाद लाए गए। आंध्र प्रदेश के लघु और मध्यम उद्यम मंत्री के श्रीनिवास हैदराबाद हवाई अड्डे पर मौजूद थे। राज्य सरकार ने बताया है कि शोक संतप्त परिवारों को सभी आवश्यक सहायता प्रदान की गई है। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsoneair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। भारत का सबसे बड़ा वैश्विक वस्त्र कार्यक्रम भारत टेक्स 2026 आज नई दिल्ली के भारत मंडपम में शुरू हुआ। केंद्रीय वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह ने आज इस कार्यक्रम का उद्घाटन किया। संवाददाताओं से बातचीत में श्री सिंह ने कहा कि भारत टेक्स प्रधानमंत्री का दृष्टिकोण है। उन्होंने कहा कि ये अब एक अंतर्राष्ट्रीय आयोजन बन चुका है और हर साल इसमें प्रदर्शकों, खरीदारों, विक्रेताओं और आगंतुकों की संख्या में वृद्धि हुई है। उन्होंने कहा कि विभिन्न देशों के साथ किए गए मुक्त व्यापार समझौते भी वस्त्र क्षेत्र को लाभ पहुंचा रहे हैं।
1: दुनिया के 130 देशों से ऊपर बायर आए। अभी मोदी जी ने 56 देशों से FTA हो रहा, कुछ से हो गया है, कुछ से बाकी। ये बताता है कि आज 60,000 से ऊपर एग्जीबिटर आए। और सबसे बड़ी खासियत है इस एक्सपो में 90% MSME आए हैं। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि इस बार जो बायर आ रहे हैं ये सारे दुनिया के रिकॉर्ड को तोड़ेंगे।
0: उद्घाटन समारोह में वस्त्र राज्य मंत्री पवित्रा मार्गरेटा और विभिन्न राज्यों के वस्त्र मंत्रियों ने भी भाग लिया। ये कार्यक्रम कपड़ा

0: समर्थित कर रही है। भारत ने संयुक्त राष्ट्र की सदस्यता के लिए फलस्तीन के दावे का समर्थन किया। फलस्तीन और इसराइल के बीच संघर्ष को समाप्त करने के लिए द्विराष्ट्र समाधान के लिए समर्थन फिर से दोहराया। भारत और ब्रिटेन के बीच व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता कल से लागू होगा। भारत का सबसे बड़ा वैश्विक वस्त्र कार्यक्रम भारत टेस्ट 2026 आज से नई दिल्ली में शुरू। बिहार और उड़ीसा में आज मूसलाधार बारिश की संभावना। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: मीडियम वेव 396.82 मीटर अर्थात 756 किलोहर्ट्ज, एफएम बैंड 100.1 मेगाहर्ट्ज और न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर ये आकाशवाणी का जगदलपुर केंद्र है। इस समय दोपहर के 2:30 हुए हैं। अब प्रस्तुत है प्रायोजित कार्यक्रम एनसीईआरटी।

0: उमंग
1: CIET प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: नमस्कार श्रोताओं, उमंग कार्यक्रम में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। विमलेश का नमस्कार
3: और अजीत का भी नमस्कार। आइए सुनते हैं एक सुंदर विचार जिसे हमें भेजा है पोटिया कला दुर्ग से संजय कुमार साहू और सुजाता साहू जी ने। लिखते हैं,
2: आज के युग में हमारा सबसे बड़ा उत्तरदायित्व है पर्यावरण की रक्षा, क्योंकि यही हमारे आने वाले भविष्य को सुरक्षित कर सकता है।
3: बहुत बहुत धन्यवाद आपके सुंदर संदेश के लिए। और आइए अब सुनते हैं पिछले दिनों संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम। तो पहला संदेश हमें मिला है बिलाईगढ़ छत्तीसगढ़ से रोशनलाल देवांगन, कौशल्या देवांगन, हेमलता और डिंपल देवांगन जी का।
2: बड़ा बम चौक मध्य प्रदेश से ममता मार्कंडेय और संजय मार्कंडेय और साथ साथ बेबी किट्टू।
3: और ऑक्सीजन पार्क राहुल नगर अमरावती से सिद्धार्थ गोंडाने और अर्चना ताई गोंडाने।
2: करसोग जिला मंडी हिमाचल प्रदेश से योगेश ठाकुर जी।
3: और छत्तीसगढ़ पलारी से प्रकाश वर्मा, प्रिंस वर्मा, निखिल वर्मा और यशस्वी वर्मा जी का। बहुत बहुत धन्यवाद श्रोताओं आपके संदेशों के लिए। ये भी जानिए कि अगली कड़ी में आप सबका स्वागत है। आशा है आपको पिछली जानकारियां अवश्य पसंद आई होंगी। हमने बात की थी
2: पेड़ पौधों की रहस्यमयी दुनिया के बारे में और उनके बारे में कई रोचक बातों को जाना था। अजीत जी, अब ये भी जानिए कि यात्रा में आगे चलते हैं, तो क्यों ना आज बात की जाए किताबों की।
3: विमलेश जी, आपने तो सचमुच मेरे मुंह की बात ही छीन ली। यही तो मैं भी कहने वाला था
2: जी।
3: मुझे एक बेहद प्रसिद्ध कविता की पंक्तियाँ याद आ रही है।
2: तो फिर देर कैसी, सुनाइए ना कविता।
3: हाँ, कविता इस प्रकार से है, किताबें करती हैं बातें बीते जमानों की, दुनिया की, इंसानों की।
2: क्या बात है, इसको आगे मैं कहती हूँ। आज की, कल की, एक एक पल की, ये सफदर हाशमी जी की प्रसिद्ध कविता है। तो श्रोताओ, आज करते हैं बात किताबों के रोचक इतिहास की।
3: जी हाँ श्रोताओ, किताबों का इतिहास या पुस्तकों का इतिहास मानव सभ्यता के इतिहास जितना ही रोचक है
2: जी।
3: आज जो हम सुंदर रंग बिरंगी पुस्तकें हाथ में लेते हैं ना, इसके पीछे लगभग 5000 वर्षों की लंबी यात्रा है। तो विमलेश जी, कहाँ से करें शुरुआत?
2: अजीत जी, इसके लिए हमें दुनिया की प्राचीनतम सभ्यताओं में से एक मेसोपोटामिया की सभ्यता में चलना होगा। ये तो बता दें श्रोताओं को कि मेसोपोटामिया की सभ्यता कहाँ थी।
3: जी, मेसोपोटामिया की सभ्यता आज के इराक में विकसित हुई थी। श्रोताओं को ये जानकर आश्चर्य होगा कि तब पुस्तकें मेसोपोटामिया में मिट्टी की थी।
2: मिट्टी की, और वो भी पुस्तकें, ये तो बड़ी विचित्र बात है।
3: जी, बात तो विचित्र है ही। श्रोताओं, आपको बता दें कि दुनिया की पहली पुस्तकें वास्तव में आज की तरह की पुस्तकें नहीं थी, बल्कि वे मिट्टी की तख्तियां थीं।
2: जी,
3: तो विमलेश जी, अब आपकी बारी है ये बताने की कि मेसोपोटामिया की सभ्यता के निवासियों को क्या कहते थे और वे मिट्टी की पट्टियों पर लिखते कैसे थे।
2: जी जी जी, मेसोपोटामिया के निवासियों को सुमेरी या सुमेरियन कहते थे। ये लोग मिट्टी को गीला करके उसे आज की स्लेट की तरह एक आकार देते थे और फिर उस पर

0: वे अक्षर
1: जी,
0: ये तो सचमुच बड़ा रोचक होता जा रहा है। लेकिन विमलेश जी, एक प्रश्न मेरे मन में है, और वो ये है कि क्या ये मिट्टी की पट्टियाँ टिकाऊ होती थी?
1: बिल्कुल होती थी। पहले उन लिखी गई उन पट्टियों को वो धूप में सुखाते थे, फिर उन्हें भट्टी में पकाया जाता था। ऐसी मिट्टी की पट्टियां हजारों वर्षों तक सुरक्षित रह जाती थीं।
0: श्रोताओं, जरा कल्पना कीजिए कि यदि आपको 300 पृष्ठों की एक पुस्तक पढ़नी हो
1: जी,
0: और हर एक पृष्ठ एक भारी मिट्टी की पटिया हो, तो
1: ऐसी कल्पना करना ही हमें अपने आप में आज से 5000 वर्ष के पूर्व के काल में ले चलता है। अजीत जी, ये जानना भी बहुत रोचक रहेगा कि सुमेरी लोग इन मिट्टी की पटियाओं या क्ले टैबलेट्स पर लिखते क्या थे, जरा श्रोताओं को भी तो बता दें।
0: जी विमलेश जी, ये जानना तो सच में बहुत ही रोचक होगा, क्योंकि इससे हमें उनकी सभ्यता और इतिहास की बहुमूल्य जानकारी मिलेगी। मजेदार बात यह है कि उनके द्वारा लिखी गई हजारों मिट्टी की तख्तियाँ आज भी पढ़ी जा सकती हैं।
1: जी,
0: इनमें वे लिखते थे व्यापार का हिसाब किताब, राजकीय अभिलेख, सुमेरी कानून और संहिताएं,
1: युद्धों और विजयों का विवरण और राजाओं की उपलब्धियाँ, कहानियाँ और कविताएं। उन्होंने महाकाव्य भी लिखे, जिनमें एपिक ऑफ गिलगामेश बहुत प्रसिद्ध है।
0: श्रोताओं, आपको बता दें कि किलाक्षरों को क्यूनिफॉर्म भी कहा जाता है, और 19वीं शताब्दी में ही विद्वानों ने किलाक्षरों को पढ़ने में सफलता प्राप्त की। श्रोताओं, आपको बता दें कि दुनिया भर के संग्रहालयों में ये किलाक्षर प्रतियां सुरक्षित हैं, और वे आज भी हमें आज से 5000 वर्ष पूर्व पुरानी सभ्यता के लोगों के सामाजिक, शैक्षिक और दैनिक जीवन की जानकारी देती हैं।
1: जी, तो श्रोताओं, ये थी हमारी आज की जानकारी, और अब सुनिए आज का प्रश्न, जिसका उत्तर छिपा हुआ है आज की ही जानकारी में। प्रश्न है,
0: आज का प्रश्न है, किलाक्षर किसे कहते हैं और ये किस सभ्यता की देन है? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए,
1: किलाक्षर किसे कहते हैं और ये किस सभ्यता की देन है?
0: तो हमारे IVRS नंबर यानी 8800440559 पर, और हमारे ईमेल यानी audio@cit.nic.in पर आप हमारे प्रश्नों के उत्तर और संदेश भेज सकते हैं।
1: इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी आप CIT NCERT को फॉलो कर सकते हैं। आइए अब सुनते हैं आज के शैक्षिक कार्यक्रम।
0: तो आज के कार्यक्रमों की कड़ी में हमारा पहला कार्यक्रम है अरावली की कहानी।
1: कक्षा 7 की समाज का अध्ययन की पाठ्य पुस्तक के एक पाठ पर आधारित इस कार्यक्रम में अरावली पर्वतमाला के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई है, और बताया गया है कि उत्तर भारत के उपजाऊ मैदानों को रेगिस्तान बनने से रोकने में इसकी कितनी महत्वपूर्ण भूमिका है।
2: नमस्कार दोस्तों, रेडियो श्रृंखला पर्वत भी बोलते हैं मैं आप सबका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। मैं हूं सचिन, और मेरे साथ हैं कुछ नन्हे मुन्ने साथी, यानी रिद्धि, रिदित, सोहम, नव्या और मनन, जो आज बहुत ही खुश हैं, क्योंकि उन्हें जानी मानी भूगर्भ शास्त्री डॉक्टर सुचिता ने आज अपने रेडियो शो में बुलाया है। तो आइए चलते हैं सीधे रेडियो प्रसारण केंद्र में, जहां शुरू होने वाला है हमारा रेडियो शो पर्वत भी बोलते हैं। तो बच्चों, डॉक्टर सुचिता के साथ साथ आप सबका भी हमारे शो में बहुत बहुत स्वागत है।
3: धन्यवाद सर।
2: तो करते हैं शुरुआत। डॉक्टर सुचिता, हम आज बात करने जा रहे हैं पर्वतों की, तो सबसे पहला सवाल तो यही उठता है कि पर्वत आखिर हैं क्या, यानी हम उन्हें परिभाषित कैसे करें?
4: वाह, बहुत अच्छा सवाल। देखिए, पर्वत वे स्थल रूप हैं जो आसपास की भूमि से कुछ अधिक ऊंचे होते हैं। उन्हें खड़ी ढलान यानी चढ़ाई और संकरे शिखरों यानी चोटियों से पहचाना जा सकता है। कुछ पर्वत अपनी अधिक ऊंचाई के कारण हिम से ढके होते हैं। समझ में आया बच्चों?
5: यस मैम।
4: आह, क्या बात है
6: मैम।
4: हाँ बेटी,
6: आपने कहा कि पर्वत वे हैं जो आसपास की भूमि से कुछ अधिक ऊंचे होते हैं।
4: बिल्कुल कहा।
6: हमारे गांव में भी कुछ ऐसे पथरीले स्थान हैं जो भूमि से थोड़े ऊंचे होते हैं, क्या उन्हें भी पर्वत कहेंगे?
4: नहीं रिद्धि, उन्हें पर्वत नहीं कहेंगे। तुम्हारे प्रश्न का उत्तर ये है कि कम ऊंचाई वाले ऊंचे ऐसे स्थान जहां कम

0: का भारत की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला है।
1: अच्छा।
0: पता है बच्चों, ये उत्तर पश्चिम भारत में स्थित है और देश की जो भौगोलिक संरचना है ना, इसमें बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है ये।
1: अच्छा।
0: तो बच्चों, यदि अरावली पर्वत श्रृंखला की बनावट को ध्यान से देखें, तो इसमें मध्यम दर्जे की बहुत सी ऊंची ऊंची चोटियां हैं, जो ऊपर से देखने पर वो आरी की तरह दिखती हैं।
1: अच्छा, मैंने भी देखा है।
2: आरा और वली यानी अरावली। अरे वाह सुचिता जी, ये तो बड़ी रोचक बात बताई है आपने।
3: मैम, अरावली के बारे में कुछ और बताइए ना।
0: बिल्कुल जरूर बताएंगे। आप जानते हैं इसके विस्तार के बारे में। इसकी कुल लंबाई है लगभग 800 किलोमीटर और चौड़ाई है 10 से 100 किलोमीटर।
4: लंबाई 800 किलोमीटर, ये कहाँ से कहाँ तक फैली हुई है?
0: सोहम, ये गुजरात से शुरू होकर दिल्ली तक पहुँचती है और बीच में आने वाले राज्य हैं राजस्थान और हरियाणा। बताओ कौन कौन से?
5: गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और फिर दिल्ली।
2: बहुत अच्छे, तो एक बार जोरदार तालियां सबके लिए। ये हुई ना बात।
0: अब तुम्हें इसे हमेशा याद रखना है, ठीक है?
3: जी मैम,
1: जी मैम, हमेशा याद रखेंगे।
2: तो सुचिता जी, अब हमें ये भी तो बताइए कि गुजरात राज्य में अरावली पर्वत श्रृंखला आखिर शुरू कहाँ से होती है? क्योंकि हम देखें तो गुजरात राज्य तो खासा बड़ा है।
0: जी सचिन, बिल्कुल सही कहा आपने। अरावली पर्वत श्रृंखला गुजरात राज्य के बनासकांठा जिले में अंबाजी नामक स्थान से शुरू होती है। एक बात और, माना जाता है कि ये पहले संभवतः हिमालय से भी ऊंची रही होगी, लेकिन अत्यधिक अपरदन के कारण धीरे धीरे इसकी ऊंचाई कम होती चली गई।
4: अपरदन? ये अपरदन क्या होता है?
0: वाह मनन, अपरदन यानी मिट्टी का कटाव। अंग्रेजी में इसे पता है क्या बोलते हैं? सॉइल इरोजन।
1: सॉइल इरोजन,
0: बिल्कुल ठीक। अरावली पर्वत श्रृंखला की प्रमुख चोटियां हैं गुरु शिखर, जो राजस्थान के माउंट आबू में स्थित है। सेर और अचलगढ़ भी इसकी प्रमुख चोटियां हैं, जो राजस्थान में ही हैं।
2: सुचिता जी, अब हम ये भी जानना चाहेंगे कि आखिर अरावली पर्वत श्रृंखला का हमारे यहाँ जलवायु और पर्यावरण पर भला क्या असर पड़ता है?
0: सचिन जी, ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। बच्चों जानना चाहोगे ना?
1: हाँ, जी मैम।
6: यस मैम।
0: अब अरावली पर्वत श्रृंखला राजस्थान के थार मरुभूमि को पूर्व की ओर फैलने से रोकती है, यानी यदि अरावली न हो तो राजस्थान के थार

0: लूनी और माही। और हाँ, अरावली पर्वत श्रृंखला बहुत से वन्य जीवों की शरण स्थली है। मैं बताती हूँ, जैसे तेंदुआ, सियार, लोमड़ी, नीलगाय, सांभर, चीतल और जंगली सुअर इत्यादि।
1: अरे वाह सुचिता जी, देखिए अब ये तो आपने हमें बताया नदियों के बारे में और आसपास मिलने वाले जीव जंतुओं यानी पशुओं के बारे में, लेकिन अगर पक्षियों की बात करें तो?
0: सचिन जी, पक्षियों में यहाँ मोर, गिद्ध, सारस, चील, तोता, मैना इत्यादि बहुत अधिक पाए जाते हैं। एक और बात, यहाँ बहुत सारे खनिज पदार्थ भी मिलते हैं, जिनमें मुख्य हैं तांबा, जस्ता, सीसा और लोहा। लेकिन एक बहुत बड़ी चिंता का विषय है।
1: चिंता का विषय है? भला वो क्या?
0: सचिन जी, अब ये पर्वतमाला पर्यावरण के संकट से गुजर रही है।
1: ओह,
0: अब जैसे अच्छा। जंगलों का कटना, पानी के स्रोतों का सूखना
1: जी।
0: और इनके कारण वन्य जीवों का धीरे धीरे विलुप्त होना, इसीलिए अरावली को बचाए रखना बहुत आवश्यक है। तो बच्चों, बचाओगे ना अरावली को?
2: जी मैम।
1: भाई वाह, तो बच्चों कैसी लगी आपको ये सारी जानकारी?
2: बहुत अच्छी लगी।
1: तो साथियों, अब हमारे रेडियो शो पर्वतों की कहानी का आज का ये अंक होता है यहीं समाप्त। तो एक बार फिर से जोरदार तालियां सबके लिए। डॉक्टर सुचिता, सोहम, रिदित, रिद्धि, नव्या और मनन, आप सभी का हमारी श्रोताओं की ओर से भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमारे स्टूडियो में आए। तो दोस्तों, इसी तरह से चलता रहेगा हमारा ये रेडियो शो पर्वत भी बोलते हैं। तो अब हम मिलेंगे अगले एपिसोड में। नमस्कार, धन्यवाद।
2: धन्यवाद सर।
3: धन्यवाद मैम।
4: साथियों, अभी आपने सुना ये कार्यक्रम। क्या कार्यक्रम सुनते समय आपके मन में ये प्रश्न आया कि इस पर्वत श्रृंखला का नाम अरावली क्यों पड़ा? तो चलिए हम आपको बता देते हैं। अरावली शब्द की व्युत्पत्ति संस्कृत के दो शब्दों से मिलकर हुई है, अरा और अवली। अरा का अर्थ है पर्वत की चोटी और अवली का अर्थ है कतार या श्रृंखला। इन दो शब्दों से मिलकर बना शब्द अरावली। तो साथियों, कुल मिलाकर अरावली शब्द का अर्थ है चोटियों की कतार या पर्वत शिखरों की श्रृंखला। ये नाम अरावली पर्वतमाला की भौगोलिक बनावट को दर्शाता है, जो लंबी चोटियों वाली पुरानी पर्वत श्रृंखला है।
1: अब आपके लिए कुछ सोचने और करने को, जरा पता लगाइए कि भारत में कितनी पर्वत श्रृंखलाएं हैं और उनसे भला कौन कौन सी प्रसिद्ध नदियां निकलती हैं और वो कहां जाकर सागर में मिलती हैं, और फिर उन जगहों को भारत के मानचित्र पर अलग अलग रंगों से चिन्हित कीजिए और उनके बारे में संक्षेप में लिखिए।
4: अरावली की कहानी। अभी आप सुन रहे थे NCERT की कक्षा 7 की पाठ्य पुस्तक समाज का अध्ययन, भारत और उसके आगे के एक पाठ पर आधारित ये कार्यक्रम। कार्यक्रम समन्वय प्रोफेसर राजेंद्र पाल, कलाकार विनीता ठाकुर और मुनीष शर्मा, बाल कलाकार रिद्धि, नव्या, रिदित, सोहम और मनन, ध्वन्यांकन मंजू कुमारी, शोध एवं आलेख अजीत होरो, निर्देशन विमलेश चौधरी तथा ध्वनि संपादन एवं निर्माण जगबंधु जाना। यह कार्यक्रम CIET NCERT भारत द्वारा प्रस्तुत किया गया। अभी आपने सुना कार्यक्रम अरावली की कहानी, और आइए अब सुनते हैं अगला कार्यक्रम। कार्यक्रम का शीर्षक है जंगल के साथी।
5: इस कार्यक्रम में पशु पक्षियों की भूमिका के द्वारा ये संदेश दिया गया है कि एकता में ही बल है, बिना किसी आपसी मेलजोल के हम किसी कार्य को पूरा नहीं कर सकते। कार्यक्रम में बताया गया है कि किस प्रकार जंगल के पशु पक्षियों ने मिलजुल कर असंभव से लगने वाले कार्य को पूरा किया।
4: जंगल के साथी।
6: दादी माँ, आज मुझे परियों की कहानी नहीं सुननी। आप रोज रोज परियों की कहानी सुना देते हो, आज तो मुझे जंगल की कहानी सुननी है। मेरा जंगल देखने को बड़ा मन करता है।

0: दादी माँ, दादी माँ का सुनाओ भी कहानी। चुप क्यों हो, सुनाओ ना।
1: अरे सुनाती हूँ दीपू, अभी सुनाती हूँ, जरा मिश्री तो खा लूं। अब जरा गला तर हो गया है। लो सुनो,

0: सुनो, ध्यान लगाकर सुनो सुनो, कान लगाकर सुनो सुनो, ध्यान लगाकर सुनो सुनो।
1: दादी माँ आप सुनाओ भी कहानी जल्दी से।
2: हाँ सुनाती हूँ दीपू।
0: एक जंगल में रहता था एक हिरन भाई एक हिरन, एक हिरन भाई एक हिरन, एक हिरन भाई एक हिरन। एक जंगल में रहता था एक हिरन भाई एक हिरन।
2: क्यों जी दीपू, कौन रहता था जंगल में?
1: दादी माँ एक हिरन।
0: शाबाश, लंबे लंबे सींगों वाला एक हिरन भाई एक हिरन, लंबे लंबे सींगों वाला एक हिरन भाई एक हिरन।
1: दादी माँ क्या हिरन अकेला था या उसका कोई साथी था? बताओ ना दादी माँ, बताओ ना, बोलो ना दादी माँ।
0: अरे उसका कोई साथी नहीं, साथी नहीं भाई।

0: घूमते घूमते थके जोश के पांव, एक जगह पर बैठ गया वो देख के ठंडी छांव, एक जगह पर बैठ गया वो देख के ठंडी छांव। और दीपू तब देखा उसने एक नन्ना मुन्ना खरगोश। क्या देखा दीपू?
1: एक नन्ना मुन्ना खरगोश।
0: शाबाश, एक खरगोश भाई एक खरगोश, एक खरगोश भाई एक खरगोश। इधर उछलता उधर कूदता, उधर उछलता इधर कूदता, इधर उछलता उधर कूदता, उधर उछलता इधर कूदता। मस्ती में था गुनगुन गाता, बच्चों के मन को था भाता। मस्ती में था गुनगुन गाता, बच्चों के मन को था भाता। हरी हरी वो घास था खाता, हरी हरी वो घास था खाता। क्यों भाई दीपू जी, क्या खाता था वो खरगोश?
1: हरी हरी वो घास था खाता।
0: शाबाश। फिर क्या हुआ? धीरे धीरे धीरे धीरे खरगोश आगे बढ़ा तो क्या देखता है?
1: अरे ये क्या, ये तो हिरन भाई लेटे हैं। क्यों भाई क्यों, हिरन जी क्यों लेटे यूं उदास हो क्यों? क्या कुछ खोया है तुम्हारा, क्या मम्मी ने है तुमको मारा?
2: ना कुछ खोया है हमारा, ना मम्मी ने हमको मारा, है ना मेरा कोई साथी, यही बात ना मुझको भाती, है ना मेरा कोई साथी, यही बात ना मुझको भाती।
1: क्या तुम मेरे साथी बनोगे, मेरे साथ खेलोगे?
3: हाँ हाँ क्यों नहीं, बड़ा मजा आएगा, हम दोनों मिलकर खेलेंगे घूमेंगे और साथ साथ रहेंगे।

0: दादी माँ दादी माँ, जंगल में तो खरगोश और हिरन बड़े मजे करते होंगे ना, क्या मैं उनके साथ दोस्ती कर सकता हूँ?
1: हाँ हाँ, क्यों नहीं।
2: राम जी, अब तुम सो जाओ दीपू, बहुत नींद आ रही है मुझे। आगे की कहानी कल सुनाऊंगी।
0: नहीं दादी माँ, मुझे अभी नींद नहीं आ रहा है, आगे सुनाओ ना क्या हुआ।
2: ओफो, बड़े जिद्दी हो तुम। अच्छा सुनो, जंगल में जब हिरन और खरगोश उछलते कूदते घूम रहे थे ना, तब उन्होंने आकाश में बादल देखे।
0: बादल देखे, फिर दादी माँ?
2: फिर चलते चलते दिखा एक मोर, रंग बिरंगा सुंदर मोर। चलते चलते दिखा एक मोर, रंग बिरंगा सुंदर मोर। रंग बिरंगा सुंदर मोर, रंग बिरंगा सुंदर मोर। क्या दिखा दीपू?
0: रंग बिरंगा सुंदर मोर दादी माँ।
2: शाबाश। छाई थी घटा घन घोर, नाच रहा था सुंदर मोर। नाच रहा था सुंदर मोर, नाचे मोर भई नाचे मोर, नाचे मोर भई नाचे मोर, पंख।

0: लाकर नाचे मोर, नाचे मोर भाई नाचे मोर, ताता थैया नाचे मोर, ताता थैया नाचे मोर, ताता थैया नाचे मोर, रंग बिरंगा सुंदर मोर, ताता थैया नाचे मोर, नाचे मोर भाई नाचे मोर, रंग बिरंगा सुंदर मोर। और भाई दीपू, फिर मोर को देखकर खरगोश बोला,
1: क्यों भाई क्यों मोर जी, हमसे दोस्ती करोगे?
2: हाँ हाँ, क्यों नहीं, मैं तो साथी ही ढूंढ रहा था।
1: दादी माँ, दादी माँ, अब तो तीनों दोस्त बन गए, फिर?
0: फिर? अरे फिर क्या दीपू, अब तो तीनों यानी?
1: यानी खरगोश, हिरन और मोर।
0: शाबाश, तो अब ये तीनों जंगल में साथ साथ घूमते, साथ साथ नाचते और साथ साथ गाते, मिलजुल कर रहते।
1: फिर तो दादी माँ तीनों ही गाते होंगे।
0: क्या गाते होंगे रे, क्या गाते होंगे?

0: बांटेंगे हम तुम, खुशियाँ बांटेंगे हम तुम।
1: अरे तुझे तो बड़ा गाना याद है, अब सो जा, गाते गाते रात हो जाएगी, सो जा।
2: श्रोताओ, अभी आपने सुना कार्यक्रम जंगल के साथी, और अब इसी के साथ हमारा आज का कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। तो अब उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम यानी कुसुम दत्ता,
3: जगबंधु,
2: चेतना
3: और मंजू कुमारी जी के साथ विमलेश को आज्ञा दीजिए। नमस्कार, नमस्कार।
4: उमंग, उमंग, उमंग, उमंग।
5: अभी आप सुन रहे थे प्रायोजित कार्यक्रम NCERT, ये आकाशवाणी का जगदलपुर केंद्र है।
6: स्वस्थ तन स्वस्थ मन जीवन का है अनमोल धन। कैसे रहें बीमारियों से सुरक्षित, कैसे करवाएं किसी स्वास्थ्यगत समस्या का उपचार, क्या है स्वस्थ रहने का आधार, जानिए बेहतर स्वास्थ्य के लिए विशेषज्ञों की सलाह। सुनिए आकाशवाणी रायपुर के प्राइमरी चैनल और छत्तीसगढ़ के अन्य आकाशवाणी केंद्रों से हर शनिवार सुबह 8:30 बजे डॉक्टर की सलाह।
7: अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए लीजिए आकाशवाणी का सहयोग और दीजिए उसे बुलंदियों के पंख।
8: आपका बिजनेस लोकल है या राष्ट्रीय, आकाशवाणी देती है उपभोक्ताओं तक पहुंचने का हर विकल्प।
7: और अब तो आप घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे कर सकते हैं आकाशवाणी के किसी भी केंद्र के लिए विज्ञापनों की बुकिंग।
8: आकाशवाणी के विभिन्न चैनलों पर विज्ञापन देना सुलभ और सस्ता।
7: बुकिंग है तो संपर्क करें 8700001-4242 पर।
5: मीडियम वेव 396.82 मीटर अर्थात 756 किलोहर्ट्ज, FM बैंड 100.1 मेगाहर्ट्ज और न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर ये आकाशवाणी का जगदलपुर केंद्र है। इस समय दोपहर के 3 बजे हैं। अब हमारी ये सभा संपन्न होती है। FM बैंड 100.1 मेगाहर्ट्ज पर अब विविध भारती के कार्यक्रम जारी रहेंगे। शाम 5 बजे हम सांध्यकालीन सभा के कार्यक्रमों के साथ आपकी सेवा में पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हमें दीजिए अनुमति। नमस्कार।

मीडियम वेव 396.82 मीटर अर्थात 756 किलोहर्ट्ज, एफएम बैंड 100.1 मेगाहर्ट्ज और न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर आकाशवाणी का ये जगदलपुर केंद्र है। शाम के 5 बजे हैं।

प्रस्तुत है हमारे केंद्र से प्रसारित किए जाने वाले आज के शेष और कल के कार्यक्रमों की रूपरेखा। पहले सुनिए आज के शेष कार्यक्रमों के बारे में। समसामयिक विषय पर आधारित कार्यक्रम भारत सरकार आपके द्वार गोंडी बोली में आज शाम 5:05 पर। आज शाम 5:10 पर होगा युवा श्रोताओं का अपना कार्यक्रम युववाणी हिंदी भाषा में। दिलीप कुमार पांडे और साथियों के स्वर में हल्बी लोकगीत आज शाम 6:35 पर। आज शाम 7 कार्यक्रम बस्तर के स्वर। प्रायोजित कार्यक्रम किसानवाणी आज शाम 7:21 पर। आज रात 8 कार्यक्रम शिक्षकों के लिए, विषय बच्चों की मानसिक स्वास्थ्य। वार्ताकार होंगी वर्षा महाजन। बच्चों का कार्यक्रम पिलामन का जयगोठ आज रात 8:30 पर। प्रस्तुति होगी तनुश्री मोहंती की। आज रात 9:15 पर कार्यक्रम पुरानी फिल्मों से। पत्रों पर आधारित फरमाइशी लोकगीतों का कार्यक्रम मोचो मंचो गीत आज रात 9:30 पर। आज रात 10 लोकवाद्य धुन के कार्यक्रम पाड़ में आप सुनेंगे लोहंडी गुडिन भरणी पाड़ और हिंगलाजिन माता पाड़। वादक कलाकार होंगे कालिदास और साथी। यह थी हमारे केंद्र से प्रसारित किए जाने वाले आज के शेष कार्यक्रमों की रूपरेखा। अब सुनिए कल के कार्यक्रमों के बारे में। कल रात 8:15 पर भगवान जगन्नाथ जी की रथ यात्रा कार्यक्रम हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना कल सुबह 6:05 पर। सुबह 6:20 पर सुनिएगा चिंतन। आलेख और स्वर होगा लेखराम साहू का। श्री रामचरितमानस का गायन सुबह 6:25 पर। स्वर होगा वाणी जयराम का। संगीत निर्देशक होंगे सतीश भाटिया। कल सुबह 6:35 पर और कल दोपहर 1:05 पर कृषि श्यामी की बेड़ा खड़ा चो गोठ। कार्यक्रम हुलोली में कल सुबह 6:40 पर सुनिएगा डंगई देव पाड़। कलाकार होंगे रामदास और साथी। कल सुबह 7:05 पर होगा हमारा दैनिक कार्यक्रम नमस्कार जगदलपुर। इसके आकर्षण होंगे स्वास्थ्य की बातें में कमर दर्द और इलाज विषय पर डॉक्टर एस के श्रीकर से दिनेश नामदेव की भेंट वार्ता। साथ होगा हेल्पी समाचार बुलेटिन और होगी मधुर गीतों की मधुरिमा। कार्यक्रम लोकमंजरी में कल सुबह 8:30 पर आप सुनेंगे विभिन्न बोलियों में लोकगीत। कल सुबह 9 कार्यक्रम झुमझुमा में सुनिएगा भद्रू कश्यप और साथियों के स्वर में हल्बी लोकगीत। कार्यक्रम एक ही फिल्म से कल सुबह 9:30 पर। कल सुबह 10 कार्यक्रम गुलशन में आप सुनेंगे शीर्षक फिल्मी गीत। कार्यक्रम गुड़दुम में सुबह 10:30 पर सुनिएगा बुदरी और साथियों के स्वर में हल्बी लोकगीत। कल सुबह 11 कार्यक्रम एक ही कलाकार। विभिन्न बोलियों में विभिन्न प्रदेश के लोकगीतों का कार्यक्रम सबरस कल सुबह 11:30 पर। कल दोपहर 12 कार्यक्रम कला और कलाकार। ग्रामीण महिलाओं का कार्यक्रम घर द्वार कल दोपहर 12:30 पर। कल दोपहर 1:10 पर होगा फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम श्रोता सुमन। प्रायोजित कार्यक्रम NCERT कल दोपहर 2:30 पर। कल शाम 5:10 पर होगा युवा श्रोताओं का अपना कार्यक्रम युवाणी हल्बी बोली में। गोंडी समाचार बुलेटिन कल शाम 6:30 पर। कल शाम 7 कार्यक्रम बस्तर के स्वर। ग्रामीण श्रोताओं का कार्यक्रम आमचोगांव कल शाम 7:21 पर। कल रात 8 कार्यक्रम कुड़ई फूल में आप सुनेंगे अमल साय और साथियों के स्वर में भतरी लोकगीत। बच्चों का कार्यक्रम पिलामन का जयगोठ कल रात 8:30 पर। प्रस्तुति होगी अनीता रावले की।

0: 30 मिनट पर सुनिएगा छत्तीसगढ़ राज्य डेयरी उद्यमिता विकास योजना के विषय में। प्रस्तुति होगी जयराम कवासी की। कल रात 10 बजे कार्यक्रम परिचर्चा में आप सुनेंगे ग्रामीण परंपरा और योग विषय पर श्री बलदेव मौर्य, मंधराम नाग और लोकनाथ नाग की चर्चा। संयोजक होंगे बलवीर सिंह कच्छ। ये थी हमारे केंद्र से प्रसारित किए जाने वाले आज के शेष और कल के कार्यक्रमों की रूपरेखा। आकाशवाणी का ये जगदलपुर केंद्र है। शाम के 5:05 हुए हैं। प्रस्तुत है समसामयिक विषय पर आधारित कार्यक्रम भारत सरकार आपके द्वार गोंडी बोली में।
1: केंजनोड़ी समसामयिक माटाकिन संगाड कार्यक्रम तसंगे नन्ना अबलेश कुमार केंजनोड़ी नेणमनद इ कार्यक्रम प्रदेश तग चलेमानद महतारी वंदन योजना तपुर मिंदे छत्तीसगढ़ तग मुत्तेकिन आर्थिक रूप ते दुर्स कियल महतारी वंदन योजना नकै नला साबितायम ता इ योजना ते पात्र पिंडुलत्त मुत्तेकिन बैंक खाता नग लेंजिंग 1,000 रुपया लोहतम तोर अदेन्ते मुत्तेकिन इंजे सुडला सुडला जर्रत तलाय दूसरा तपुर्रो निर्भर मंदनात इल्ला और तम्वा कुटुंबतोरा जर्रत तीन पूरा कियलाय तम्वा भागीदारी निभा कियाम ता नर्गे मुत्ते इद पैसाना उपयोग फेकोरा पढ़ाई तलाय लोत तक खर्चा तलाय कियाम ता इद वाट सोबेड़ नल्ला महिला किन आत्मविश्वास और अदेना आलसुर तक आलसुर तीन फिर सिकियलाय नकाय काम वायम ता मुत्ते इव पैसाना उपयोग शिक्षा स्वरोजगार पशुपालन कियलाय बचत कियलाय लोत्ता जरूरत किन पूरा कियलाय कियाम ता इदेनते अचाम कुटुंबा किन आर्थिक स्थिति दूर सहयो बल्कि मुत्ते किन सामाजिक भागीदारी और सम्मान वेण पेड़ता। नारायणपुर जिला ता गोहाड़ा नारतद महिला हितग्राही गंडाय वड्डे न जीवनाते महतारी वंदन वाटते नकाय वेड़का वत्ता चुडून आय कमाई मत्ता अदेना लोत्तगा नकाय तिपाल मत्ता नकाय खर्चा आसोर मत्ता पेकोड़ा पढ़ाई तद व्यवस्था नकाय अद तिपाल आसोर मत्ता योजना हिसाब ते लेंजिंग दोरकाना दिद आर्थिक मदद ते अदिंजे तम्व लोत्ता जर्रत तीन पूरा कियाम ता संगेन परिवार ता आर्थिक फैसला किन वेन अद पेड़सी कियाम ता अगान सुकमा जिला ता नार बंडा ग्राम पंचायत तद आश्रित गांव उसके वाया तद उंगी माड़वीन बतकारते वेन महतारी वंदन योजना ते नकाय बदलाव वत्ता मजदूरी की तम्व कुटमतीन पोर मंदन उंगीत लय इद सहायता राशि नकाय सहायता बने मायाम ता इंजियाद पेकोर किन नलता डोडा राशन जरूरी सामान ततमता और जुई मंदान पहुँचवीन क्षेत्र ते मत्त पेरकेवन अद उवाट अदेन नकाय नला सहायता कियाम ता इदे नडुम महिला और बाल विकास विभाग ता महतारी वंदन योजना ता पात्र इतग्राई मुत्ते किन ई केवाईसी ता पंजीयन तारीख 3/5 30 अगस्त की सित्तोर मुन्ने ई केवाईसी तलाय पंजीयन तद तारीख 30 जून मत्ता बस्तर जिला तद महिला और बाल विकास अधिकारी मनोज कुमार सिन्हा केत्तोर की इद वाट तग 30 जून एवना ई केवाईसी कियान लय चुडून इतग्राइलोर छूटे मास मत्तोर अदेन के ई केवाईसी तद तारीख 30 अगस्त की सित्तोर और केत्तोर की बस्तर जिला तक कम से कम 90% इतग्राई मुत्तेकिन ई केवाईसी कित्तद मिंदे और नेत्तोर इतग्राई मुत्तेकिन निर्धारित समयते ई केवाईसी कियान लय गुहार कित्तद मिंदे इंजित समयते महतारी वंदन योजना आर्थिक सहायता या न योजनाएं बने मयो बल्कि मुत्तेकिन आत्मनिर्भर आत्मविश्वासी और सम्मानते बतकान लय मजबूत बने मायम ता नर्गे मुत्तेकिन प्रेरक कहानिया इत बात ता गवा मिंदे की नर्गे मुत्तेनद प्रेरक वेसुड़ी इद माटा ता गवा मिंदे की बेचुट सरक

0: कार्य योजना प्रभावी ढंग से आखिर माने न गेव दिता आज समाज तक स्थायी और सकारात्मक बदलाव बने माता महतारी वंदन योजना ते प्रदेश ते मुत्तेकिन पूर्ण उम्मीद आर्थिक सुरक्षा और आत्मविश्वास दौरकम तक अध्ययन के इद योजना छत्तीसगढ़ तक महिला सशक्तिकरण त संगे संगेन समावेशी और संतुलित विकास तद मजबूत आधारशिला बने मायम तक।
1: आप सुन रहे थे समसामयिक विषय पर आधारित कार्यक्रम भारत सरकार आपके द्वार गोंडी बोली में। आकाशवाणी का ये जगदलपुर केंद्र है। शाम के 5:10 हुए हैं। आइए सुनते हैं युवा श्रोताओं का अपना कार्यक्रम युवावाणी हिंदी भाषा में।

0: हेलो, गुड इवनिंग दोस्तों. स्वागत है आप सभी का आपकी पसंदीदा कार्यक्रम युवाणी में. हम उम्मीद करते हैं कि आप सभी स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे.
1: आज की शाम आपके साथ होंगे हम, यानी मैं शिवानी राव
0: और मैं रंभा जोशी. आप सभी युवाणी कार्यक्रम सुनने वाले श्रोताओं को हमारा प्यार भरा अभिवादन.
1: नमस्कार.
0: अच्छा, तुम्हें पता है शिवानी, आजकल जहाँ भी देखें वहाँ पर हर कोई फिटनेस की बातें करता नजर आता है. लेकिन क्या सिर्फ पतला दिखना ही फिटनेस है?
1: बिल्कुल नहीं. फिटनेस का मतलब है शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक रूप से स्वस्थ रहना. अगर शरीर स्वस्थ है और मन प्रसन्न है तभी इंसान सच मायने में फिट कहलाता है. क्यों?
0: बिल्कुल सही कहा तुमने. लेकिन आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में लोग अपने सेहत का ध्यान कम ही रख पाते हैं. क्यों, है ना?
1: हाँ बिल्कुल, यही सबसे बड़ी समस्या है. देर रात तक जागना, सुबह देर से उठना, घंटों मोबाइल चलाना, जंक फूड खाना और व्यायाम से दूरी, ये आदतें धीरे धीरे हमारे स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाती हैं.
0: हाँ, और मोटापा, मधुमेह, उच्च रक्तचाप और हृदय रोग जैसी समस्याएं अक्सर गलत जीवन शैली से जुड़ी होती हैं.
1: तो फिर अच्छी सेहत के लिए हमें क्या करना चाहिए?
0: बहुत आसान सी बातें हैं शिवानी. रोज कम से कम 30 मिनट टहलना या व्यायाम करना, पौष्टिक भोजन करना, पर्याप्त पानी पीना, समय पर जागना और सोना, और तनाव को कम करने रखने की कोशिश करना, साथ ही योग और ध्यान भी बहुत लाभदायक है.
1: हाँ, और आजकल बच्चे या बड़े सभी का ज्यादातर समय मोबाइल पर ही बीतता है. क्यों? इसका भी असर स्वास्थ्य पर पड़ता है.
0: हाँ बिल्कुल शिवानी, ज्यादा स्क्रीन टाइम से आंखों पर असर पड़ता है, नींद खराब होती है, शारीरिक गतिविधि कम होने से शरीर भी कमजोर पड़ने लगता है. इसीलिए तकनीक का उपयोग जरूरी है लेकिन संतुलन के साथ.
1: सही कहा तुमने रंबा. सचमुच अगर हम रोज छोटी छोटी आदतें अपनाएं तो जीवन भर स्वस्थ रह सकते हैं. क्यों?
0: बिल्कुल, और स्वस्थ शरीर ही हमारे सपनों को पूरा करने की सबसे बड़ी ताकत है.
1: तो दोस्तों, आज हम सभी यह संकल्प लें कि अपनी फिटनेस और स्वास्थ्य को प्राथमिकता देंगे. क्यों रंबा?
0: हाँ हाँ बिल्कुल शिवानी. तो दोस्तों, ये थी सामयिक चर्चा फिटनेस और स्वास्थ्य पर, और बढ़ते हैं अगले कार्यक्रम की ओर.
1: दोस्तों, आज आप सुनेंगे कार्यक्रम आपकी फरमाइश में, आप ही के पसंद के कुछ गीत, साथ ही सुनेंगे वार्ता और सामान्य ज्ञान की कुछ बातें.
0: लेकिन उससे पहले आइए सुनते हैं ये संदेश.
2: एक मजबूत घर बिल्कुल उस पिता की तरह होता है जो हर मौसम सह कर भी घर की नींव को कभी हिलने नहीं देता.
3: आपके घर के लिए भरोसे का दूसरा नाम चेटिनाड सीमेंट का मैक्सक्रीट सीमेंट, 64 सालों की बुनियाद के साथ चेटिनाड सीमेंट.

0: परफेक्ट कंक्रीट चॉइस।
1: पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है।
2: अच्छे उपचार के लिए अब नहीं रहेगा कोई लाचार। देश भर में 60 करोड़ से ज्यादा लाभार्थी हैं। अब 5 लाख के मुफ्त इलाज के हकदार। अब तक 25 लाख करोड़ रुपए से अधिक मूल्य के मुफ्त उपचार के लाभ दिए जा चुके हैं और स्वाभिमान और सेहत की सौगात का ये सिलसिला जारी है।
3: आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड करें और पात्र लाभार्थी घर बैठे अपना आयुष्मान कार्ड बनाएं। अधिक जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
4: दोस्तों बढ़ते हैं कार्यक्रम आपकी फरमाइश की ओर, जिसमें आज हम सुनेंगे आप सभी श्रोताओं की पसंद के कुछ गीत, जिसमें पहली फरमाइश आई है उत्तर बस्तर कांकेर भानु प्रतापपुर से प्रकाश देव सुनिया, विकास देव सुनिया, नैतिक, मुकुल, दिव्यांश, धैर्य और आराध्या की। इनके साथ हैं धांडी गुरुद्वारा महाराष्ट्र से श्री कृष्ण बाड़े, संदीप और अमूल्य बाड़े की। डोंगरगांव छत्तीसगढ़ से राजीव राष्ट्रपाल गजभिजे, राधिका बेबी, अनिष्का तन्मय गजभिजे और बुआ बाधा सनीचरी बाजार भिलाई से सुनील जैन, श्रेया जैन, कल्पना जैन, सौरभ जैन, शौर्य जैन और शुभम जैन की। बालोद अजंता से दिनेश यादव, साधना यादव, लोहारा संबलपुर से गौतम उर्वशा, दामिन उर्वशा, ऐश्वर्या उर्वशा और याशिका उर्वशा की। इन सभी ने सुनना चाहा है फिल्म दाग द फायर का ये गीत, जिसके बोल लिखे हैं समीर ने, धुन बनाई है राजेश रोशन ने और अपनी मीठी आवाज़ दी है उदित नारायण और अलका याग्निक ने। तो आइए दोस्तों सुनते हैं ये प्यारा सा गीत।

0: जीएसटी से जुड़ी नई खबर ने आम लोगों और निवेशकों दोनों को राहत दी है। सबसे बड़ी राहत खाने पीने के सामान पर दी गई है। ब्रेड, रोटी और छेना पनीर पर अब कोई जीएसटी नहीं लगेगा। इसके अलावा 33 जरूरी दवाइयों के दाम कम कर दिए गए हैं, जिससे इलाज का खर्च भी घटेगा। लाइफ इंश्योरेंस पर भी पूरी तरह जीएसटी छूट दी गई है, जिससे पॉलिसी खरीदना अब और सस्ता हो जाएगा। छोटी कारों और 350 cc तक की बाइक पर जीएसटी 28% से घटाकर 18% कर दिया गया है। इसका मतलब है कि गाड़ी या बाइक खरीदने का सपना अब पहले से सस्ता हो सकता है।
1: और हमारी अगली फरमाइश करता है जिला खंडवा से जगन्नाथ पटेल, कमला पटेल, अंतिम, ज्योति, ललिता, मनीषा, शुभम, देवी किशन, भावना, कनिका, आदित्य, मानस, मन पटेल। और पुणे से पंकज वडोदे, आर्या, प्रियंका, बेटी वादोड़े, चंद्रप्रभा वादोड़े। और पंकीजा रेड कॉलोनी सनावन से मोहम्मद सादिक, मुश्ताक अहमद, मोहम्मद शाकिर, मोहम्मद अलकमा खत्री, मोहम्मद अल्तमशा खत्री। और घंटाघर चौक खंडवा से संजय पंचोलिया, प्रियंका पंचोलिया, गुनगुन, सप्रीत, हेमंत और सन्मति पंचोलिया। इन सभी ने सुनना चाहा है ये गीत। इसके बोल लिखे हैं मयूर पुरी ने, धुन बनाई है प्रीतम ने और गायक हैं राहत फतेह अली खान, श्रेया घोषाल ने। तो आइए दोस्तों सुनते हैं ये प्यारा सा गीत।

छत भाग जल से ढका हुआ है, परंतु पीने योग्य मीठा जल बहुत कम मात्रा में उपलब्ध है। बढ़ती जनसंख्या, शहरीकरण, औद्योगिकरण, जल का अत्यधिक दोहन तथा जलवायु परिवर्तन के कारण जल संकट दिन प्रतिदिन गंभीर होता जा रहा है। अनेक क्षेत्रों में भूजल स्तर लगातार नीचे जा रहा है और नदियां, तालाब तथा कुएं सूखते जा रहे हैं। ऐसी स्थिति में वर्षा के जल का संरक्षण ही भविष्य के लिए सबसे प्रभावी उपाय है। इसी प्रक्रिया को वर्षा जल संचयन कहा जाता है। वर्षा जल संचयन केवल जल बचाने की तकनीक नहीं, बल्कि प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण का एक सशक्त माध्यम है। यदि प्रत्येक नागरिक वर्षा के जल को सुरक्षित करने का संकल्प लें, तो भविष्य में जल संकट की समस्या काफी हद तक कम हो सकती है। वर्षा के दौरान गिरने वाली पानी को विभिन्न माध्यमों से एकत्रित करके भविष्य में उपयोग के लिए सुरक्षित रखने की प्रक्रिया को वर्षा जल संचयन कहते हैं। इस जल का उपयोग घरेलू कार्यों, कृषि, पशुपालन, बागवानी तथा भूजल पुनर्भरण के लिए किया जा सकता है। वर्षा जल संचयन दो प्रमुख तरीकों से किया जाता है। वर्षा के जल को टैंकों में संग्रहित करना, वर्षा के जल को भूमि के भीतर पहुंचाकर भूजल स्तर बढ़ाना। आज जल संकट विश्वव्यापी समस्या बन चुका है। अनेक शहरों में लोगों को पीने का पानी के लिए लंबी दूरी तय करनी पड़ती है। ऐसे समय में वर्षा जल संचयन का महत्व और भी बढ़ जाता है। यह जल की भविष्य की आवश्यकताओं को पूरा करने में सहायक है, भूजल स्तर को बढ़ाने में मदद करता है, सूखा प्रभावित क्षेत्रों में जल उपलब्ध कराता है, पर्यावरण संरक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, जल की बर्बादी को रोकता है। भारत में अधिकांश वर्षा केवल कुछ महीने में होती है। यदि इस जल का संरक्षण नहीं किया जाए तो यह बहकर नदियों और समुद्र में चला जाता है। दूसरी ओर वर्ष भर पानी की कमी बनी रहती है, इसलिए वर्षा जल संचयन आवश्यक है। तेजी से घटता भूजल स्तर, बढ़ती जनसंख्या और जल की बढ़ती मांग, जलवायु परिवर्तन के कारण अनियमित वर्षा, नदियां और तालाबों का प्रदूषण, भविष्य की पीढ़ियां के लिए जल संरक्षण। छत आधारित वर्षा जल संचयन। इस विधि में भवन की छत पर गिरने वाले वर्षा जल को पाइपों के माध्यम से टैंक में एकत्रित किया जाता है। आवश्यक फिल्टर लगाने के बाद इस जल का उपयोग घरेलू कार्यों में किया जाता है। भूजल पुनर्भरण। वर्षा के जल का रिचार्ज पिट, रिचार्ज कुआं, सोखता गड्ढे तथा बोरवेल के माध्यम से जमीन के अंदर पहुंचाया जाता है। इससे भूजल स्तर बढ़ता है। तालाब एवं जलाशय निर्माण। ग्रामीण क्षेत्रों में छोटे छोटे तालाब, बांध तथा जलाशय बनाकर वर्षा जल का संग्रह किया जाता है। इससे सिंचाई तथा पशुओं के लिए पानी उपलब्ध रहता है। खेत तालाब। किसान अपने खेतों में छोटे तालाब बनाकर वर्षा जल का संचयन करते हैं। इससे सिंचाई की सुविधा मिलती है और फसल उत्पादन में वृद्धि होती है। वर्षा जल संचयन से भूजल स्तर में वृद्धि होती है, जल संकट कम होता है, पेयजल की उपलब्धता बढ़ती है, मिट्टी का कटाव कम होता है, बाढ़ के खतरे में कमी आती है और पर्यावरण संतुलन बना रहता है। भारत की अधिकांश आबादी कृषि पर निर्भर करता है। खेती के लिए पर्याप्त जल आवश्यक है। वर्षा जल संचयन द्वारा किसान सिंचाई की व्यवस्था कर सकते हैं। इससे सूखे की स्थिति में फसल बचाई जा सकती है, उत्पादन बढ़ता है, खेती लागत घटती है, किसानों की आय में वृद्धि होती है। बढ़ते शहरीकरण के कारण शहरों में भूजल स्तर तेजी से गिर रहा है। अधिकांश भवनों में वर्षा का जल सीधा नालियों में बह जाता है। यदि प्रत्येक घर, विद्यालय, अस्पताल, कार्यालय तथा बहुमंजिला इमारत में वर्षा जल संचयन प्रणाली स्थापित की जाए तो लाखों लीटर जल सुरक्षित किया जा सकता है। आज कई राज्यों में नए भवन के निर्माण के समय वर्षा जल संचयन प्रणाली लगाना अनिवार्य किया गया है। वर्षा जल संचयन पर्यावरण संरक्षण का महत्वपूर्ण साधन है। भूजल स्तर बनाए रखता है, पेड़ पौधों को पर्याप्त जल मिलता है, नदियों और झीलों का संरक्षण होता है, भूमि की नमी बनी रहती है आदि। भारत में प्राचीन

0: काल से जल संरक्षण की समृद्ध परंपरा रही है। विभिन्न क्षेत्रों में तालाब, बावड़ियां, कुएं, कुंड और झीलों का निर्माण किया जाता था। राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश तथा दक्षिण भारत के अनेक क्षेत्रों में आज भी पारंपरिक जल संरक्षण प्रणाली देखने को मिलती है। आधुनिक तकनीक के साथ इन पारंपरिक तरीकों का उपयोग करके जल संकट को काफी हद तक कम किया जा सकता है। विद्यार्थी समाज में जागरूकता फैलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। जल की अनावश्यक बर्बादी ना करें, वृक्षारोपण में भाग लें, विद्यालयों में जल संरक्षण अभियान चलाएं, परिवार और पड़ोसियों को वर्षा जल संचयन के लिए प्रेरित करें। यद्यपि वर्षा जल संचयन अत्यंत लाभदायक है, फिर भी इसके सामने कुछ चुनौतियां हैं। लोगों में जागरूकता की कमी, प्रारंभिक लागत का डर, शहरी क्षेत्रों में पर्याप्त स्थान की कमी, तकनीकी जानकारी का अभाव। यदि सरकार, समाज और नागरिक मिलकर प्रयास करें तो इन चुनौतियों का समाधान किया जा सकता है। जल प्रकृति का अनमोल उपहार है, इसका संरक्षण प्रत्येक नागरिक का नैतिक और सामाजिक दायित्व है। वर्षा जल संचयन जल संकट का सरल, सस्ता, प्रभावी और पर्यावरण अनुकूल समाधान है। यदि हम आज वर्षा की प्रत्येक बूंद को सहेजने का संकल्प लें तो आने वाले पीढ़ियों के लिए पर्याप्त जल उपलब्ध कराया जा सकता है। जल संरक्षण की जिम्मेदारी पूरे समाज का साझा कर्तव्य है, इसलिए हमें अपने घरों, विद्यालयों, कार्यालयों और खेतों में वर्षा जल संचयन को अपनाना चाहिए तथा दूसरों को भी इसके लिए प्रेरित करना चाहिए। आज जल बचाएंगे तभी कल सुरक्षित और समृद्ध भविष्य बनाएंगे। धन्यवाद
1: दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे वर्षा जल संचयन विषय पर श्रेया यादव से वार्ता।
2: दोस्तों, पढ़ते हैं कार्यक्रम आपकी फरमाइश की और, जिसमें अगली फरमाइश आई है छत्रपति साहू नगर हिंगोली से, रामचंद्र इंगोली, सिद्धार्थ इंगोली, टिंकू इंगोली, रमाबाई, सुरेंद्र इंगोली, मयूरी, सुरभि, मंजुषा और गौतम इंगोली की। साथ ही है पलारी रोहासी से अलका, जानवी साहू, गौरव साहू और नूतन साहू की। मलोट कैंप पंजाब से सतीश मिगलानी, सीमा, अनमोल, धर्मपाल, वीर सिंह लाठी, लखविंद संधु, महावीर संधु, गुरचरण ग्रोवर और रमेश मिगलानी की। बिहार कॉलोनी लोनी से नशीमुल इल्साम गुनोरी और प्रकाश वीर राजपूत, डोंडी लोहारा बालोद से कमलेश जयपुरिया, टाउन से भिलाई से अनुश्री प्रदीप, पिंकी और प्रमीला प्रदीप, जेल रोड ड्राइगर से लालचंद्र मिश्रा और नरेंद्र कुमार डोम। इन सभी ने सुनना चाहा है फिल्म अनामिका का ये गीत। गीत के बोल हैं मजरूह सुल्तानपुरी के, धुन बनाई है आरडी बर्मन ने और अपनी आवाज दी है लता मंगेशकर ने। तो आइए दोस्तों, सुनते हैं ये गीत।

0: एक मजबूत घर बिल्कुल उस पिता की तरह होता है जो हर मौसम सह कर भी घर की नींव को कभी हिलने नहीं देता।
1: आपके घर के लिए भरोसे का दूसरा नाम चेटिनाड सीमेंट का मैक्स ग्रिट सीमेंट, 64 सालों की बुनियाद के साथ। चेटिनाड सीमेंट, द परफेक्ट कंक्रीट चॉइस।
2: और अगली फरमाइश करता है सपना रोड इंदौर से लाल फतेह चंदानी, लीला फतेह चंदानी, संगीता, सुनीता, पिंकेश, साक्षी, मनन, तानिया। अंधापुर, दुर्गादास जोशी, गंगाधर जोशी, गजानन जोशी, संजय जोशी, आशीष जोशी, पृथ्वीराज जोशी, कुमारी साध्वी जोशी। गोल बाजार बक्सर से श्रद्धानंद आर्या, अभयनंद आर्या, परमानंद आर्या, पंकज, प्रमोद, रोहित व मोहित नंद आर्या। इंदौर से धनेश मटाई, राकेश, हनी, अमिता, जिम्मी, उमेश, दियाना, जियांश मटाई। इन सभी ने सुनना चाहा है फिल्म ओम शांति ओम से। बोल लिखे हैं जावेद अख्तर ने और धुन बनाई है विशाल शेखर और गायक हैं श्रेया घोषाल, अभिजीत ने। तो दोस्तों सुनते हैं ये प्यारा सा गीत।

0: दोस्तों, गीतों को देते हैं कुछ पल विराम और अभी सुनते हैं सामान्य ज्ञान की कुछ बातें। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं सामान्य ज्ञान से जुड़ी कुछ रोचक और उपयोगी बातें जो आपके ज्ञान को बढ़ाने के साथ साथ प्रतियोगी परीक्षाओं में सहायक हो सकती हैं। क्यों शिवानी?
1: हाँ बिल्कुल, भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान है, जबकि जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश है।
0: और भारत का सबसे छोटा राज्य गोवा है। वहीं भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कुंचिकल जलप्रपात कर्नाटक में स्थित है।
1: विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान केवल सहारा ही नहीं, यदि ठंडे रेगिस्तान को भी शामिल किया जाए तो अंटार्कटिका विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान है।
0: भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान है, जिसकी स्थापना वर्ष 1936 में की गई थी। यह उत्तराखंड में स्थित है और बाघ संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है। आज के सामान्य ज्ञान में बस इतना ही।
1: बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और जानते हैं कि अगली फरमाइशकर्ता कौन है। गीदम रोड जगदलपुर से टी राजू राव, टी सुनील राव, शिवानी राव, जया तुलसी राव, भाग्य लक्ष्मी राव, आनंद राव, मनीषा राव, नानू राव, रोहिणी भारती, राशि राव। सिंधी कैंप पक्की खोली अकोला से आशा संतानी, श्यामली, नैन्सी संतानी, सखिया। इंदिरा विहार रायगढ़ से वसीम अकरम, नूर जहां, डब्लू अकरम, वली अकरम, उल्लास अकरम। राजनांदगांव से याकूबा, यूसुफ, इमरान और इरफान। जेल रोड रायगढ़ से रेशमा तिवारी, सोनम तिवारी, अदीबा तिवारी। धाड़ी नंदूरा महाराष्ट्र से श्री कृष्ण बाटे, संदीप बाटे, अमूल्य बाटे, वैशाली बाटे। इन सभी ने सुनना चाहे है फिल्म हीरोपंती से बोल लिखे हैं कौशल मुनीर ने और धुन बनाई है साजिद वाजिद और गायक है मोहित चौहान ने। तो आइए दोस्तों सुनते हैं ये प्यारा सा गीत।

दोस्तों अगला गीत आप सुनेंगे फिल्म आई से, जिसकी फरमाइश करता है मछली गोदाम, कैदी मुड़ा, रायगढ़ से, पुरुषोत्तम सिंह, श्रीमती उषा सिंह, प्रियंका, पूजा सिंह, लीलू, रितु सिंह और ऋषभ सिंह के साथ ही है। खमरैया बिलासपुर से साबित खान, धर्मेंद्र प्रजापति, सावित्री देवी और प्रतीक कुमार। शेरकोट जिला बिजनौर से मोहम्मद वकरार फरीदी, मोहम्मद इकबाल फरीदी, सितारा बेगम, नसरीन परवीन, रोजी परवीन, बिट्टू भैया, साजदा रानी और हिना कौशल की। लकड़ बाजार खंडवा से मोहम्मद रफीक पवार, मोहम्मद साकिब पवार, मोइन छोटू पवार और मोहम्मद हसनैन पवार। बाजार चौक ग्राम दीवाल से शंकरलाल गंगराड़े, वनीता गंगराड़े, छोटू, रोशनी और अजय। इन सभी ने सुनना चाहा है फिल्म आई का ये गीत। बोल लिखे हैं इरशाद कामिल ने, धुन बनाई है एआर रहमान ने और अपनी मीठी आवाज दी है अरिजीत सिंह ने और श्रेया घोषाल ने। तो आइए दोस्तों सुनते हैं ये प्यारा सा गीत।

0: दोस्तों आज की युवाणी में बस इतना ही। चलते हैं इसी वादे के साथ कि कल फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए अपने रेडियो दोस्त शंभा जोशी को
1: और मैं शिवानी राव दीजिए अनुमति।
0: नमस्कार
1: नमस्कार।

आप सुन रहे थे युवा श्रोताओं का अपना कार्यक्रम युववाणी हिंदी भाषा में। आकाशवाणी का ये जगदलपुर केंद्र है। शाम के 6 बजने वाले हैं। कुछ ही समय में हिंदी समाचार हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे।

0: हॉर्मुज के रास्ते, सुरक्षित और आजाद नौ परिवहन और व्यापार के पक्ष, जिसका हम हमेशा से बात करते रहे हैं, इससे यह सुनिश्चित किया जा सकता है कि लोगों का आर्थिक सुरक्षा, उनके ऊर्जा का सुरक्षा पूरे दुनिया में, सिर्फ भारत में नहीं, पूरे दुनिया में उस पर आधारित है। और ये नौ परिवहन अगर आजाद तरीके से चलेगा तो उनकी आर्थिक और ऊर्जा सुरक्षा को सुनिश्चित किया जा सकता है।
1: आज नई दिल्ली में श्री जायसवाल ने कहा कि विदेश मंत्रालय ने ईरान के उप मिशन प्रमुख को तलब कर भारत की गहरी चिंता से अवगत कराया और जो कुछ हुआ है उसकी कड़ी निंदा की। उन्होंने कहा कि एक भारतीय नागरिक की जान चली गई है और कई भारतीय गंभीर रूप से घायल हुए हैं।
0: जो दो जहाज जिसपे कल रात हमला हुई है, आज सवेरे हमला हुआ, तो इन दोनों जहाज में 30 हमारे भारतीय नाविक थे। एक जहाज में जिसमें 12 लोग थे उसमें एक नाविक की मौत हुई है, और दूसरे जहाज जिसमें 18 भारतीय नागरिक या नाविक थे उसमें से 9 लोगों को घोर चोट पहुंचा है उनको, उसमें से 2 काफी गंभीर रूप से घायल भी है। तो ये था ब्यौरा जो कल का या आज सवेरे का जब भी समय में जब हमला हुआ। इसके अलावा कई एक जाने हमारे लोग गई है, और मैं कह सकता हूं कि जितने भी देश हैं दुनिया में उसे सबसे ज्यादा जो कमर्शियल शिपिंग पर जो भी हमला हुआ वो सबसे ज्यादा नाविकों की, हमारे देश की लोगों की जान गई है।
1: पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में विरोध प्रदर्शनों पर श्री जायसवाल ने कहा कि ये प्रदर्शन पाकिस्तान द्वारा दशकों से किए जा रहे शोषण, मौलिक अधिकारों के हनन तथा अवैध और जबरन कब्जे वाले क्षेत्रों में प्रशासनिक दमन का परिणाम है। उन्होंने उम्मीद जताई कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय इन दुर्व्यवहारों और कुकर्मों के लिए पाकिस्तान को पूरी तरह से जवाबदेह ठहराएगा। अमरीका ने लगातार तीसरी रात ईरान पर हवाई हमले किए हैं, इससे दोनों देशों के बीच तनाव फिर से बढ़ गया है। ईरान ने बहरीन, जॉर्डन और जल डमरू मध्य से गुजर रहे संयुक्त अरब अमीरात से जुड़े 2 टैंकरों को निशाना बनाया। कल राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने घोषणा की थी कि अमरीका हॉर्मुज जल डमरू मध्य में ईरानी जहाजों पर फिर से नाकेबंदी लागू करेगा और समुद्री सुरक्षा की लागत को पूरा करने के लिए इस रणनीतिक जलमार्ग से गुजरने वाले माल पर 20% का शुल्क लगाएगा। दूसरी ओर ईरान ने हॉर्मुज जल डमरू मध्य पर अपने अधिकार का दावा किया है और अमरीका के दावे को खारिज किया है। भारत और ब्रिटेन के बीच व्यापक आर्थिक तथा व्यापार समझौता कल से लागू हो जाएगा। इस ऐतिहासिक समझौते के अंतर्गत भारतीय निर्यात को ब्रिटेन के बाजार में 99% वस्तुओं पर 0 शुल्क की सुविधा मिलेगी। ये समझौता भारत और ब्रिटेन की रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने और अपने लोगों के लिए समृद्धि लाने की साझा प्रतिबद्धता को दर्शाता है। श्रम और रोजगार मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI युवाओं के कौशल को प्रभावी ढंग से बढ़ा सकती है। हैदराबाद में ब्रिक्स ट्रेड यूनियन फोरम शिखर सम्मेलन में उन्होंने सरकार की अनेक सामाजिक सुरक्षा पहलों पर बल दिया और स्किल इंडिया मिशन के अंतर्गत चलाए जा रहे विभिन्न कार्यक्रमों का उल्लेख किया। भारत का सबसे बड़ा वैश्विक वस्त्र कार्यक्रम भारत टेक्स 2026 आज नई दिल्ली के भारत मंडपम में शुरू हुआ। केंद्रीय वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह ने इसका उद्घाटन किया। संवाददाताओं से बातचीत में श्री सिंह ने कहा कि भारत टेक्स प्रधानमंत्री का दृष्टिकोण है। उन्होंने कहा कि यह अब एक अंतर्राष्ट्रीय आयोजन बन चुका है। कार्यक्रम में 14 देशों के अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शक भाग ले रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भाजपा के वरिष्ठ नेता रामचंद्र गौड़ा के निधन पर शोक व्यक्त किया है। श्री मोदी ने उन्हें कर्नाटक में भाजपा का एक मजबूत स्तंभ बताया। उन्होंने पार्टी को जमीनी स्तर पर मजबूत करने और पार्टी कार्यकर्ताओं की कई पीढ़ियों का मार्गदर्शन करने में अपना जीवन समर्पित कर दिया। इंग्लैंड ने भारत के साथ 3 मैचों की एकदिवसीय क्रिकेट श्रृंखला के पहले मुकाबले में बर्मिंघम में टॉस जीतकर बल्लेबाजी का फैसला किया है। ताजा समाचार मिलने तक इंग्लैंड ने 32वें ओवर में 6 विकेट पर 155 रन बना लिए हैं। फीफा फुटबॉल विश्व कप के पहले सेमीफाइनल में आज रात 12:30 बजे टेक्सस में फ्रांस और स्पेन आमने सामने होंगे। फ्रांस लगातार तीसरी बार फाइनल में जगह बनाना चाहेगा, वहीं स्पेन 2010 में विश्व कप जीतने के बाद इस बार विश्व कप फाइनल में पहुंचने की पूरी कोशिश करेगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: मीडियम वेव पर आकाशवाणी का ये जगदलपुर केंद्र है।

आकाशवाणी का ये जगदलपुर केंद्र है। शाम के 6:10 होने वाले हैं। कुछ ही समय में आप छत्तीसगढ़ी और संस्कृत में समाचार सुनेंगे।

ये आकाशवाणी रायपुर ही छत्तीसगढ़ी समाचार बुलेटिन के संग संध्या तिवारी के जय जोहार। अब सुनो आज के प्रमुख समाचार। राज्य विधानसभा में मानसून सत्र के दूसरे दिन आज विपक्ष प्रदेश में खातू और बीजा के मुद्दा उठाइन। प्रदेश में खरीफ मौसम पर प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत 12 जुलाई ले पंजीयन के काम शुरू और राज्य शासन है राजिम नगर पंचायत ला नगर पालिका के रूप में उन्नयन कर दे है। अब समाचार विस्तार।

0: छत्तीसगढ़ विधानसभा के मानसून सत्र के दूसरे दिन आज शून्यकाल में खातू और उन्नत बीज की कमी लेके विपक्ष स्थगन प्रस्ताव लाई। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कहने के खातू और बीजा पर किसान मन भटकत है। ये बच्छर वर्षा घलो कमती हो है जेखर ले बोनी पिछड़ गए है। उन्हें नेता प्रतिपक्ष डॉ चरणदास महंता कहने की डीएपी पोटास जैसन खातू मिलत नहीं है। अपन जवाब में कृषि मंत्री रामचंद्र नेताम कहने की प्रदेश में खातू और बीजा की कोनो कमी नहीं है। उमन बताइने की प्रदेश में 14 लाख मीट्रिक टन ले ज्यादा के उर्वरक की उपलब्धता सुनिश्चित कर ली गई है जौन लक्ष्य के 90% है। उन्हें मांग के विरुद्ध 96% बीजा के भंडारण कर ले गए है। श्री नेताम बताइन है कि खातू के 94 नमूना जिहा ले आमानक पाए गए है ओखर मनु पर कार्यवाही करेगे है। मंत्री के जवाब ले असंतुष्ट विपक्षी सदस्य मन सदन में नाराबाजी करत गर्भगृह में पहुंच गए जेखर बाद उमन खुदे निलंबित हो गए। प्रश्नकाल में आज विपक्ष औद्योगिक दुर्घटना मन के मुद्दा ला उठावत शक्ति जिला के वेदांता पावर प्लांट में हुए हादसा में निदेशक अनिल अग्रवाल की गिरफ्तारी नहीं हुए ऊपर सवाल उठेन। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंता जानना चाहिए कि प्रदेश में हुए जम्मू औद्योगिक दुर्घटना में निदेशक ऊपर कार्यवाही करी जाही। जवाब में उद्योग मंत्री लखनलाल देवांगन बताइन है कि खतरनाक रसायन के निर्माण और भंडारण और जुड़े नियम के मुताबिक एक बार ग्राह एजेंसी ले सुरक्षा ऑडिट कराया जाही। अब तक प्रदेश के 32 कारखाना में ऑडिट करे गए है जिहा नहीं हुए है वहां कार्यवाही करे के घलो प्रावधान है। एमा नेता प्रतिपक्ष कहने की वेदांता पावर प्लांट में जौन हादसा हुए रहीस वहां सिर्फ 2 झीन लोगन मनला आरोपी बताए गए है। एमा मंत्री कहने की आने लोगन मनला घलो आरोपी बनाए गए है। मंत्री कहने की पुलिस ये मामला के जांच फैक्ट्री एक्ट के तहत करत है। ओमन बताइने की कंपनी डहर ले आश्रित मल्ला 35-35 लाख रुपया के मुआवजा दे गए है। संगे संग मुख्यमंत्री की घोषणा के मुताबिक 5 लाख रुपया और केंद्र डहर ले 2 लाख रुपया देबर कहे गए है। एकर बाद मंत्री के जवाब ले असंतुष्ट होके विपक्ष सदन ले बहिर्गमन कर दी। विधानसभा में आज विपक्ष सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पेश करी। एमा विधानसभा अध्यक्ष डॉ रमन सिंह कहने की सत्र के आखिरी दिन 17 जुलाई के अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा करे जाही। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय कहने की राज्य सरकार नक्सल मुक्त छत्तीसगढ़ ऊपर धन्यवाद प्रस्ताव लाही। उमन कहने की केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के इच्छा शक्ति ले प्रदेश ले नक्सलवाद की समाप्ति हो है। एक हरबर विधानसभा में केंद्र सरकार के प्रति धन्यवाद प्रस्ताव पारित करे जाही। इमा नेता प्रतिपक्ष डॉ चरणदास महंत राज्य सरकार ऊपर शहीद मन के अनदेखा के आरोप लगावत कहने की धन्यवाद प्रस्ताव में विपक्ष चर्चा में शामिल नहीं हुई। संगे संग ये प्रस्ताव के विरोध में सदन के बहिष्कार करे जाही। विधानसभा परिसर में एक पेड़ माँ के नाम 3.0 अभियान के तहत वृक्षारोपण कार्यक्रम के आयोजन करेगी। ये कार्यक्रम में विधानसभा अध्यक्ष डॉ रमन सिंह और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय रुद्राक्ष के पेड़ लगाई। उन्हें नेता प्रतिपक्ष डॉ चरणदास महंत उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा उप मुख्यमंत्री अरुण साव और संसदीय कार्य मंत्री केदार कश्यप समेत विधानसभा के जम्मू सदस्य मन वृक्षारोपण करके पर्यावरण संरक्षण के संकल्प दोहराई। प्रदेश में खरीफ मौसम पर प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत 12 जुलाई ले पंजीयन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। कृषि विभाग प्रदेश के किसान मन ले 31 जुलाई तक धान मक्का सोयाबीन समेत 11 अधिसूचित फसल के बीमा कराए के अपील करे है। मौसम विभाग डहर ले अल नीनो के प्रभाव ले अनियमित या कम वर्षा की आशंका जता रहे है कि फसल बीमा किसान मन ला प्राकृतिक आपदा ले हो या नुकसान के विरुद्ध आर्थिक सुरक्षा प्रदान करी। छत्तीसगढ़ी समाचार बुलेटिन आपमन आकाशवाणी रायपुर ले सुनत हो।
1: छत्तीसगढ़ के खबर ले है आपके वास्ता और खबर के विश्वसनीयता ले है हमार वास्ता। आकाशवाणी समाचार रायपुर के प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के संगे संग हमार समसामयिक कार्यक्रम आप रेडियो के संग अपन मोबाइल में घलो सुन सकत हो। आकाशवाणी समाचार फेसबुक ट्विटर और यूट्यूब में घलो हावय। हमार फेसबुक पेज हरे छत्तीसगढ़ न्यूज ऑन AIR, ट्विटर हैंडल CGAIR न्यूज और हमार यूट्यूब चैनल हरे छत्तीसगढ़ AIR न्यूज। तो अब रेडियो के संगे संग आपके मोबाइल के माध्यम ले हम आप तक पहुँचत हन। छत्तीसगढ़ के हर खबर पर सुनत रहो आकाशवाणी समाचार।
0: अब आगू बाढ़ माचे समाचार कोती। किशोरी मल्ला सर्वाइकल कैंसर ले सुरक्षित राखे पर छत्तीसगढ़ में 13 ले 18

जुलाई तक विशेष एचपीवी टीकाकरण सप्ताह के आयोजन करे जावत हे। एकर तहत 14 बछर के आयु के जम्मो पात्र नोनी मन ला स्वास्थ्य विभाग डाहर ले निःशुल्क जीवन रक्षक एचपीवी टीका लगाए जावत हे। राज्य टीकाकरण अधिकारी और उप संचालक डॉक्टर वी आर भगत हा बताइन है कि अभियान के तहत स्कूल आंगनबाड़ी केंद्र स्वास्थ्य संस्थान और समुदाय स्तर में जन जागरूकता गतिविधि के आयोजन करे जावत हे। डॉक्टर भगत हा अभिभावक मन ले अपील करे है कि अपन पात्र बेटी मन ला एचपीवी टीका जरूर लगावे। राज्य शासन है राजीव नगर पंचायत ला नगर पालिका के रूप में उन्नयन कर दे है। नगरी प्रशासन विभाग डहर ले ये बारे में अधिसूचना जारी कर दे गए है। एकर तहत राजीव नगर पंचायत के सीमा है राजीव नगर पालिका के सीमा हो ही। उप मुख्यमंत्री और नगरी प्रशासन मंत्री अरुण साह कही ने कि ये फैसला ले राजीव के सुनियोजित विकास ला नवा दिशा मिली और शहरी सुविधा के विस्तार पर ज्यादा संसाधन उपलब्ध होगी। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल सीआरपीएफ के विशेष महानिदेशक दीपक कुमार हा आज बीजापुर जिला के दौरा करीन। ये दौरान उमन सीआरपीएफ के कई ठिन कैंप मन के निरीक्षण करके अधिकारी और जवान मन ले भेंट करीन। उखर संग छत्तीसगढ़ सेक्टर के सीआरपीएफ के आईजी शालीन और डीआईजी बीएस नेगी घलो मौजूद रहीन। ए मौका में श्री कुमार कहने कि बस्तर जैसन इलाका में काम करे बर अच्छा शारीरिक क्षमता सही प्रशिक्षण और सतर्कता बहुत जरूरी है। रायगढ़ जिला के हाथी प्रभावित धरमजयगढ़ वन क्षेत्र में नियम और मानक मन के उल्लंघन करके 33 केवी लाइन विस्तार लेके छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय में जनहित याचिका दायर करी गई है। कोर्ट हा केंद्र राज्य सरकार और बिजली कंपनी ला नोटिस जारी करके जवाब दे के निर्देश दे है। सुनवाई के दौरान राज्य और केंद्र सरकार डहाले उपस्थित अधिवक्ता मन हा नोटिस स्वीकार करी जबकि निजी कंपनी ला नियमानुसार नोटिस जारी करे के निर्देश देगी। कोर्ट हा राज्य सरकार ला जवाब दाखिल करे बर एक हफ्ता के बेरा दे है। भारत सरकार के युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय के मेरा युवा भारत माय भारत के तहत दुर्ग जिला के युवा मन ला कौशल विकास इंटर्नशिप स्वयं सेवा और रोजगार के मौका ले जोड़े बर माय भारत पोर्टल में पंजीयन के काम शुरू कर दे गए है। एकर बाद जिला रोजगार और स्वरोजगार मार्गदर्शन केंद्र में आवेदक मन के सुविधा बर विशेष पंजीयन काउंटर खोले गए है। ये काउंटर में 15 से 29 बच्चर के युवा मन के पोर्टल में निःशुल्क पंजीयन करे जाए। आखिर में प्रमुख समाचार एक घाव फिर। राज्य विधानसभा में मानसून सत्र के दूसरे दिन आज विपक्ष प्रदेश में खातू और बीजा के मुद्दा उठाएं। प्रदेश में खरीफ मौसम पर प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत 12 जुलाई ले पंजीयन के काम शुरू और राज्य शासन हा राजीव नगर पंचायत ला नगर पालिका के रूप में उन्नयन कर दे है। एक संग छत्तीसगढ़ी समाचार बुलेटिन यही सिरावत है। जय जोहार।

दिलीप कुमार पांडे और साथियों के स्वर में आप सुन रहे थे हल्बी लोकगीत। आकाशवाणी का ये जगदलपुर केंद्र है। शाम के 6:45 होने वाले हैं। कुछ ही समय में प्रादेशिक समाचार हम आकाशवाणी के रायपुर केंद्र से रिले करेंगे।

0: क्या बात है उमेश, आजकल खूब छाए हो अखबार में नई नई रिपोर्टिंग के साथ।
1: हाँ यार, पत्रकार जो हूँ।
0: तो अब अगली रिपोर्टिंग किस पर कर रहे हो?
1: सुधीर, मुझे एक ऐसी 11 साल की लड़की के बारे में पता चला है जिससे एक परिवार वाले घर का सारा काम करवाते हैं और ऊपर से उस पर ज्यादती करते हैं। उसी पर एक स्टोरी बना रहा हूँ।
0: उमेश, स्टोरी बनाते समय इस बात का ध्यान रखना कि पीड़ित बालिका का नाम, पता, फोटो या स्कूल का पता या ऐसी कोई भी जानकारी सामने न आए जिससे उसकी पहचान होती हो।
1: क्यों?
0: क्योंकि ऐसा करना बाल न्याय तथा बच्चों की देखभाल और उनके संरक्षण संबंधी संवैधानिक अधिनियम 21A का उल्लंघन है। और इस बात का ध्यान हमारे सभी प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के पत्रकारों को भी रखना है।
2: बाल अधिकार हनन से पीड़ित बच्चों की पहचान उजागर करने वाली जानकारी का प्रकाशन या प्रसारण न करें, क्योंकि इससे पीड़ित बच्चों के सामाजिक और मानसिक स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ सकता है।
3: अरे गोपाल, जा तो सब्जी बाजार।

0: नींबू और मिर्ची लेकर आना।
1: क्या बात है मालिक, आज आप नींबू और मिर्ची क्यों खा रहे हैं?
0: अरे पगले, खाने के लिए नहीं, दुकान में लगाने के लिए मंगवा रहा हूँ। तू तो देख रहा है, दिन भर बैठकर मक्खी मारता हूँ, 10 ग्राहक भी दुकान में नहीं आते।
1: आएंगे कैसे मालिक, हमारी दुकान का ठीक से प्रचार भी तो नहीं हो रहा है। मेरी मानिए तो आप भी अपनी दुकान का प्रचार आकाशवाणी से करवाइए, फिर देखिए हमारी दुकान में भी ग्राहकों की भीड़ लगेगी।
0: गोपाल, आज पहली बार तूने अक्लमंदी की बात की है रे।
1: क्यों नहीं मालिक, रेडियो जो सुनता हूँ।
2: अपनी दुकान, व्यापार या सेवा का प्रचार रेडियो से करवाइए, विज्ञापन बुक करने आकाशवाणी आइए।
3: बधाई हो सेठ जी, आपकी कंपनी की इस नई अगरबत्ती की खुशबू तो लाजवाब है।
1: अरे भाई साहब, आप देखते जाइए, अब तो ये अगरबत्ती घर घर में महकेगी। मैंने पूरे शहर में इसके विज्ञापन बंटवाए हैं।
4: क्यों भाई, सिर्फ शहर में? अरे गांव में नहीं महकेगी क्या?
1: महकना तो गांव में भी चाहिए, मगर गांव के लोगों को हमारी नई अगरबत्ती के बारे में पता कैसे चलेगा?
3: आकाशवाणी से।
2: गांव हो या शहर, अपनी दुकान या उत्पाद की जानकारी पहुंचाइए घर घर, आकाशवाणी आइए और विज्ञापन बुक करवाइए।
5: ये आकाशवाणी रायपुर है, प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं शुभ्रा भट्टाचार्य। और अब पेश है आज के मुख्य समाचार। राज्य विधानसभा में मानसून सत्र के दूसरे दिन आज प्रदेश में खाद बीज की कमी, औद्योगिक दुर्घटनाओं के साथ ही जल जीवन मिशन से संबंधित मुद्दे गूंजे। प्रदेश में खरीफ मौसम के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत 12 जुलाई से पंजीयन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। राज्य शासन ने राजिम नगर पंचायत का नगर पालिका के रूप में उन्नयन किया। और भारतीय सेना ने छत्तीसगढ़ के अभ्यर्थियों के लिए आयोजित कॉमन एंट्रेंस एग्जाम के परिणाम घोषित कर दिए हैं। अब समाचार विस्तार से। छत्तीसगढ़ विधानसभा के मानसून सत्र के दूसरे दिन आज शून्यकाल में खाद और उन्नत बीज की कमी को लेकर विपक्ष ने स्थगन प्रस्ताव लाया। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि खाद और बीज के लिए किसान परेशान हो रहे हैं, इस वर्ष बारिश भी कम हुई है जिससे बोनी पिछड़ गई है। वहीं नेता प्रतिपक्ष डॉ चरणदास महंत ने कहा कि डीएपी पोटाश जैसे खाद नदारद हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि किसान कृषि विभाग के कुप्रबंधन का शिकार हो गए हैं। अपने जवाब में कृषि मंत्री रामविचार नेताम ने कहा कि प्रदेश में खाद और बीज की कोई भी पोटाश जैसे खाद नदारद हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि किसान कृषि विभाग के कुप्रबंधन का शिकार हो गए हैं। अपने जवाब में कृषि मंत्री रामविचार नेताम ने कहा कि प्रदेश में खाद और बीज की कोई

0: तैयार हो गए हैं। अपने जवाब में कृषि मंत्री रामविचार नेताम ने कहा कि प्रदेश में खाद और बीज की कोई प्लांट में जो हादसा हुआ था वहां केवल दो लोगों को ही आरोपी बनाया गया है। जवाब में उद्योग मंत्री लखनलाल देवांगन ने बताया कि अन्य लोगों को भी आरोपी बनाया गया है जो प्रक्रियाधीन है। बाद में मंत्री के जवाब से असंतुष्ट होकर विपक्ष ने सदन से बहिर्गमन कर दिया। सदन में आज प्रश्नकाल के दौरान भाजपा सदस्य अजय चंद्राकर, भैयालाल राजवाड़े, सुनील सोनी और राजेश मूणत ने अमृत मिशन और जल जीवन मिशन के अंतर्गत रायपुर शहर में जल आपूर्ति का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि हर साल रायपुर के लोगों को भीषण जल संकट से जूझना पड़ता है। जहां पानी टंकी है वहां भी टैंकरों से पानी की सप्लाई हुई है। इस पर उपमुख्यमंत्री अरुण साव ने कहा कि योजना पर काम किया जा रहा है। मंत्री ने बताया कि अभी 304 करोड़ रूपये का काम प्रक्रियाधीन है। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में हम सभी घरों तक पानी पहुंचाने में सफल होंगे। विधानसभा में आज विपक्ष ने सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पेश किया। इस पर विधानसभा अध्यक्ष डॉ रमन सिंह ने कहा कि सत्र के अंतिम दिन 17 जुलाई को अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा की जाएगी। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा है कि राज्य सरकार नक्सल मुक्त छत्तीसगढ़ पर धन्यवाद प्रस्ताव लाएगी। उन्होंने कहा कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की इच्छा शक्ति से प्रदेश से नक्सलवाद की समाप्ति हुई है। इसके लिए विधानसभा में केंद्र सरकार के प्रति धन्यवाद प्रस्ताव पारित किया जाएगा। इस पर नेता प्रतिपक्ष डॉ चरणदास महंत ने राज्य सरकार पर शहीदों की अनदेखी का आरोप लगाते हुए कहा कि धन्यवाद प्रस्ताव पर विपक्ष चर्चा में शामिल नहीं होगा। साथ ही इस प्रस्ताव के विरोध में विपक्ष द्वारा सदन का बहिष्कार किया जाएगा। विधानसभा परिसर में एक पेड़ माँ के नाम 3.0 अभियान के तहत पौधरोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में विधानसभा अध्यक्ष डॉ. रमन सिंह और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने रुद्राक्ष का पौधा लगाया। वहीं नेता प्रतिपक्ष डॉ. चरणदास महंत, उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा, उप मुख्यमंत्री अरुण साव, संसदीय कार्य मंत्री केदार कश्यप सहित विधानसभा के सभी सदस्यों ने पौधारोपण कर पर्यावरण संरक्षण का संकल्प दोहराया। मुख्यमंत्री ने कहा कि छत्तीसगढ़ विधानसभा में विधायकों द्वारा अपनी माताओं के नाम पर पौधारोपण किया जाना अत्यंत प्रेरणादायी पहल है।
1: माननीय हमारे देश के सुप्रिय प्रधानमंत्री जी ने पर्यावरण दिवस 5 जून 2024 को एक पेड़ माँ के नाम अभियान शुरू किए और जिसके तहत लगातार 2024 से हम लोग हर साल पेड़ लगाते आ रहे हैं। और आज बड़ा शोभा का विषय है कि विधानसभा परिसर में आज एक पेड़ माँ के नाम से पौधा लगा रहे हैं।
0: प्रदेश में खरीफ मौसम के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत 12 जुलाई से पंजीयन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। कृषि विभाग ने प्रदेश के किसानों से 31 जुलाई तक धान, मक्का, सोयाबीन समेत 11 अधिसूचित फसलों का बीमा कराने की अपील की है। मौसम विभाग द्वारा अल नीनो के प्रभाव से अनियमित या कम वर्षा की आशंका जताए जाने के बीच कृषि विभाग ने कहा है कि फसल बीमा किसानों को प्राकृतिक आपदाओं से होने वाले नुकसान के विरुद्ध आर्थिक सुरक्षा प्रदान करेगा। कृषि विभाग ने किसानों से फसल क्षति होने पर 72 घंटे के भीतर इसकी सूचना संबंधित विभाग, बैंक, बीमा कंपनी या टोल फ्री नंबर 1-4447 पर देने की अपील की है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रायपुर से सुन रहे हैं और अब आगे बढ़ते हैं बाकी के समाचारों की ओर। राज्य शासन ने राजिम नगर पंचायत का नगर पालिका के रूप में उन्नयन कर दिया है। नगरीय प्रशासन विभाग द्वारा इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी गई है। इसके तहत राजिम नगर पंचायत की सीमाएं ही राजिम नगर पालिका की सीमाएं होंगी। उप मुख्यमंत्री और नगरीय प्रशासन मंत्री अरुण साव ने कहा है कि इस निर्णय से राजिम के सुनियोजित विकास को नई दिशा मिलेगी तथा शहरी सुविधाओं के विस्तार के लिए अधिक संसाधन उपलब्ध होंगे। किशोरियों को सर्वाइकल कैंसर से सुरक्षित रखने के लिए छत्तीसगढ़ में 13 से 18 जुलाई तक विशेष एचपीवी टीकाकरण सप्ताह का आयोजन किया जा रहा है। इसके तहत 14 वर्ष की आयु की सभी पात्र बालिकाओं को स्वास्थ्य विभाग द्वारा निशुल्क जीवन रक्षक एचपीवी टीका लगाया जा रहा है। राज्य टीकाकरण अधिकारी और उपसंचालक डॉक्टर वीआर भगत ने बताया कि अभियान के तहत स्कूलों, आंगनबाड़ी केंद्रों, स्वास्थ्य संस्थानों और समुदाय स्तर पर जन जागरूकता गतिविधियों का आयोजन किया जा रहा है। डॉक्टर भगत ने अभिभावकों से अपील की है कि वे अपनी पात्र बेटियों को एचपीवी टीका अवश्य लगवाएं। भारतीय सेना ने आर्मी रिक्रूटिंग ऑफिस के अंतर्गत छत्तीसगढ़ के अभ्यर्थियों के लिए आयोजित कॉमन एंट्रेंस एग्जामिनेशन सीईई के परिणाम घोषित कर दिए हैं। ये परीक्षा 1 से 12 जून तक राज्य के 10 परीक्षा केंद्रों पर आयोजित की गई थी। अभ्यर्थी अपना परिणाम भारतीय सेना के आधिकारिक भर्ती वेबसाइट www.joinindianarmy.nic.in और आर्मी रिक्रूटिंग ऑफिस रायपुर के सूचना

पोर्टल पर देख सकते हैं। कॉमन एंट्रेंस एग्जामिनेशन में सफल अभ्यर्थियों को अब शारीरिक दक्षता परीक्षा, दस्तावेज सत्यापन और चिकित्सीय परीक्षण सहित भर्ती प्रक्रिया के अगले चरण में शामिल होना होगा। हवलदार और जूनियर कमीशन अधिकारी पदों के लिए भर्ती रैली 25 जुलाई से 6 अगस्त तक मध्यप्रदेश के सीहोर में आयोजित की जाएगी। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंड एंटरटेनमेंट समिट वेव्स 2027 क्रिएट इन इंडिया चैलेंज सीजन 2 के तहत उद्योग संचालित चुनौतियों के लिए प्रस्ताव आमंत्रित किए हैं। क्रिएट इन इंडिया चैलेंज वेव्स के तहत एक प्रमुख पहल है। इसका उद्देश्य मीडिया और मनोरंजन क्षेत्र में सृजकों की पहचान करना, उन्हें आगे बढ़ाना, उनके कौशल को बेहतर बनाना और उन्हें सबके सामने लाना है। छत्तीसगढ़ की मशहूर पंडवानी गायिका और पद्म विभूषण स्वर्गीय डॉक्टर तीजनबाई के गृहग्राम गनियारी में आयोजित श्रद्धांजलि सभा में आज मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय शामिल हुए और उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। इस मौके पर स्कूल शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव, संस्कृति मंत्री राजेश अग्रवाल और दुर्ग सांसद विजय बघेल सहित अन्य जनप्रतिनिधि मौजूद थे। भारत सरकार के युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय की मेरा युवा भारत माई भारत के अंतर्गत दुर्ग जिले के युवाओं को कौशल विकास, इंटर्नशिप, स्वयंसेवा और रोजगार के अवसरों से जोड़ने के लिए माई भारत पोर्टल पर पंजीयन की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। इसके लिए जिला रोजगार और स्वरोजगार मार्गदर्शन केंद्र में आवेदकों की सुविधा के लिए विशेष पंजीयन काउंटर स्थापित किया गया है। इस काउंटर पर कार्यालय में आने वाले 15 से 29 वर्ष आयु वर्ग के युवाओं का पोर्टल पर निःशुल्क पंजीयन किया जाएगा। और अब कुछ समाचार संक्षेप में। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने नीट यूजी की पुनर्परीक्षा की ओएमआर शीट और रिकॉर्ड किए गए उत्तर जारी कर दिए हैं। उम्मीदवार एनटीए की वेबसाइट neet.nta.nic.in पर अपने आवेदन नंबर लॉगिन करके अपनी ओएमआर शीट और उत्तर देख सकते हैं। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल सीआरपीएफ के विशेष महानिदेशक दीपक कुमार ने आज बीजापुर जिले का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने सीआरपीएफ के कई कैंपों का निरीक्षण कर अधिकारियों और जवानों से मुलाकात की और बीजापुर जिले के सरकंडा स्थित बाल संप्रेषण गृह में 4 बाल अपचारी ड्यूटी पर तैनात सुरक्षा गार्ड की हत्या कर फरार हो गए हैं। ये चारों बाल अपचारी हत्या, दुष्कर्म, चोरी जैसे मामलों में बाल संप्रेषण गृह में निरुद्ध थे। वन्यजीव संरक्षण और वन सुरक्षा को मजबूत

और बीजापुर जिले के सरकंडा स्थित बाल संप्रेषण गृह में चार बाल अपचारी ड्यूटी पर तैनात सुरक्षा गार्ड की हत्या कर फरार हो गए हैं। ये चारों बाल अपचारी हत्या, दुष्कर्म, चोरी जैसे मामलों में बाल संप्रेषण गृह में निरुद्ध थे। वन्यजीव संरक्षण और वन सुरक्षा को मजबूत

0: सुरक्षा गार्ड की हत्या कर फरार हो गए हैं। ये चारों बाल अपचारी हत्या, दुष्कर्म, चोरी जैसे मामलों में बाल संप्रेषण गृह में निरुद्ध थे। वन्यजीव संरक्षण और वन सुरक्षा को मजबूत बनाने हिंदी में कल सुबह 9:55 पर सुना जा सकता है। नमस्कार।
1: अभी आप प्रादेशिक समाचार सुन रहे थे। आकाशवाणी का ये रायपुर केंद्र है। अगला कार्यक्रम थोड़ी ही देर में। मीडियम वेव 300
2: मीडियम वेव पर आकाशवाणी का ये जगदलपुर केंद्र है। शाम के 7 बजे हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम बस्तर के स्वर।

0: राम राम हो कुलदर मामा, राम राम
1: राम राम हो गडरू बाचा, राम राम
0: अमरलास ने
1: हो अमरले हो।
0: आम्ही दोन तो भेटघाट होलू आले दादा दीदी मन संग भेटघाट करू ने एचो संगे संगे बस्तर के स्वर कार्यक्रम सुन तो सपाय गांवकारी दादा दीदी सियान सजन संगजोर या संगवारी मन के मैं गडरू
1: मैं कुलदर
0: आम्ही दोनों करू से
1: राम राम अलदका हो नानी पिला मन बोल पक्की सुनते रुआत
0: ना हो रेडियो कटा कटा बोसन गाया सुनते रुआत ध्यान लेने उन पिला मन के बोले आम्ही आमचो बाटले खूबे खूबे मया और चुमाने
1: हाँ वाले तो गडरुबा छे दादा दादी पीला जिला मन संग सब संग बैठलू ने देखा हो ये छो समय बोले ने बाढ़ती समय आए ने आरु आगे समय आ रे समय आने खंडी खूबे फरक आसे
0: हाँ आगे काय होते रहे कि आमन मन के कहीं खबर हो ना ले कहीं बोलो ने उनका आम के जाऊ लाए पड़ते रहे
1: हाँ।
0: अरे भी काय आमी घर भीतर ले बसुन बाती हेलो बोलो नुन बाटे उन मन संग गुड बात हो से और सब खबर बोला मुन मन के अमराओं से
1: अमराओं से
0: और उसने तो कहा हमें रिश्ता नातान बोले हम लेख करू तो कहीं ठीक नहीं हम जो दादा दीदी मन लेख कर लो ये कहा हम आगे आया बाबा बोलते रहो कसन
1: हम जो भाषा हिसाब ने
0: हम जो भाषा बोली हिसाब
1: ने देखा उन भाषा के छाड़न दिलू हम पूरा ए और भाषा के धरू से ना
0: कौन उन बोले उन भाषा बोले पढ़ तो लिख तो हिसाब ने छो से जानू मानते रहे देखा आया के मम्मी असन टाइप से बोलते बीती
1: बाबा के डैडी ने
0: मतलब तो, समय हाँ, अनुसार का रिश्ता नाता बोले कि बदलते
1: जाए ऐसे मानतर देखा हो आम छो निबुल का तो रहे ना, नाता रिश्ता बोले सुरता करून संगावरत राय आरु उसने आप लो माय बाप को बोल तो काज पर काय लाज होत राय तने तो हम चो जसन
0: के मालो माय बाप का हाथ तो उनमन के ने
1: हाँ हम चो गांव गोड़ान जसन चले सुसने बोल तो राय हाँ आया क्या आया बाबा के बाबा हाँ तो उसने हम चो दादा दीदी मन पिला जिला मन के हम चो भाषा भूली हिसाब ने सब चीज के सिखाओ तने असन बोल तो बीती मन के निबुल का कसन ने असन बोले ने लाजबल होतोर नो है कसन होतोर नो है ये तो आम जो आगत ले चलती है इसे
0: आम जो गोटा
1: है तो असन बीती मन के बुल कात्र लेने तो पिला बुलक देची
0: उन्हें कच का है कि हम के हम जो जोन पढ़तो नोनी बाबू मन के बल का है समय समय सांगते रहते
1: सांगते रहे हो ये भी देखा दादा दादा ही बोल सोत आई नहीं बोलत आई के दादी बोल सोत तो ये भी कांकोनी बोल पूछ लेने कहाँ बोल पूछ लेने खाली तुम चो आगे चलो मन दादा और तुम चो दादी काय बोलते रहला बोले पिला बुलकुआत
0: बुलकुआत
1: नहीं दादा और दादी बोलते रहला बुलुआत ने उनका पिला मन सांगत रहा कि दादा को के बोलते रहे अरे आई को के बोलते रहे
0: तो हाँ कुलदर मामा ये गोड़ बात तो होली
1: हाँ
0: मंत्र तक आम चलो नंगत गोट मन बोला साली मन को बोला हम राउंड

0: जीएसटी काउंसिल ने अपनी 56वीं बैठक में हेल्थ केयर की चीजों को सस्ता कर देश की बड़ी आबादी को राहत दी है। डायबिटीज कैपिटल कहे जाने वाले भारत के शुगर मरीजों के लिए रोजाना की जरूरत बन चुके ग्लूकोमीटर और स्ट्रिप्स पर जीएसटी की दरों को घटा दिया गया है। नजर के चश्मों को भी सस्ता किया गया है। इतना ही नहीं बल्कि ब्रेस्ट कैंसर सहित अस्थमा के एडवांस इलाज में काम आने वाली कई दवाओं, थर्मामीटर और डायग्नोस्टिक किट्स पर भी टैक्स की दर कम की गई है।
1: एक मजबूत घर बिल्कुल उस पिता की तरह होता है जो हर मौसम सह कर भी घर की नींव को कभी हिलने नहीं देता।
2: आपके घर के लिए भरोसे का दूसरा नाम चेटिनाड सीमेंट का मैक्स क्रीट सीमेंट, 64 सालों की बुनियाद के साथ। चेटिनाड सीमेंट, द परफेक्ट कंक्रीट चॉइस।
3: जीएसटी काउंसिल तोरु वाणिज्यिक कारोबार तगा टैक्स तुन और वन सरल बना की तोड़। बस ट्रक और एम्बुलेंस गाड़ी की नगा इंजे ओंडोई लेकिन 18% टैक्स की सी तोड़ मुन्ने अद 28% मत्ता। HS कोड क्लासिफिकेशन किन परवा कीवा लेवा गाड़ी ना सामान तपोरो इंजे ओंडोई 18% टैक्स की सी तोड़। इत बुताते यू सामान पाड़नोर और सामान तच इनोड़ा तिप्पाल कम आता और सामान तत्ता ओया ना बूता सरल आयना उम्मीद मिंदे। इलेक्ट्रिक गाड़ी न पर्रो मुन्नीटा लेकिन 1% टैक्स मंता नेलता माटा इद मिंदे की इलेक्ट्रिक गाड़ी नगा बाताय बदलाव आयो। कोंडे इलेक्ट्रिक गाड़ी, इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल और इलेक्ट्रिक मुंड चक्का ना गाड़ी 1% जीएसटी मौला तेने दोर किता अदेन के और सोबेर कम टैक्स ता गाड़ी बने मास मंता।
1: एक मजबूत घर बिल्कुल उस पिता की तरह होता है जो हर मौसम सह कर भी घर की नींव को कभी हिलने नहीं देता।
2: आपके घर के लिए भरोसे का दूसरा नाम चेटिनाड सीमेंट का मैक्स क्रीट सीमेंट, 64 सालों की बुनियाद के साथ। चेटिनाड सीमेंट, द परफेक्ट कंक्रीट चॉइस।
4: जीएसटी परिषद कमर्शियल बिजनेस के और सरल बनाली से बस ट्रक एम्बुलेंस ऊपरे एवर एक समान 18% कर लागे दे आगे ये 28% रहे। HS कोड क्लासिफिकेशन चो गिरधा कर लो बिना ऑटो पार्ट्स ऊपरे एवर एक समान 18% कर होली से। ये काम ले कल पुर्जा बनातो कंपनी अरु घेंतो लोग अरु सप्लायर्स चो चीपा गुचे दे। एचई संगे कल पुर्जा चो अमरातो काम बले सरल हो दे। बिजली ले चलतो बीती गाड़ी ऊपरे 5% कर लागे दे ए मन्ने काही बदलाव नहीं होली से। बिजली ले चलतो सपाय गाड़ी, दुई चक्का बीती गाड़ी अरु तीन चक्का बीती गाड़ी ऊपरे 5% कर चो लाभ मिलते रह दे। असन ले ये मन सपाय कम जीएसटी दर बीती गाड़ी मंचो विकल्प बनू रह दे।
5: तो कुलदर मामा,
6: हाँ
5: अले नगद गोट बात मन अम्बल सुन लो और दादा दिन बोल सुन ला
6: सुन ला। हाँ वाजी दिन बोल लेने मंगलवार दिन आया ने तो बोल ले भाचा काय सुंदर गीत गोविंद चो दिन आए ने तो ये ता मन कर लो भाई मन आप लोग गीत और नाव के पटाव रसोत ने आम चलत चिट्ठी पत्री तो दखा उन भाई मन चो मन कर लो गीत और नाव के अमी सांगो से ने। हाँ तो उसने आज ही लोक लहरी प्रमाणसी लोक गीत आए ने। हाँ तो गडरू भाचा
5: अले गीत के सुनता पाचे गीत कुरिया मंजना गया और चिटी पटालो भाई मंजना पाचे सांगवा।
6: हाँ

0: हाँ गडरू
1: हाय हाँ
0: हाँ तो ये गीत के गाऊ रहला गेल मनी देवी आरु उनचो संगवारी मन।
1: हाँ
0: तो ये गीत के मन कर रहला ये भाई मन चो नावाय बलाक तो कपाल ग्राम सिरिज गुड़ाले जग्गी लक्ष्मण रमेश बंडरी पोटीराम।
1: कुलदर मामा
0: हाँ
1: मजलग बुल चिट्ठी आसने
0: हाँ हाँ
1: रामचंद्र बार कर कपाल जिला बस्तर ले
0: हाँ
1: लक्ष्मण कश्यप चंद्रू मंडावी तुलसी मोरे धर्मेंद्र यादव मंगन मंडावी और नरेन ठाकुर
0: हाँ
1: हरिमंजो
0: हाँ
1: संगवारी मन।
0: हाँ तो ये तहसील लोंडी गुड़ाला ग्राम रिकपाल कुपचंद बगेल सोनारू बगेल मोटूराम बगेल बोटीराम बगेल।
1: मचलक बल गोटो का स्थान है
0: हाँ
1: ग्राम तारा गांव ले
0: हाँ
1: दिनेश मंडावी राजू मंडावी जगन्नाथ कश्यप आंदा मंडावी सुद्राम कश्यप और बाल सिंह कश्यप
0: हाँ तो
1: अदका
0: हाँ
1: और बोले गीत पला से
0: हाँ
1: ने
0: हाँ
1: और बोले भाई मंचो चिट्ठी पटल चिट्ठी बोला से।
0: आसे हाँ
1: तो ये गीत के बोल हमारा देवता
0: हाँ
1: गीत को रचनाओं के बोल पाचक सांगवा और
0: हाँ
1: भाई मंचनाओं के पाचक सांगवा।
0: हाँ हाले
1: हाँ।

0: तो गटर भाषा
1: हाय हाँ
0: आई बल काय सुंदर गीत रेली ने
1: हाँ
0: गीत के गौरला आएगे सर पुजारी यार उनसे संगवारी मन
1: संगवारी मन
0: हाँ और ये मन के मन कर लो भाई मनात ये मनात तहसील नारायणपुर ग्राम गढ़ बंगाले पिंटू ठाकुर छोटू ठाकुर और धनेश्वरी ठाकुर मन
1: मजलक बलासो ने ग्राम गढ़दा विकासखंड लोंडीगुड़ा जिला बस्तर ले विनोद यादव विजय पोयाम कमलू बेंजाम सलमू मंडावी और सुखराम मंडावी
0: हाँ ये मन आज जगदलपुर शो अभिन मंडावी देष्टा मंडावी डिम्पी मंडावी सरू मंडावी ये मन ये मंच गीत के मन कर रला
1: अमज लग बोल कोटो कास्ता ने ग्राम बेजा जिला बस्तर ले चमरा कसेप चंदन कसेप कारू नकुल कसेप समृत मोरे तुलसी कसेप
0: हाँ
1: इतरो लोग दगा ये गीत के मन कर रला
0: हाँ तो उसने फिर आम से गोटक मोटरान गीता से ये गीत के बोली सुनू और ये गीत के गावला सो सहदेव कसेप और उनचो संगवारी मन
1: अरे मन कर लो भाई मंजनक पाचक सांगवाने
0: हाँ

0: तो ये गीत के बोल सुन लू हो ना।
1: हाँ
0: तो ये गीत के मन कर लो भाई मनात, कोंडा गांव विश्रामपुरी ले, सनित मंडावी, अनिल मंडावी, सुरेश मंडावी, मोहन मंडावी, ज्योति मंडावी, ये गीत के मन कर रहा।
1: हाँ हाँ मचलक बुलास्ता।
0: हाँ
1: अनिल यमनाथ ग्राम डिलमिली विकास खंड दर वाले।
0: हाँ
1: अनिल सोड़ी, दशरथ कश्यप, दुर्जन कश्यप, गुड्डू मंडावी, संतु पोया, मनी मंडावी।
0: हाँ हाँ यमनाथ ग्राम पामेला ले, अमीर कश्यप, मोती कश्यप, सुनंदा नाग, फुलमती नाग, रामवती नाग, गीतिका मोहरिया, ये मन ये बोले गीत के मन कर रला।
1: ये तो मचलक बलास्ता नहीं गोटोक।
0: हाँ
1: ग्राम बद्रिंगा विकास खंड लोंडीगुड़ा जिला बस्तर ले, टिकेश्वर ठाकुर, महेश नेताम, बुद्राम करटामी, संतु यादव, मनीराम करटामी, रामकरण पटेल।
0: हाँ
1: दादा इतरो लोग मन कर रला ने।
0: हाँ वाले तो हम से जातो समय बोलोली और दादा दीदी मन से मन कर लो गीत नाव गांव के सांगलो ने।
1: हाँ
0: मोटरा गड रख सकला मैं विदा मांगे से।
1: हाँ
0: जातो पूरे बस्तर के स्वर कार्यक्रम संतो सब पाए गांव कारी दादा दीदी भाई बहन मन के मैं कुलदर
1: और मैं गडरू
0: हमी दोनों करूँ से
1: राम राम, राम।

आप सुन रहे थे कार्यक्रम बस्तर के स्वर, आकाशवाणी का ये जगदलपुर केंद्र है। शाम के 7:21 हुए हैं। प्रस्तुत है प्रायोजित कार्यक्रम किसान वाणी।

0: कसन बागवानी बोलवा तुम जो फिर फूल ये काय काय ये बोले लगाऊ सकूं उन जो ले तुम जो पशुपालन बोल करूक लाई सकूं कसन
1: पशु
0: मछली पालन करूक सकूं
1: हाँ मछली पालन करूक सकूं और हम से लगे अच्छा जगह टानाज बोले ने मुर्गी पालन बोल करूक सकूं कुकड़ी पोसुक बोल सकूं ने और बरहा पोसुक लाई बोल सकूं हाँ देखा ये भी बरहा बोल रेड बोल हाई फाई कुकड़ी चरेट बोले देखा अच्छा नंगता से
0: नंगता से
1: छेरी बोकड़ी चरेट बोले अच्छा से
0: अच्छा
1: आ देखा गाय पोस लेने आम के गोरस दूत काज बोल हुई से शहर नगर ने उन बिक तो काज हुई से
0: सत्य बोल
1: हाँ गाँव ने हाट बाजार ने बोले दही मही बोल भी कुकला सकवा है और उन संग संग देखा गडरू बाचा गाय बैला चो हागल मुतल बीती आम अबेड़ा खड़ान लगात काजे खत बोले हो
0: खत बोलो हाँ
1: तो असन वाट ने देखा आम के गोरस ले बोल पैसा मई रेसो हाँ खत बातोली बोले नाम चो धान आरु साग सब्जी कमात का नंगत वाट बोल हो से ने
0: आम के आनी बानी चो खत बोल के नुकले नी लागे
1: नी लागे हाँ
0: उनी खत आम के छेरी मेंडी चो खतोली गाय गोबर चो खतोली ने
1: तो आम चो

0: कहाँ कहाँ का है कि प्रशिक्षण मन बोल मिलते रहे से
1: हाउ
0: कहीं ऐसा मौकमा विभाग मन रहे से उन मन का है सांगते बोल रसोत प्रशिक्षण देते बोल रसोत
1: हाउ
0: ने कहाँ तो मछली बीज मेरे से कहाँ तो गाय बोल मेरे से
1: हाउ
0: कसम असन जगह मन ने जाऊन का है आमचो दादा दीदी मन जानकारी दरोत और जो चो लगे जगह आसे उन मन ने बीती के करोत।
1: हाँ तो देखा गडरू बाछा ये सब बीती मन के सुनन बाती दादा दीदी मन लाभ धरो तारु देखा हो गडरू बाछा ये जो नाम गाय पोस तो काज बोल नहीं सरकार बाट लेनु धान रही से अरे छो आमी बीमा बोल करू के लाई सकू है के भाई जब देखा उदा आपड़े कहीं दुर्घटना हो दिली बोले नुंचे बोले बीमा बाट ले आम के फिर पैसा मीरू आई ने तो उसने दादा दीदी मन सुनो तारु असन सुनन बाती लाभ धरो तने आराम से मोटरा ने नगद गोट मन बोला साले की बोले सुनो
2: सर्वश्रेष्ठ किसान का पुरस्कार मिलता है हरिया को। हरिया अब आप सबको बताएंगे अपनी सफलता का राज।
3: मेरे किसान भाइयों और बहनों आप भी अपने खेतों में उन्नत फसल उगा सकते हैं।
4: वो कैसे?
3: बस जब भी कोई समस्या हो तो तुरंत मिलाइए ये नंबर 1800-1501551।
5: ये किसका नंबर है भाई?
3: किसान कॉल सेंटर का, जहां विशेषज्ञ आपको खेती की समस्याओं का हल देंगे तुरंत।
6: अरे भाई विशेषज्ञ हर समय थोड़े ही बैठा मिलेगा?
3: बिल्कुल मिलेगा मेरे भाई, साल के 365 दिन मिलेगा, वो भी सुबह 6 बजे से रात 10 बजे तक।
5: पर भैया लंबी बात करेंगे तो पैसे बहुत लगेंगे।
3: कोई पैसे नहीं, मोबाइल से या दूसरे फोन से किसान कॉल सेंटर मुफ्त कॉल करो, सलाह के भी पैसे नहीं।
7: सच
3: 16 आने सच।
8: किसान भाई खेती की समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत समाधान पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 1800-1801551 पर मुफ्त संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर।
9: आत्मनिर्भर किसान भारत की शान। उत्पादन में आत्मनिर्भर होने के साथ साथ फसल की कटाई के उपरांत उपज की हानि को रोकने, ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार सृजन करने और बीज से बाजार तक के विजन को मजबूती देने के उद्देश्य से एक वर्ष पूर्व माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने एक महत्वाकांक्षी केंद्रीय योजना एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड की शुरुआत की।
10: इस आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर से कृषि आधारित उद्योग लगाने में एक बहुत बड़ा बदलाव आएगा और बहुत बड़ी गति आएगी। साथियों, अब हम उस स्थिति की तरफ बढ़ रहे हैं जहां गांव के कृषि उद्योगों से फूड आधारित उत्पाद शहर जाएंगे और यही तो आत्मनिर्भर भारत अभियान का संकल्प है।
9: एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड से पात्र लाभार्थी गोदामों का निर्माण कर सकते हैं, छटाई या ग्रेडिंग इकाई, पैकिंग हाउस, सप्लाई चेन और कोल्ड चेन जैसी सुविधाएं या फिर प्राथमिक कृषि प्रसंस्करण केंद्र की स्थापना कर सकते हैं। इस योजना के तहत पात्र लाभार्थियों को 2 करोड़ रुपए तक के ऋण पर अधिकतम 7 वर्ष के लिए ब्याज में 3% तक की छूट दी जा रही है। ऋण पुनर्भुगतान के लिए 6 महीने से 2 वर्ष तक मोरेटोरियम की सुविधा भी उपलब्ध है। इस योजना ने अब तक सफलता की कई मिसालें कायम की हैं, जैसे कि मध्य प्रदेश के लाभार्थी श्री विपिन त्रिपाठी ने एग्रीकल्चर वेस्ट से बायोफ्यूल बनाने का इनोवेटिव प्राइमरी प्रोसेसिंग सेंटर लगाया है।
11: लोन मिलने की वजह से हम समय पर सारी मशीनों का प्रोक्योरमेंट और सारा सिविल वर्क टाइम पे करवा पाए, जिससे प्रोजेक्ट को लगाना संभव हो।
9: राजस्थान के लाभार्थी श्री यशवर्धन मुंद्रा ने सॉर्टिंग एंड ग्रेडिंग यूनिट लगाकर रोजगार के अवसर पैदा किए हैं। कर्नाटक की महिला उद्यमी श्रीमती ममता वी ने प्राइमरी प्रोसेसिंग सेंटर लगाकर प्रगति की नई राह चुनी है।
12: सन्ना पुट्टा उद्यमिगळन्न मत्तष्टु अग्रिकल्चरल हेच्चु नावु इन्नष्टु साधने माडलिक्के कारणकर्तवादंत ई अग्रिकल्चरल इंफ्रास्ट्रक्चर फंड इंद नम्म इन्नष्टु योजनेगळु आयोजनेगळु उत्तमगोंडिदे।
9: राजस्थान के लाभार्थी श्री दिनेश भट्टर ने जीरे की प्रोसेसिंग यूनिट लगाकर आसपास के ग्रामीणों को आत्मनिर्भरता प्रदान की है। महाराष्ट्र के लाभार्थी श्री अनूप कुमार मोहता ने वेयर हाउस बनाकर अन्न भंडारण को सुनिश्चित किया है। आज देश के कोने कोने से किसान, कृषि उद्यमी, किसान उत्पादक संघ, प्राथमिक कृषि सहकारी समितियां, स्वयं सहायता समूह और कृषि उपज मंडियां इस योजना का लाभ उठा रहे हैं।

योजना प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना हिसाब ने ए वार्ड बनली से कि देश चु सप्पाई बेड़ा ने कोनी नहाले कोनी हिसाब ले पानी हमरा तोर गोठो ए चुकाजे राज्य और जिला स्तरीय समिति चु दखा रखा ने सप्पाई

0: प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना चो बानी
1: सपाय बेड़ा के मेरे दे पानी
2: ये हुआ टाइप प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना।
3: तो गडर बाचा आली नगद गोट मन के सुन लू और खेतियार दादा दीदी मन बोल सुन ला ने दका उसने आमी कहीं ना कहीं अच्छा गोट मन बलान तेरो उसने कमानी बीती मन छो। हाँ तो आम छो मोडरा ना से आज भेट वार्ता ने भेट वार्ता भीतरी आसे जोंद्रा पसल आई मन के सांसद गिरेंद्र कुमार पांडे आई मनात कृषक ने आर्य मन संग भेट ओला से लखमूराम मरखां। तो आली मंच गोट बात के सुनो और खेती अरदाता दीदी मन बल सुनो।
4: खेती अरदाता दीदी मन रेडियो कार्यक्रम भित्रे कहीं ना कहीं ज्ञान ध्यान चे गोट धरन भातीन हमी एवाओ। तो उसने हम चु लगे आजी गोटो जुआन किसान भाई इलो से। तो दादा तुमके जुहार।
5: जुहार दादा।
4: सबले पहिल आपन चो परिचय सांगा दादा कहाँ ले आज का नाम है।
5: मजो नाव खिरेंद्र कुमार पांडे आय। मैं रत्तोविदा का मेला चुआ है।
4: अच्छा और तुम्ही काय खेती कमानी करासी दादा।
5: मैं दादा जोंद्रा कमानी।
4: अच्छा जोंद्रा कमानी करासी। कितरो एकड़ ने लगाला सी दादा तुम्ही जोंद्रा।
5: बरसात में तो हुनी दुई पैकेट लगे से चमास में हुनी धान धानी सब लगा तो थाने तीन एकड़ में लगा लूस दादा।
4: अच्छा तो तुम्ही खेती कमानी बुता करू हास
5: की। हाँ।
4: ई था अच्छा आमदनी होय से होती जोंद्रा कमानी।
5: गर्मी में जोंद्रा कमानी मतलब अच्छा है छो ठीक होय से सबके ध्यान दिलो में अच्छा है कमो अच्छा हुआ अगर हुआ
4: और चमास ने पानी आगर होले जैसन की हम सुन लू से की जोंद्रा कमानी कर तो का जी अगर पानी बल लागत और कम बल होते रहा
5: है। मतलब कम पानी चाहिए नहीं जोंद्रा का जी उतरो पर्याप्त तो मतलब अगर पानी होली जाल जोंद्रा बैठे से नहीं हो कम हो से।
4: हाँ, अगर पानी होले सड़न बल जाए से
5: सड़न बल जाए से उन बूटाई नहीं बढ़े कहाँ ले तो बूंदी।
4: हाँ ये दुई पैकेट कितरो एकड़ ने लगभग लगली से।
5: मतलब हम आठ पैकेट लगा लो तीन एकड़ में लगली से।
4: तीन एकड़ में होनी आठ पैकेट लगली से। तो तुम्ही उन आठ पैकेट चु कितरो कुंटल हो से जाले पासे तुम्ही मिंडालो पासे हुन।
5: हुन लगभग एकड़ में लगभग दस बारह कुंटल हुआ है वत का जे अच्छा बना लो भी तो हमनी लगभग पंद्रह सोलह एकड़ है मतलब पैकेट अनुसार बना सो अलग। अच्छा। अलग जोंद्रा में अलग अलग क्वालिटी रही से।
4: हाँ जान एक पैकेट ने पंद्रह सोलह कुंटल ऐसे। हाँ तो तुम्हें कितरो आठ पैकेट लगा लही
5: रहे। आठ पैकेट लगा।
4: हाँ तो अच्छा आमदनी होय से मतलब रखा दखा कसन रहे से तुम्हें हमेशा दखुक लागे से कि कसन टाइप चाहे।
5: हाँ देख रेख फिर दखुक करुक सब लागे से चिने शुरू ले आखिरी तक दखते ही चाहे ते भी जोंद्रा हुआ है।
4: हाँ तुम्हें जैसन हाइब्रिड आजकल एक ठन रहे से हाइब्रिड बीज रहे से लगा चले आगे हाइब्रिड भी तीन इन्हें अगर गेड़ा बड़े होय से और बीज भी लागर धरे से तो असन उपचार कर लो भी तीन बीज के तुम घेनु नाना सीत की कसन टाइप चो रहे से।
5: हाँ ये भी हम के उन लोटो पॉपकॉर्न बल सत नया लाई भी तीन।
4: हाँ।
5: उन भी तीन दिवर ला कंपनी वाले दिला सर।
4: अच्छा दिला सर।
5: उनके और बड़ा मलगा लो आसे।
4: हाँ पॉपकॉर्न बल लगा लाई।
5: हाँ हाँ। मतलब उन तीन एक किलो सर दिला सर।
4: तीन किलो।
5: हाँ लगा लो से।
4: हाँ।
5: ये भी तो खूब बड़े इतनी बाढ़ ली साला की बल तो बल फिर कंपनी भी उन बोलो खूब नी बाड़े दे।
4: अच्छा
5: तो उन छोटे में गेड़ा दी
4: उन मन फ्री ने दिला हाथ बीच के
5: और उन बीच खत सब फ्री में दिला है।
4: अच्छा सब पाए रहे सुन।
5: मतलब उन बिल बना ला सत आखिरी में काटुअत का संजय ने आपल मन तो दिला है।
4: हाँ उस अन आगे नहीं सांगला
5: हाँ आगे। हाँ मतलब बिल बना ला सत मतलब उन उता कटुचिया
4: काटुआ हो निकाल तो लेखा जोखा कर ला
5: लेखा जोखा बना ला।
4: ये तुम्ही पाप कारण भी तीन पहली हार लगा ला सित के आगे बल लगा
5: पहली बार लगली से।

0: फर्स्ट हार लगली
1: हाँ अच्छा तो और बाकी जो लगाला सी थून असने नॉर्मल भी तीन
0: उन जोंदरा के आम के एज गज पता आगत ले बोले जी गजिक रहे कि ये जोंदरा अच्छा ये जोंदरा तो अलग अलग हुन बलाट पैकेट भी तीन अलग अलग लगली सब थन दो पैकेट ये दो पैकेट हुन तीन पैकेट उसन लगा ली हुन के बोला
1: सबे उन जमीन एक ही लग से जमीन में लगा ला सीत की अलग अलग जमीन का सन टाइप चो
0: हाँ मतलब गोटो बेड़ा में लगा लू से उन आठ पैकेट भी तीन संग की आऊं हम जो सने संग की लगा लू सबका
1: संग की जन मिलन लगा ला सीत संग की
0: नहीं दो ही घर लोग
1: दो ही घर लोग उसने कसन ही सारे वाय आधा आधा रवाय दोनों चो
0: उन चु पानी आए तो हम चु काए तो आए जमीन और काए तो उसने लगा लू से
1: और जसन की दादा तुम्हें बीज लेम्स ले धरा सित की कहा है दुकान ले प्राइवेट दुकान ले धरा सित
0: प्राइवेट दुकान ले धर लू
1: प्राइवेट दुकान है नहीं
0: प्राइवेट दुकान ले धर
1: नहीं कभी कभी ऐसा नहीं इसकी लेम्स बाट ले बले मीरे से बीज
0: उन ड्रेस जन ने कृषि भंडार काय का सब बाट ले रहा है लेकिन हम प्राइवेट ले आन लू से
1: और तुम ये भी तीन तुम्हें जसन मिंडाई कर ला सित ने करा सित होलो पास से तो उनके तुम्हें लेम्स ने विकासित की असने गला भी तलक विकासित का चलक विकासित
0: आगे आगे तो गला भी तलक देते देते रहो ये भी पंजीयन हो लिया हम चुक कोकड़ी भी थी
1: अच्छा
0: तो फर्स्ट आहार ये भी बरसात चुक दिलू से
1: हाँ
0: तो ये भी फिर कोकड़ी फिर उताई देता
1: अच्छा, है अच्छा फिर उन गर्मी फसल हाँ, बोल देता रहा
0: मतलब,
1: तो उधर लाए कितरो मान दे में मतलब मीरवाय बल्ला गर्म चमास भी थी
0: चमास भी तीन 2400 में दिलू हम
1: 2400 में हाँ, दिलास और
0: मतलब तो फिक्स रेट ले तो गांव बांड में 16-14 मांगत
1: गला भी था 16-14 मांग
0: तो तो पंजीयन करो रे लो आगे
1: हां
0: तो एक हर काय तो काट रहा रसीद तो उन हिसाब में पंजीयन और टोकन कट ली फिर
1: अच्छा
0: कट तो फिर नी ली 40 क्विंटल कट रे
1: हां बढ़िया तो फायदा तो होइसे ने गबल गला भी था
0: मतलब लेम से ले करो रे ला हालांकि उन चले काय तो होली होत का पंजीयन हां
1: हां
0: तो लेम से ले उन चे थ्रू ले काय तो बोल कट ली टोकन बोल कट ली कोंडा गांव कटा हुआ टोकन कलेक्टर ऑफिस में बल्ला कटा तक फिर हमी फिर होली 40 क्विंटल दी लो
1: तो ये जो तुम्हें विकासित है ये एक ही मुस्त ने पैसा मिले इसके पास है बोनस बल मिले इसका सन हिसाब है
0: नहीं बोनस तो नहीं सांग ला लेकिन 2400 के हिसाब में एक ही मुस्त में दे लिया
1: अच्छा एक ही मुस्त में दे लिया हां तो चमास में जी कम हो से बला तेबे गर्मी लगा ला तने आगर हो दे होते
0: ये भी तो गर्मी में लगभग फन आगर है भाई क्योंकि देख रेख खाद बीज क्यों नहीं जाए क्योंकि सब आप लोग कायते हिसाब में लेते हैं सब चीज खाद होली सब पानी होली ने आप लोग टाइमिंग में
1: तो जसन की दादा है जोंदरा कमानी 3-3.5 महीना जरा इसने तो इथा तुम्हें कित हार खत लगावा सीत काय काय खत लगावा सीत
0: मतलब 4 हार लगवाए फर्स्ट टाइम तो लाखड़ी खत यूरिया मिलाऊ डीएपी मिलाऊ पोटास
1: लगा तो बेरा ने शुरू का
0: उतरली हो सके तो जिंक लगे हुआ
1: अच्छा जिंक पोटास राखड़ बोल बात कर
0: लाखड़ यूरिया सब मिक्स करो डीएपी सब के मिक्स करो एक हर दी हुआ फर्स्ट टाइम तो उतरो ले जिक बढ़ ले जाल फिर डीएपी यूरिया
1: कितरो पान में कितरो पानी
0: हाँ उतरो ले उन 4-5 पान नहीं तो फिर 6-7 पान अच्छा रली जाल तो 6-7 पान में देता है और अच्छा नहीं रली जाले उन 4-5 पान में देते है
1: अच्छा
0: शुरू में उतरल फिर कोड़क तो टाइम ही हुआ बड़े साइज हुआ है लगभग 10-11-12 पानी ली जाए मतलब कोड़ का कुसा भी तीन जरा देते
1: कोड़क लो पास खत देते रहो से
0: नहीं मतलब खत दे उन कोड़क तो
1: खत दे उन कोड़क
0: तो ये भी तो उतरो नहीं कोड़ कर दादा क्योंकि उन लाटा दवाई काय मारन मारन सबके मेंटेनेंस कर सकते और उतरो नहीं कोड़ को मतलब
1: जैसे कोड़ का खुशा ने अगर मेहनत लागे पैसा बल लागे से
0: लेकिन अच्छा हो ऐसे कोड़ का खुशा होल में लेकिन क्या है लोग फिर इतना मेहनत के रुकनी चाहूंगा नहीं
1: हाँ ये गोटा है आजकल कम मेहनत हो और पैसा अगर
0: अगर अगर फायदा हो नहीं
1: तो इन्हें भूई के नुकसान नहीं होता था दो ही चीज से लाटा मन के मार तो काजे तो
0: नहीं ऐसे जन पर का लाटा के मारा तो रहे से तो नहीं कसने बल फसल जी अगर हो बोलो नहीं
1: हाँ ये गोट तो आए लाटा बल मरे से और कोड़ का खुशा बल कोनी कोनी नहीं कर
0: कोड़ का खुशा बहुत कम जे कर लो नहीं तो नहीं करवा
1: नहीं तो दो ही चीज
0: लाटा दो
1: मतलब 3 घाव नहीं 4 घाव दिया सीत
0: हाँ खाद लास्ट थन 4 हार होए सच क्योंकि
1: लास्ट हार बोल ले क
0: काय तो जैसन घेड़ा निकरुन काय तो निकरेस नहीं मैं छा
1: हमेशा निकरेस है
0: फुल हो रहे से
1: हाँ हाँ
0: उधर लाय लास्ट हार फिर खाद दिलों उधर लाय यूरिया पोटास और बस उनके दिलों में उतरो ले घेड़ा बांध है घेड़ा बांध लो उतरो नींदे होते
1: अच्छा अच्छा
0: उन लास्ट हो ऐसे
1: तो और ये पानी बले कसन सुखलो एकदम सुखलो पासे पानी जपुक लगे इसकी जी गिला गिला बेरा पानी जपा सज
0: नहीं जो

0: मेहनत आना होय से हुन चले अजी कागर कमाई होय से होती कसे
1: नहीं काय कमाई फिर ने उन चे काज कमाऊ रहता जी मेहनत करते जाय
0: हां
1: ने हां बिना मेहनत के हो नो है
0: जसन की तुम्ही 100 रुपया चो बिक्री करलास होता तुम चो कितरो रुपया लगभग चो खर्चा हो रहे से 50 रुपया 60 रुपया कसन टाइप चो हो रहे से होती
1: हां मतलब जसन 100 खर्चा करून देतो तो 50 60 घुसरे ले मतलब 200 होय से कि ने
0: अच्छा 50 जहन तुम्ही मैं 100 रुपया मान के चलो बिकलास बोलने तुमके हां तुम्ही आखरी खा 100 रुपया बिकलास मानतर तुम चो होता दोही खाद भात 50 रुपया हो रेली कि 60 रुपया ले लसन टाइप से
1: हां ओ सन 40 50 यू रहे से
0: अच्छा 40 50 यू रहे से मतलब तुम्ही तुमके मुनाफा होय से
1: मुनाफा हो छे
0: हां अच्छा ये अच्छा गोट सांगली दादा तुम्ही तो ये जो संग संग कहीं और बल फसल करा सित की गोट की जोंदराय कमानी करा सित
1: नहीं अभी तक तो हम जोंदराय से कमा लो साले की और फसल बल उन फिर खातों का साग सब्जी फिर घरे आपल जो ई का देख लगो लाग ने रेठे को ना
0: हां हां ये गोट तो आए
1: जोंदराय में बल अलग ही होता है मूली बोल डालू हम लाल भाजी बोल डालू हम खूबे नहीं डाले मतलब अलग मतलब बल रहता है उन जी कुंदले जोंदरा क्यों ताई तो नहीं करो बोले मारे
0: अच्छा जान की दूसरा सब्जी उब्जी लगो रे लेखुन अपन पोषण का झीके से नहीं खत बात
1: उन्होंने कहा है थोड़े जल्दी झीकुन मारे ओके
0: मैं ये बोलते रहले दा जान की जोंदरा कमालास कहीं कोनी टमाटर फिर कमात कोनी भेंडी कमासत अलग अलग वैरायटी चो कमाई करासित के सिर्फ एक ही ठन कराई जोंदरा करा
1: हम ही तो और नहीं कमा लो सुसान कमा तो कमाती जोंदरा कमा लो से हम चो लग कहला की खूब कर सब टमाटर भेंडी उसन सब लगा सब
0: अच्छा अच्छा
1: हम चो लगे
0: हाँ
1: मतलब ड्रीप आसे सब आसा लगी ना
0: हाँ तो तुम चे संगे गोठेन भातिन अच्छा लागली दादा असन ज्ञान ध्यान जो गोट सांगलास और असने तुम ही बाटती करते रहा अपन जो जोंदरा कमानी बुता करते रहा और हम ही दादा मन बल सांगलास की कसन कसन काय तो दोही छिच तो राय और कसन बेरा पानी जपा तो राय और कसन बेरा कटाई कर तो राय ने तो तुमके खुबे खुबे जुहार दादा हम जो प्रोग्राम नीलास
1: मज बाट लेवल जुहार
2: तो गडर भाचा आले बेड वार्ता के सुन लू हो ने ये जोंदरा फसल चो रहे ने अरे मन के सांग थरोत की मर किरेंद्र कुमार पांडे अरे मन संग बेट उरोत लकुर राम
3: मरका
2: मरका आले तो आम चो मुड़रा ने और नंगत गोट मन बला साले नंगत गोट मन बल सुनो
4: एक मजबूत घर बिल्कुल उस पिता की तरह होता है जो हर मौसम सह कर भी घर की नींव को कभी हिलने नहीं देता।
5: आपके घर के लिए भरोसे का दूसरा नाम चेटिनाड सीमेंट का मैक्स क्रीट सीमेंट 64 सालों की बुनियाद के साथ चेटिनाड सीमेंट द परफेक्ट कंक्रीट चॉइस।
6: जीएसटी काउंसिल ने बीमा पर लगने वाले 18% टैक्स को घटाकर जीरो कर दिया है। ऐसे में जीवन बीमा लेने वालों को अब सिर्फ इंश्योरेंस का प्रीमियम ही भरना होगा और इस पर कोई भी अतिरिक्त टैक्स नहीं देना होगा। ये हेल्थ इंश्योरेंस लेने वालों के लिए बड़ा फायदा है क्योंकि LIC को पहले से ही इनकम टैक्स में छूट मिली हुई है। वहीं अब GST भी हटने से बीमा लेना फायदे का सौदा होगा।
7: जीएसटी काउंसिल बुधवार नेटेन घोषणा कित्ता की सरकार सीमेंट तपोर्रो GST मोला 28% तुन कम कीस इंजे 18% की सित्ता टैक्स तगा कमी कित्ता आवासीय आड़ व्यवसायिक प्रोजेक्ट तगा लागत दबाव कम आयना दुमिद मिंदे इलेकेन संगमरमर इंदनाद और ट्रेवकिन ट्रेवटीन ब्लॉक इतके ओंडलेकटात बंडाकल तगवेन टैक्स दर 12% से घटे मास 5% की सित तोड़ ग्रेनाइट ब्लॉक तगवेन मुन्ने 12% मत्ता आदिंजे 5% GST लगे माता इदेन संगेन उसका चुन्नामता ईटा और बंडाकल तीन जोड़ाई की अनबूता तेवेन मोला 12% से कम मास 5% की सित तोड़।
4: एक मजबूत घर बिल्कुल उस पिता की तरह होता है जो हर मौसम सह कर भी घर की नींव को कभी हिलने नहीं देता।
5: आपके घर के लिए भरोसे का दूसरा नाम चेटिनाड सीमेंट का मैक्स क्रीट सीमेंट 64 सालों की बुनियाद के साथ चेटिनाड सीमेंट द परफेक्ट

0: own great choice.
1: तो गडर भाषा आले नगद गोट के सुन लू ने तो दखाओ नगद गोट संग यार ज्ञान दियान छो गोट बात संग आम के गीत बोल सुन तो खरीक लागो है ने
2: हां तो सुन बोलो नाम के यार दादा दीदी मन का है बुता समय आवली से हां कौन कौन रोपा लगा सोत लत बदा सोत लगा मार सोत वरन वरन छो बुता आवली सुन फुर्सत नहीं है दिन
1: फुर्सत नहीं है हां
2: तो का है कि अबे खाऊं खाना पीना खाऊन बाटी का रस रे डंडी के सुन ले का गीत गोविंद सुन ले रस रे जुमा बोली भाई
1: हाँ जुमा बोली भाई यार दका गीत बोले ने गोटक सुन लेने मन के बोले वेद लोग सुन लागू है ना हाँ
2: और का है कि कुकड़ा बास तो नींद खोल ले पैर नांगर जमाड़ी दूर बात
1: कसन हाँ तो वाली गीत की सुनू ये गीत के गावला सोत शिवराम नागर उंचो संगवारी मन
2: हाँ

0: खोलदर मामा
1: हाव
0: अलदा का काय सुंदर गीत लिहिले ने
1: हाव हाव
0: एक गीत के गाऊरला शिवराम नाग और मंच संगवारी मन
1: संगवारी मन दखा फिर हम से लगे फिर गुड गीत आसे ने हाँ ये गीत केवल गावला सोत सोमन कश्यप अरुण जो संगवारी मन ने
0: हाँ
1: अली गीत केवल सुनो
0: और दादा दीदी मैं बोल सुनो
1: हाँ

0: विषय है बच्चों का मानसिक स्वास्थ्य। वार्ताकार हैं वर्षा महाजन।
1: आज मैं आपको बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य जैसे अत्यंत महत्वपूर्ण विषय पर अपने विचार प्रस्तुत करना चाहती हूँ। हाँ जी, हम अक्सर बच्चों के भोजन, कपड़े, पढ़ाई और उनके शारीरिक स्वास्थ्य का ध्यान तो रखते हैं, लेकिन एक बात जो कई बार हम उसे भूल जाते हैं वह है बच्चों का मानसिक स्वास्थ्य। मानसिक स्वास्थ्य का अर्थ है मन से स्वस्थ, विचार एवं भावनात्मक रूप से स्वस्थ होना है। मन हमें भावनाओं, अपने विचारों और जागरूकता का वह अदृश्य प्रवाह है जो हमें समझने, सोचने, महसूस करने और निर्णय लेने की क्षमता देता है। मन और मानसिक स्वास्थ्य दोनों एक सिक्के के पहलू है। मन हमारा अच्छा रहेगा तो उससे हमारा मानसिक स्वास्थ्य भी ठीक रहेगा। बच्चों का मानसिक स्वास्थ्य जितना जरूरी है उतना शारीरिक स्वास्थ्य भी जरूरी है। जब बच्चा खुश होता है तो वह अपनी इच्छाएं, भावनाएं एवं अपने विचार अभिभावक को बता पाता है, तब उसका मानसिक स्वास्थ्य अच्छा माना जाता है। सबसे पहले बच्चों के अच्छे मानसिक स्वास्थ्य के लिए परिवार की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण होती है। हर माता पिता को अपने बच्चों के साथ समय बिताना चाहिए ताकि वह उनके मन के भाव को जान सके, हमेशा बच्चों की बातें ध्यान से सुने, उन्हें प्यार दे एवं विश्वास और सुरक्षा का एहसास कराना चाहिए, क्योंकि बच्चों का मन बहुत कोमल एवं संवेदनशील होता है। अक्सर बच्चे अपने आसपास होने वाली छोटी बड़ी घटना का प्रभाव उनके मन पर ले लेते हैं। यदि घर का वातावरण तनावपूर्ण हो, माता पिता में लगातार झगड़े होते हो, ऐसी घटनाएं बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव डालती है। हमेशा अपने बच्चों की तुलना दूसरे बच्चों से नहीं करनी चाहिए। जब भी बच्चा अच्छा कार्य करता है तो उसे प्रोत्साहित करें ताकि बच्चों का मनोबल और आत्मविश्वास बढ़ेगा। कई बार ऐसा भी होता है कि हम बच्चों की बातों को नजरअंदाज कर देते हैं या तो उसे चुप कर देते हैं, जिससे बच्चे अपनी परेशानियां एवं उनके विचार माता पिता तक नहीं बता पाते हैं। इससे वे तनाव में, चिंता में, चिड़चिड़े, छोटी छोटी बातों पर गुस्सा करना एवं डरपोक हो जाते हैं। जब भी बच्चों की दिनचर्या में यह लक्षण नजर आता है तो उसे प्यार से एवं हर बात को सुनकर उसकी समस्या का समाधान करना चाहिए, नहीं तो बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ेगा। इसी कड़ी में विद्यालय भी बच्चों के मानसिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। शिक्षक केवल ज्ञान देने वाले नहीं होते बल्कि वे बच्चों के मार्गदर्शक भी होते हैं। यदि शिक्षक बच्चों के साथ सम्मानपूर्वक व्यवहार करे, उनकी हर समस्याओं को समझे, उनकी छोटी छोटी उपलब्धियों को भी सराहना करे, तो बच्चे खुद को अच्छा महसूस करते हैं तथा बच्चे बिना डर के अपनी बातें शिक्षकों को कह सकते हैं। विद्यालय में भी एक बच्चे की तुलना दूसरे बच्चों से नहीं करना चाहिए, जिससे बच्चों का आत्मविश्वास कम हो जाता है। आजकल की पढ़ाई भी बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित कर रही है, इसलिए बच्चों को पढ़ाई के साथ साथ खेलकूद, चित्रकला, संगीत, नैतिक शिक्षा एवं अन्य रचनात्मक गतिविधियों को भी महत्व देना चाहिए, क्योंकि ये बच्चों के तनाव को कम करती है और उनके आत्मविश्वास को भी बढ़ाती है। बच्चों के मानसिक

0: स्वास्थ्य को स्वस्थ रखने के लिए बच्चों में पर्याप्त नींद, संतुलित भोजन और नियमित व्यायाम भी करना चाहिए। आजकल मोबाइल फोन का अत्यधिक उपयोग भी बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव डाल रहा है। लंबे समय तक स्क्रीन के सामने रहने से बच्चों का ध्यान पढ़ाई और खेलकूद से हटने लगता है। इससे उनकी नींद तो प्रभावित होती है और एकाग्रता भी कम हो जाती है और वे सामाजिक संबंधों से दूर होने लगते हैं। इसलिए बच्चों को सीमित समय तक ही स्क्रीन का उपयोग करने देना चाहिए तथा उन्हें बाहरी गेम खेलने के लिए प्रेरित करना चाहिए। यदि हम बच्चों को सम्मान, सुरक्षा और सही मार्गदर्शन देंगे तो वे एक जिम्मेदार, आत्मविश्वास और एक सफल नागरिक बनेंगे। मानसिक रूप से स्वस्थ बच्चा आत्मविश्वासी तो होता है, दूसरों का सम्मान भी करता है एवं अपनी भावनाओं को व्यक्त कर पाता है। ऐसे बच्चों में सीखने की क्षमता अधिक होती है। इसके विपरीत यदि बच्चे की मानसिक समस्याओं पर समय रहते ध्यान न दिया जाए तो उनका प्रभाव पढ़ाई, व्यवहार, मित्रता और भविष्य पर भी पड़ सकता है। हमें यह भी याद रखना चाहिए कि बच्चे केवल अंक प्राप्त करने की मशीन नहीं है, वे भावनाओं से भरे हुए संवेदनशील कोमल इंसान हैं। यदि उन्हें प्रेम, सम्मान, सुरक्षा और सही मार्गदर्शन मिलेगा तो वे न केवल पढ़ाई में बल्कि जीवन के हर क्षेत्र में सफल होंगे। मानसिक रूप से स्वस्थ बच्चा ही एक मजबूत, संवेदनशील और प्रगतिशील समाज का निर्माण करता है। अंत में यही कहूंगी कि बच्चों का खुशहाल बचपन ही उज्जवल भविष्य की नींव है। आइए हम सभी मिलकर बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य का ध्यान रखते हैं और उन्हें अच्छा वातावरण देकर उनकी भावनाओं को समझते हैं। हम सभी मिलकर ऐसा वातावरण बनाएं जहां हर बच्चा बिना डर के मुस्कुरा सके एवं अपनी बात कह सके एवं अपने सपनों को पूरा कर सके। इसी के साथ बच्चों पर मैं एक छोटी कविता प्रस्तुत करना चाह रही हूँ। बच्चों का मन कोमल होता है, बच्चों का मन कोमल होता है, प्यार से इसको सींचो तुम, डांट नहीं विश्वास देकर, डांट नहीं विश्वास देकर जीवन में आगे बढ़ने दो तुम, हंसी खुशी से खिलने दो, हंसी खुशी से खिलने दो, सपनों को आकार मिले, हर बच्चे के छोटे मन को जीने का अधिकार मिले, सुन लो उनकी हर एक बात, सुन लो उनकी हर एक बात, उनका भी सम्मान करो, डर नहीं विश्वास का दीप, डर नहीं विश्वास का दीप, हर दिल में प्रज्वलित करो, स्वस्थ रहेगा जब उनका मन, स्वस्थ रहेगा जब उनका मन, प्रज्वल होगा, उज्जवल होगा हर कल, खुशहाल बच्चे खुशहाल भारत, खुशहाल बच्चे खुशहाल भारत, यही हमारा हो संकल्प, यही हमारा हो संकल्प। इसी वाणी के साथ मैं अपने शब्दों को विराम देती हूँ। धन्यवाद।
1: आप सुन रहे थे कार्यक्रम शिक्षकों के लिए, विषय था बच्चों का मानसिक स्वास्थ्य। वार्ताकार थी वर्षा महाजन। आकाशवाणी का ये जगदलपुर केंद्र है। आइए सुनते हैं देशभक्ति गीत।

0: एक मजबूत घर बिल्कुल उस पिता की तरह होता है जो हर मौसम सहकर भी घर की नींव को कभी हिलने नहीं देता।
1: आपके घर के लिए भरोसे का दूसरा नाम चेटिनाड सीमेंट का मैक्स ग्रेड सीमेंट, 64 सालों की बुनियाद के साथ। चेटिनाड सीमेंट, द परफेक्ट कंक्रीट चॉइस।

आप सुन रहे थे देशभक्ति गीत। आकाशवाणी का ये जगदलपुर केंद्र है। रात के 8:30 हुए हैं। बच्चों का कार्यक्रम पिलमन का जयगोठ में अभी हम सुनेंगे राजा राम मोहन राय के विषय में। प्रस्तुति है तनुश्री मोहंती की।

पीला मन काजे गोट ये कार्यक्रम सुनते जमाए नानी नानी और बड़े पीला मन के मोचो बाटले मया और लाड पीला मन ये कार्यक्रम ने रोजे दिना नंगत नंगत गोट बात नंगत ज्ञान चोगोट और बड़े बड़े महापुरुष समाज सुधारक चोगोट के आमी तून मन के संगतो काजे था एवंसी असने आज ही में महान समाज सुधारक राजा राम मोहन राय चो बारे ने तून मन के सांगे दे आमचो भारत देश चो बाढ़ती काजे और नुआ बाढ़ दखातो काजे आमचो देश चो महान समाज सुधारक राजा राम मोहन राय ने खूबे मेहनत करला राजा राम मोहन राय के ए भी चो भारत देश चो निर्माता वाले बलसोत निर्माता बल्लों ने बना तो बीता ये मन के निर्माता ये काजे बलसोत कि मोहन राय आमचो देश ने उदल दाय चो समाज चो जोन बले कुर प्रथा रली बल्लो ने असन प्रथा जोन समाज के बाढ़ती चो बाट नी ने बल्लो ने बाढ़ती

तो बाट की ठेवाय से याची संगे संगे आमचो समाज ने कैक असने कुप्रथा रली जसन बड़े जात नानी जात ये चो भेद बले रहे उनके बले ये गुचातो काजे खूब मेहनत करला मनुख जाति चो बाढ़ती चो काम करतो कारण ने भारत हुन मंचो हमेशा कर्जदार रहे थे। राजा राम मोहन राय चो जन्म बंगाल चो राधा नगर ने 22 मई 1772 ने होन रहे। 16 बरख चो उम्र ने राजा राम मोहन राय समाज ने चलतो अंधविश्वास जे कि आमी बोलू से कि जसन बीमारी होली तो आमी बोलू से कोनी पांगुन दिला तो असन गोट जे कि आमी अंधविश्वास बोलू से ये चो बारो ने गोटो निबंध लिखुन रला। राजा राम मोहन राय बाल विवाह बल्लो ने कम उम्र ने होतो बीती ब्याह चो बोले खूब भी विरोध कर ला। राजा राम मोहन राय सोजे भारत के जन्म देतो बीता नहीं रला बल्कि हुन मन नुआ भारत के बल्ले बनाला और 100 बरख ले 16 भारत चो लोग मन के चेताला। राजा राम मोहन राय जोन रला ये ग्रीस फ्रीब्रू अंग्रेजी बंगाल संस्कृत फारसी और गुरुमुखी चो ये मन के खूबे ज्ञान रली और 1802 ने हुन मन कलेक्टर चो पद ने बले काम करला। राजा राम मोहन राय 1812 ने गोटोक असन संकल्प धरला जे चो बारे ने सोचलो ने आमचो कार्जा दुखुन जाए दे हुन रहे सती प्रथा। राजा राम मोहन राय सती प्रथा की गुचातो काजे संकल्प करला और क्रिया खादला और यही कारण ने हुन मनचो कोशिश के विलियम बेट्रिक्स बलून गोटोक अंग्रेज साहब रला 1829 ने सती प्रथा के थेबाउन दिला। ये आमचो भारत देशो समाज का जे खूबे बड़े काम होली नहाले उदल दाय चो जो समाज रहे नहीं पिलामन हुता ये सती प्रथा बल्लो ने खूबे समाज ने ये फैलून रहे और तुमन मन सोचे सास पिलामन कि सती प्रथा बल्लो ने काय बीतिया है तो मैं तुमन मन के सांगुक चाहे से कि सती प्रथा ने उदल दाय जो समाज ने कोनी बले ब्याह होलो माने मरुन जाते रहे तो हुंचो मरलो पासे हुंचो जोन बायले रहे नहीं जीवता बायले हुनके मोड़ा संगे सोजे जीवता जीवता डसान देते रहला तो इत्रो अर्णाप गोठ उदल दाय जो समाज ने होते रहे जेके गुचातो काजे राजा राम मोहन राय खूबे मेहनत करला और हुंचो समाज चो ये कुप्रथा के गुचाला विलियम बैट्रिक संगे मिशन भाती असने कुप्रथा चो के गुचातो काजे राजा राम मोहन राय असने हिंदू धर्म चो एक ले आगर बिया करतोर बल्लो ने गोटोक बाले रोरोन और बिया होतोर और बाल विवाह जसन मैं पनाए तुम्हें मन के सांगले कि नानी उम्र ने बिया करतोर और ढोंगा जोन बले रीति नीति रहे ये चो खूबे विरोध करला। हुन मन चाहते रहला कि बेटी मन के बले आप लो बाबा चो धन संपत्ति ने बराबर चो बाटा मिरो। राजा राम मोहन राय शिक्षा चो बाढ़ती काजे बले खूबे काम करला। हुनमन कलकत्ता ने हिंदू कॉलेज चो स्थापना 20 जनवरी 1817 ने करुण रला। हुनी हिंदू कॉलेज के एबे चो समया ने कलकत्ता ने प्रेसिडेंसी कॉलेज चो नाव ले लोग मन जाने सोत। राजा राम मोहन राय आप लो संगवारी केशव चंद्र संगे मिशुन 1828 ने ब्रह्म समाज चो स्थापना करला और असने समाज चो बढ़ती काजे राजा राम मोहन राय कई काम करला। तो पिलामन आम के असने महापुरुष समाज सुधारक और समाज चो बढ़ती काजे जोन बले लोग पूरे उन काम करला से हुनमन चो जीवनाले ज्ञान धरतो राय हुनमन चो सांगलो बाटने आम के जातो राय हुनमन चो सांगलो गोट के आपलो जीवना ने उतरातो राय तेबे आमी आपलो जीवना के आगे बढ़ाओ सकूं दे और सद्धर्म ने चलुक सकूं दे। हाँ तो पिलामन इत्रो नंगत गोट के तो तुमन मन सुने साहसी संगे संगे मैं तुमन मन काजे गोटो गीत के धरनी ले से तो सुनू ये गीत के।

हाँ तो पीलामन, आज ही मैं तुमन मन के सांगले राजा राम मोहन राय समाज सुधारक चो बारे ने हुनमन चो सांगलो बाट ने चलुन भाती आपलो जीवन चो बाढ़ती करा असने रोजे दिना कोनी ना कोनी समाज सुधारक महापुरुष और ज्ञान ध्यान चो गोट के धरुन तुम चो लगे आमी एते रहूं दे तो मोके दियास विदा जुहार।

बच्चों का कार्यक्रम पिलामन का जयगोठ में अभी हम सुन रहे थे राजा राम मोहन राय के विषय में। प्रस्तुति थी तनुश्री मोहंती की। आकाशवाणी का ये जगदलपुर केंद्र है। रात के 8:45 होने वाले हैं। कुछ ही समय में हिंदी और अंग्रेजी समाचार हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे।

0: कुपोषण और मौलिक अधिकारों के हनन का नतीजा। भारत और ब्रिटेन के बीच व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता कल से लागू होगा। अधिकांश भारतीय निर्यातित वस्तुओं पर कोई शुल्क नहीं लगेगा। निर्वाचन आयोग ने हरियाणा और आंध्र प्रदेश में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण कार्य की अवधि 10 दिन और बढ़ाई। फीफा फुटबॉल विश्व कप के पहले सेमीफाइनल में देर रात फ्रांस का मुकाबला स्पेन से होगा। और बर्मिंघम में खेले जा रहे पहले एक दिवसीय क्रिकेट मैच में इंग्लैंड ने भारत को 259 रन का लक्ष्य दिया। अब समाचार विस्तार से। भारत ने कहा है कि वो पश्चिम एशिया के घटनाक्रमों पर करीबी नजर रखे हुए है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने आज नई दिल्ली में होर्मुज जलडमरू मध्य से व्यापारिक जहाजों की सुरक्षित और निर्बाध आवाजाही की आवश्यकता दोहराई।
1: पश्चिम एशिया में जो भी गतिविधियां चल रही हैं उस पर हम लगातार नजर रखे हुए हैं। हमारा मानना है कि स्ट्रेट ऑफ होर्मुज के रास्ते सुरक्षित और आजाद नौ परिवहन और व्यापार के पक्ष, जिसका हम हमेशा से बात करते रहे हैं, इससे यह सुनिश्चित किया जा सकता है कि लोगों का आर्थिक सुरक्षा, उनके ऊर्जा का सुरक्षा पूरे दुनिया में, सिर्फ भारत में नहीं पूरे दुनिया में उस पर आधारित है। और ये नौ परिवहन अगर आजाद तरीके से चलेगा तो उनकी आर्थिक और ऊर्जा सुरक्षा को सुनिश्चित किया जा सकता है।
0: श्री जायसवाल ने कहा कि विदेश मंत्रालय ने ईरान के उप मिशन प्रमुख को तलब कर भारत की गहरी चिंता से अवगत कराया। उन्होंने कहा कि एक भारतीय नागरिक की जान जाने और कई भारतीयों के गंभीर रूप से घायल होने की कड़ी निंदा की गई। प्रवक्ता ने कहा कि भारत ने कड़ा विरोध दर्ज कराते हुए कहा कि व्यापारिक जहाजों पर हमलों को जल्द से जल्द रोका जाना चाहिए, साथ ही तनाव कम किया जाना चाहिए और दोनों पक्षों को बातचीत, संवाद और कूटनीति का मार्ग अपनाना चाहिए ताकि पश्चिम एशिया में शांति और स्थिरता सुनिश्चित की जा सके। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में विरोध प्रदर्शनों पर श्री जायसवाल ने कहा कि ये प्रदर्शन पाकिस्तान के दशकों से किए जा रहे शोषण और मौलिक अधिकारों के हनन का नतीजा है।
1: पाकिस्तान अधिकृत जम्मू कश्मीर में चल रहे विरोध प्रदर्शन, दशकों से चल रहे शोषण, मौलिक अधिकारों का हनन और प्रशासनिक उत्पीड़न का सीधा परिणाम है और प्रमाण भी है। स्थानीय आबादी की जायज शिकायतों को समाधान करने के बजाय वहां का प्रशासन, वहां का सरकार ने अत्यधिक पुलिस क्रूरता का सहारा लिया है। इसमें असहाय लोग, जिसमें महिलाएं भी हैं और बच्चे भी हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई की गई है और निहत्थे नागरिक के खिलाफ घातक बल का प्रयोग करना भी शामिल है, जिसके परिमाण स्वरूप कई दुखद मौतें हुई हैं।
0: संयुक्त राष्ट्र समुद्री कानून सम्मेलन UNCLO पर श्री जायसवाल ने कहा कि दक्षिण चीन सागर मुद्दे पर भारत का रुख सभी को पता है। उन्होंने कहा कि समुद्री विवादों का समाधान शांतिपूर्ण ढंग से और UNCLO के अनुसार किया जाना चाहिए।
1: अंकलॉस में दर्शाए गए अंतर्राष्ट्रीय कानून के अनुरूप नौ वहन यानी नेविगेशन और उड़ान की स्वतंत्रता, समुद्र में अन्य कानून उपयोगों जैसे लॉफुल यूजेस ऑफ द सी और बिना रुकावट के व्यापार को बनाए रखने में के महत्व पर हम जोर देते हैं। ये हमारा हमेशा से ये मत रहा है। हम इस बात की एक बार और पुष्टि करते हैं कि समुद्री विवादों को शांतिपूर्ण ढंग से और अंकलॉस के अनुसार सुलझाया जाना चाहिए। हम यह भी दोहराते हैं कि 10 साल पहले मध्यस्थता ट्राइब्यूनल ने फैसला सुनाया था और यह फैसला एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है और यह संबंधित पक्षों के बीच विवादों को शांतिपूर्ण ढंग से सुलझाने का आधार भी है।
0: लॉरेंस बिश्नोई गिरोह पर अभियोग के संबंध में प्रवक्ता ने कहा कि भारत लगातार ये कहता रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय संगठित अपराध, आतंकवाद, नशीले पदार्थों की तस्करी, मानव तस्करी, अवैध हथियारों की तस्करी और संबंधित आपराधिक नेटवर्क समाज के लिए बड़ा खतरा है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। भारत और ब्रिटेन के बीच व्यापक आर्थिक तथा व्यापार समझौता कल से लागू हो जाएगा। इस ऐतिहासिक समझौते के अंतर्गत भारत से निर्यातित 99% वस्तुओं पर ब्रिटेन के बाजार में कोई शुल्क नहीं लगेगा। ये समझौता भारत और ब्रिटेन की रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने और अपने लोगों के लिए समृद्धि लाने की साझा प्रतिबद्धता को दर्शाता है। एक रिपोर्ट।
2: यह समझौता लोगों के हितों को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है, जिसे समाज के हर वर्ग को लाभ मिलेगा। व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौते और डबल कंट्रीब्यूशन कन्वेंशन के एक साथ लागू होने से भारत के निर्यात के लिए नए अवसर खुलेंगे। इस समझौते के तहत भारतीय निर्यातकों को ब्रिटेन में कई प्रमुख क्षेत्रों में शुल्क पूरी तरह समाप्त होने का लाभ मिलेगा। प्रोसेस्ड फूड उत्पादों पर 70% तक, समुद्री उत्पादों पर 21% से अधिक, इंजीनियरिंग सामान और ऑटो कॉम्पोनेंट पर लगभग

0: 18% चमड़े और फुटवेयर उत्पादों पर 16% तक तथा वस्त्र और परिधान पर लगभग 12% तक लगने वाला शुल्क अब शून्य हो जाएगा। इससे ब्रिटेन के बाजार में भारतीय उत्पादों की प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी। किसानों, मछुआरों, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमियों तथा विनिर्माण क्षेत्र को नए अवसर मिलेंगे। साथ ही वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं में भारत की भागीदारी और मजबूत होगी। समझौतों के तहत भारत ने अपने संवेदनशील क्षेत्रों की सुरक्षा भी सुनिश्चित की है। इनमें डेयरी उत्पाद, अनाज, मोटे अनाज, खाद्य, तेल, तिलहन, सेब और कई प्रकार की सब्जियां शामिल हैं। रोहन के साथ अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: वाणिज्य सचिव राजेश अग्रवाल ने भारत ब्रिटेन व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता को भारत की व्यापार यात्रा में एक अहम पड़ाव बताया है। नई दिल्ली में उन्होंने कहा कि कल से लागू होने वाले इस समझौते से भारत और ब्रिटेन के बीच द्विपक्षीय व्यापार और निवेश संबंधों में एक नए दौर की शुरुआत होगी।
2: यह भारत के सबसे महत्वाकांक्षी और उद्देश्यपूर्ण मुक्त व्यापार समझौतों में से एक है। इसमें व्यापक क्षेत्रीय कवरेज है और शुल्क तथा गैर शुल्क बाधाओं में भारी कमी आई है। इस समझौते में परंपरागत टैरिफ उदारीकरण से कहीं आगे बढ़कर सरकारी खरीद, पहली बार प्रभावी सरकारी खरीद, लघु तथा मध्यम उद्यम, नवाचार, श्रम, रोजगार और लैंगिक समानता जैसे मुद्दों को शामिल किया गया है।
1: श्रम और रोजगार मंत्री मनसुख मांडविया ने हैदराबाद में 15वें ब्रिक्स ट्रेड यूनियन फोरम TUF शिखर सम्मेलन 2026 का शुभारंभ किया। उन्होंने एक ऐसी वैश्विक व्यवस्था की वकालत की जो श्रमिकों पर केंद्रित हो और जहां सामाजिक न्याय और मानवीय गरिमा तकनीकी प्रगति का आधार बने। उन्होंने कहा कि भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता का विषय लचीलेपन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता पर केंद्रित है और ये समावेशी और समान विकास के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाता है। 12वीं ब्रिक्स श्रम और रोजगार मंत्रियों की बैठक कल से हैदराबाद में होगी। 2 दिन की बैठक में ब्रिक्स सदस्य देशों के श्रम और रोजगार मंत्री और वरिष्ठ अधिकारी शामिल होंगे। श्रम और रोजगार मंत्री मनसुख मांडविया इस बैठक की अध्यक्षता करेंगे। भारत का सबसे बड़ा वैश्विक वस्त्र कार्यक्रम भारत टेक्स 2026 आज नई दिल्ली के भारत मंडपम में शुरू हुआ। केंद्रीय वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह ने इसका उद्घाटन किया। संवाददाताओं से बातचीत में श्री सिंह ने कहा कि भारत टेक्स प्रधानमंत्री का दृष्टिकोण है। उन्होंने कहा कि ये अब एक अंतर्राष्ट्रीय आयोजन बन चुका है और हर साल इसमें प्रदर्शकों, खरीदारों, विक्रेताओं और आगंतुकों

आयोजन बन चुका है और हर साल इसमें प्रदर्शकों, खरीदारों, विक्रेताओं और आगंतुकों की भारत टेक्स प्रधानमंत्री का दृष्टिकोण है। उन्होंने कहा कि ये अब एक अंतर्राष्ट्रीय आयोजन बन चुका है और हर साल इसमें प्रदर्शकों, खरीदारों, विक्रेताओं और आगंतुकों

0: स्पेशल कंटेनर डिजाइन किया है जिसमें लोडिंग होगी टॉप से।
1: निर्वाचन आयोग ने हरियाणा और आंध्र प्रदेश में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण SIR को 10 दिनों के लिए और बढ़ा दिया है। आयोग के संशोधित कार्यक्रम के अनुसार बूथ स्तरीय अधिकारी घर घर जाकर मतदाता सूची का निरीक्षण 24 जुलाई तक करेंगे। आयोग ने बताया कि मतदाता सूची का मसौदा 31 जुलाई को प्रकाशित किया जाएगा। अंतिम मतदाता सूची 3 अक्टूबर को जारी होगी। आयोग ने कहा कि दावे और आपत्तियां 30 अगस्त तक दर्ज की जा सकती हैं। एक देश एक चुनाव पर बनी संयुक्त समिति ने लखनऊ दौरे के दूसरे दिन उत्तर प्रदेश विधानमंडल के पीठासीन अधिकारियों, विपक्ष के नेताओं और सदस्यों के साथ बातचीत की। समिति ने उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और राज्य के कुछ कैबिनेट मंत्रियों के साथ भी बातचीत की। समिति ने प्रस्तावित संशोधनों, विधायी प्रक्रिया, संवैधानिक सिद्धांतों, केंद्र राज्य संबंधों पर संभावित असर और क्षेत्रीय मुद्दों पर भी चर्चा की। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने आज भोजशाला विवाद को सुलझाने के लिए रोजाना सुनवाई करने पर सहमति व्यक्त की। हालांकि न्यायाधीश सूर्यकांत, जॉयमाल्य बागची और न्यायाधीश वी मोहना की पीठ ने याचिकाकर्ताओं की अंतरिम आदेश की उस मांग को ठुकरा दिया जिसमें पुरानी स्थिति बहाल करने को कहा गया था। एक रिपोर्ट।
2: पुरानी व्यवस्था के अंतर्गत तय दिनों पर पूजा के साथ साथ शुक्रवार को नमाज पढ़ने की इजाजत थी। पीठ ने राज्य सरकार को निर्देश दिया कि वह विवादित जगह के पास शुक्रवार को दोपहर 1 बजे से 3 बजे के बीच नमाज पढ़ने के लिए एक अलग खुली जगह उपलब्ध कराए। पीठ ने कहा कि ये व्यवस्था फिलहाल अस्थायी है और मामले के अंतिम नतीजे पर निर्भर करेगी। पीठ ने मामले को बेहद संवेदनशील बताते हुए दोनों पक्षों से संयम बरतने को कहा। शीर्ष अदालत मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के उस आदेश को चुनौती देने वाली कई अपीलों पर सुनवाई कर रही थी जिसमें कहा गया था कि धार जिले में विवादित भोजशाला परिसर देवी सरस्वती को समर्पित एक मंदिर है और वहां नमाज पढ़ने पर रोक लगा दी गई थी। समाचार कक्ष से प्रियंका अरोड़ा।
1: आयकर विभाग ने वित्त वर्ष 2026-27 में अब तक प्रत्यक्ष कर के रूप में 7,73,000 करोड़ रूपये से अधिक की राशि एकत्र की है। वित्त वर्ष 2025-26 की इसी अवधि की तुलना में इसमें 16% से अधिक की बढ़ोतरी दर्ज हुई है। इसमें 3,35,000 करोड़ रुपए से अधिक का कॉरपोरेट कर और 4,11,000 करोड़ रुपए का गैर कॉरपोरेट कर शामिल है। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन ने कहा है कि संविधान लोकतांत्रिक स्थिरता और राष्ट्रीय एकता का आधार बना हुआ है और इसमें संशोधन करने की संसद की शक्ति देश को बदलते समय की जरूरतों को पूरा करने में सक्षम बनाती है। उपराष्ट्रपति ने नई दिल्ली में द वॉयस ऑफ जस्टिस, जस्टिस गवई स्पीक्स नामक पुस्तक का विमोचन करते हुए ये बात कही।
3: This publication is much more than a compilation of speeches and reflections. It is an important constitutional and institutional document reflecting judicial thought shaped by experience, constitutional discipline and public responsibility. The title, The Voice of Justice, is particularly meaningful because democracy is ultimately sustained by reason, fairness, restraint and institutional trust.
1: और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं प्राची प्रिया।
4: बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स 561 अंक लुढ़ककर 77,055 पर बंद हुआ, जबकि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 159 अंक फिसलकर 24,052 पर आ गया। अंतरबैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया आज $1 की तुलना में 58 पैसे कमजोर होकर 96.20 रूपए के स्तर पर बंद हुआ।
1: और अब खेल खबरें। फीफा फुटबॉल विश्व कप के पहले सेमीफाइनल में आज रात 12:30 बजे टेक्सास में फ्रांस और स्पेन आमने सामने होंगे। फ्रांस लगातार तीसरी बार फाइनल में जगह बनाना चाहेगा, वहीं स्पेन 2010 में विश्व कप जीतने के बाद इस बार विश्व कप फाइनल में पहुंचने की पूरी कोशिश करेगा। इंग्लैंड ने भारत को बर्मिंघम में पहले एकदिवसीय क्रिकेट मैच में 259 रन का लक्ष्य दिया है। जवाब में भारत ने ताजा समाचार मिलने तक 15 ओवर में 2 विकेट पर 80 रन बना लिए हैं। इससे पहले टॉस जीतकर बल्लेबाजी करने उतरी इंग्लैंड की टीम 47 ओवर और 5 गेंद में 258 रन बनाकर आउट हो गई। मौसम विभाग ने ओडिशा में कल तक मूसलाधार वर्षा और कुछ स्थानों पर तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। विभाग ने बताया कि बिहार में भी कल तक मूसलाधार वर्षा होने की संभावना है। अगले 2 दिन में पूर्वोत्तर भारत, छत्तीसगढ़, झारखंड और पश्चिम बंगाल में ही ऐसी स्थिति बनी रहने की उम्मीद है। और अब अंत में

हेमलता की आवाज में आइए सुनते हैं फिल्म आंखियों के झरोखे से का ये गीत। गीत और संगीत है रविंद्र जैन का।

फिल्म एन इवनिंग इन पेरिस का गीत आइए सुनते हैं मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में। गीत के बोल लिखे हैं हसरत जयपुरी ने, संगीत है शंकर जय किशन का।

इस गीत के साथ ही कार्यक्रम पुरानी फिल्मों से समाप्त होता है। आकाशवाणी का ये जगदलपुर केंद्र है। रात के 9:30 हुए हैं। आइए सुनते हैं पत्रों पर आधारित फरमाइशी लोकगीतों का कार्यक्रम मोचो मंचो गीत। कार्यक्रम के आरंभ में आइए सुनते हैं खेम वैष्णव और साथियों के आवाज में हल्बी लोकगीत। इस गीत को सुनने की फरमाइश की है ब्लॉक तुकापाल ग्राम सिरिशगुड़ा से जगी लक्ष्मण रमेश बहरी और पोटीराम, तहसील लोहंडीगुड़ा ग्राम इरिकपाल से खूबचंद्र बघेल, सोमारू राम बघेल, मीठू राम बघेल और बोटीराम बघेल, तहसील नारायणपुर ग्राम छाड़ बंगाल से पिंटू ठाकुर, छोटू ठाकुर और धनेश्वरी ठाकुर।

कार्यक्रम का अगला लोकगीत है ममता चंद्राकर की आवाज में छत्तीसगढ़ी में। इस लोकगीत को सुनना चाहा है जगदलपुर से अनिल मंडावी, दृष्टा मंडावी, किरण मंडावी और सरू मंडावी। कोंडागांव विश्रामपुरी से सनित मंडावी, अनिल मंडावी, सुरेश मंडावी, मोहन मंडावी और ज्योति मंडावी। ग्राम पामेला से अक्कीर कश्यप, मोती कश्यप, सुनंदा नाग, फूलमणि नाग, राममणि नाग और मीतिका मौर्य।

पत्रों पर आधारित फरमाइशी लोकगीतों का कार्यक्रम मोचो मंचो गीत में आइए अब सुनते हैं संतुराम और साथियों के स्वर में गोंडी लोकगीत। इस गीत को सुनने की फरमाइश की है ग्राम छिंदबहार करकापाल जिला बस्तर से लक्ष्मण कश्यप, चंदू मंडावी, तुलसी मौर्य, धर्मेंद्र यादव, मगन मंडावी और नरेंद्र ठाकुर। ग्राम गढ़दा विकासखंड लोहंडीगुड़ा बस्तर से विनोद यादव, विजय पोयाम, कमलू बेंजाम, सलमू मंडावी और सुखराम मंडावी। ग्राम डिलमिली विकासखंड दरभा से अनिल सोड़ी, दशरथ कश्यप, दुर्जन कश्यप, गुड्डू मंडावी, संतू पोयाम और मनी मंडावी।

कार्यक्रम की अगली प्रस्तुति है लंबोदर बघेल और साथियों के स्वर में भतरी बोली में। सुनने की फरमाइश की है ग्राम तारागांव बस्तर से दिनेश मंडावी, राजू मंडावी, जगन्नाथ कश्यप, हांदा मंडावी, खुदराम कश्यप और बाल सिंह कश्यप। ग्राम भेजा जिला बस्तर से चमरा कश्यप, चंदन कश्यप, कारू, नकुल कश्यप, समर्थ मौर्य और तुलसी मौर्य। ग्राम बहरेंगा विकासखंड लोहंडीगुड़ा से दिकेश्वर ठाकुर, महरा नेताम, बुधराम करतामी, संतु यादव, मनीराम करतामी और रामकरण पटेल।

आप सुन रहे थे पत्रों पर आधारित फरमाइशी लोकगीतों का कार्यक्रम मोचो मंचो गीत। आकाशवाणी का ये जगदलपुर केंद्र है। रात के 10 बजे हैं। लोकवाद्य धुन के कार्यक्रम पाड़ में आइए सुनते हैं लोहंडी गुड़िन भरनीपाड़ और हिंगलाजिन माता पाड़। वादक कलाकार हैं कालिदास और साथी।

0: एक मजबूत घर बिल्कुल उस पिता की तरह होता है जो हर मौसम सहकर भी घर की नींव को कभी हिलने नहीं देता।
1: आपके घर के लिए भरोसे का दूसरा नाम चेटिनाड सीमेंट का मैक्स क्रीट सीमेंट, 64 सालों की बुनियाद के साथ। चेटिनाड सीमेंट, द परफेक्ट कंक्रीट चॉइस।

लोकवाद धुन के कार्यक्रम पाड़ में आप सुन रहे थे लोहंडी गुड़ीन भरनी पाड़ और हिंगलाजिन माता पाड़। वादक कलाकार थे कालिदास और साथी। आकाशवाणी का ये जगदलपुर केंद्र है। रात के 11 बजने वाले हैं। कुछ ही समय में हिंदी और अंग्रेजी समाचार हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं रत्ना पांडे। भारत ने कहा है कि वो पश्चिम एशिया के घटनाक्रमों पर करीबी नजर रखे हुए है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने आज नई दिल्ली में होर्मुज जल डमरू मध्य से व्यापारिक जहाजों की सुरक्षित और निर्बाध आवाजाही की आवश्यकता दोहराई।
1: पश्चिम एशिया में जो भी गतिविधियां चल रही हैं उस पर हम लगातार नजर रखे हुए हैं। हमारा मानना है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के रास्ते सुरक्षित और आजाद नौ परिवहन और व्यापार के पक्ष, जिसका हम हमेशा से बात करते रहे हैं, इससे यह सुनिश्चित किया जा सकता है कि लोगों का आर्थिक सुरक्षा, उनके ऊर्जा का सुरक्षा पूरे दुनिया में, सिर्फ भारत में नहीं पूरे दुनिया में उस पर आधारित है। और ये नौ परिवहन अगर आजाद तरीके से चलेगा तो उनकी आर्थिक और ऊर्जा सुरक्षा को सुनिश्चित किया जा सकता है।
0: श्री जायसवाल ने कहा कि विदेश प्रमुख को तलब कर भारत की गहरी चिंता से अवगत कराया। उन्होंने कहा कि एक भारतीय नागरिक की जान जाने और कई भारतीय के गंभीर रूप से घायल होने की कड़ी निंदा की गई। प्रवक्ता ने कड़ा विरोध दर्ज कराते हुए कहा कि हमलों को जल्द से जल्द रोका जाना चाहिए, साथ ही तनाव कम किया जाना चाहिए और दोनों पक्षों को बातचीत, संवाद और कूटनीति का मार्ग अपनाना चाहिए ताकि पश्चिम एशिया में शांति और स्थिरता सुनिश्चित की जा सके। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में विरोध प्रदर्शनों पर श्री जायसवाल ने कहा कि ये प्रदर्शन पाकिस्तान के दशकों से किए जा रहे शोषण और मौलिक अधिकारों के हनन का नतीजा है।
1: पाकिस्तान अधिकृत जम्मू कश्मीर में चल रहे विरोध प्रदर्शन दशकों से चल रहे शोषण, मौलिक अधिकारों का हनन और प्रशासनिक उत्पीड़न का सीधा परिणाम है और प्रमाण भी है। स्थानीय आबादी की जायज शिकायतों को समाधान करने के बजाय वहां का प्रशासन, वहां की सरकार ने अत्यधिक पुलिस क्रूरता का सहारा लिया है। इसमें असहाय लोग, जिसमें महिलाएं भी हैं और बच्चे भी हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई की गई है और निहत्थे नागरिक के खिलाफ घातक बल का प्रयोग करना भी शामिल है, जिसके परिमाण स्वरूप कई दुखद मौतें हुई हैं।
0: संयुक्त राष्ट्र समुद्री कानून सम्मेलन UNCLO पर श्री जायसवाल ने कहा कि दक्षिण चीन सागर मुद्दे पर भारत का रुख सभी को पता है। उन्होंने कहा कि समुद्री विवादों का समाधान

0: समाधान शांतिपूर्ण ढंग से और यूएनसीएलओ के अनुसार किया जाना चाहिए। भारत और ब्रिटेन के बीच व्यापक आर्थिक तथा व्यापार समझौता कल से लागू हो जाएगा। इस ऐतिहासिक समझौते के अंतर्गत भारत से निर्यातित 99% वस्तुओं पर ब्रिटेन के बाजार में कोई शुल्क नहीं लगेगा। ये समझौता भारत और ब्रिटेन की रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने और अपने लोगों के लिए समृद्धि लाने की साझा प्रतिबद्धता को दर्शाता है। निर्वाचन आयोग ने हरियाणा और आंध्र प्रदेश में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण SIR को 10 दिनों के लिए और बढ़ा दिया है। आयोग के संशोधित कार्यक्रम के अनुसार बूथ स्तरीय अधिकारी घर घर जाकर मतदाता सूची का निरीक्षण 24 जुलाई तक करेंगे। ये पहले 14 जुलाई तक निर्धारित था। कौशल विकास और उद्यमिता मंत्री जयंत चौधरी ने आज नोएडा स्थित राष्ट्रीय उद्यमिता एवं लघु व्यवसाय विकास संस्थान के प्रथम एलुमनाई मीट 2026 को संबोधित किया, जिसमें उन्होंने सफल उद्यमियों से नए उद्यमियों का मार्गदर्शन करने का आह्वान किया। इस अवसर पर उन्होंने दो प्रकाशनों का लोकार्पण भी किया। कार्यक्रम में 19 राज्यों से लगभग 200 उद्यमियों, उद्योग जगत के प्रतिनिधियों और निर्माताओं ने भाग लिया। प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने महादेव ऑनलाइन बेटिंग ऐप से जुड़े धन शोधन मामले में एक निजी सॉफ्टवेयर और फिनटेक कंपनी के चेयरमैन को गिरफ्तार किया है। ईडी ने हाल ही में चेयरमैन, उनके परिवार के सदस्यों और उनसे जुड़ी कंपनियों की 940 करोड़ रुपए से अधिक की संपत्ति भी जब्त की थी। इंग्लैंड ने भारत को बर्मिंघम में पहले एक दिवसीय क्रिकेट मैच में 259 रन का लक्ष्य दिया है। जवाब में भारत ने ताजा समाचार मिलने तक 42 ओवर में 4 विकेट पर 241 रन बना लिए हैं। फीफा फुटबॉल विश्व कप के पहले सेमीफाइनल में आज रात 12:30 टेक्सस में फ्रांस और स्पेन आमने सामने होंगे। फ्रांस लगातार तीसरी बार फाइनल में जगह बनाना चाहेगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय रेशमा तिवारी। New Delhi has said that it is closely observing the developments in West Asia following renewed escalations of tensions between US and Iran and attacks on commercial vessels. Briefing media in New Delhi this evening, spokesperson of the Ministry of External Affairs, Randhir Jaiswal, reiterated India's call for safe and unimpeded navigation and the flow of commerce through the Strait of Hormuz.
2: We are closely following the developments that are happening in West Asia. We continue to call for safe and unimpeded navigation and flow of commerce through the Strait of Hormuz. This is key for ensuring economic and energy security of people across the world.
1: India also expressed deep concern at the attacks on two vessels, MT Al-Bahyan and MT Mombasa, during their transit through the Strait of Hormuz today. Both the vessels were carrying 30 Indian seafarers among their combined crew of 46. Mr. Jaiswal said the Deputy Chief of Mission of the Embassy of Iran in New Delhi was summoned this morning by the ministry. Responding to a question on protests in Pakistan-occupied Jammu and Kashmir or POJK, Mr. Jaiswal said the ongoing protests in POJK are a direct consequence of Pakistan's decades-long systemic exploitation, denial of fundamental rights and administrative oppression in areas under its illegal and forcible occupation. The Comprehensive Economic and Trade Agreement, CETA, between India and the United Kingdom will come into force from tomorrow. Simultaneously, the Agreement on Social Security, referred to as the Double Contribution Convention, DCC, will also come into effect the same day, reinforcing the mobility and competitiveness of Indian professionals in the United Kingdom. The landmark deal grants Indian exports zero-duty access to 99% of tariff lines in the UK market. Briefing media in New Delhi today, Commerce Secretary Rajesh Agrawal described the India-UK Comprehensive Economic and Trade Agreement as a defining milestone in India's trade journey. In a major step towards expanding bilateral trade and investment engagement, the first round of negotiations for the India-Maldives Free Trade Agreement